मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह की 5:57 होने वाले हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की सभा।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए

0: आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज किसान भाइयों को कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, बाजार में जो रसायन मिलते हैं इनमें कुछ अत्यधिक जहरीले, कुछ अधिक जहरीले, कुछ औसत जहरीले और कुछ बहुत कम जहरीले होते हैं। जो रसायन सबसे अधिक जहरीले होते हैं वह हैं मिथाइल पैराथियन, मोनोक्रोटोफास, फास्फेमिडान, फॉरेट ग्रेन्यूल और जिंक फास्फाइड। इन रसायनों के पैकेट पर चमकीले लाल रंग का आयत बना रहता है तथा हड्डी का क्रॉस और उस पर खोपड़ी बनी रहती है। इन रसायनों से जो कम जहरीले होते हैं वह हैं 2,4-D, क्यूनालफास, डाइजिनान, क्लोरपाइरीफास, इंडोसल्फान एवं गामा बीएसी। इनके पैकेट पर बने आयत चमकीले पीले रंग के तथा आयत के नीचे लाल अक्षरों में जहर लिखा रहता है। कुछ औसत किस्म के जहरीले रसायन होते हैं जैसे डाइमेथोएट, कार्बराइल, ब्यूटाक्लोर, थेरम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इनके पैकेट के आयत के आधे भाग पर चमकीला नीला तथा नीचे खतरा शब्द लिखा रहता है। जो रसायन बहुत कम जहरीले होते हैं वह हैं मैंकोजेब, कैप्टान, जिनेब। इनके पैकेट पर बने आयत के आधे भाग पर चमकीला हरा तथा नीचे सावधान शब्द लिखा रहता है। ये सभी रसायन चाहे वह जितने भी कम या ज़्यादा जहरीले हों, इनके प्रयोग से पहले इनकी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है और इनके प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। दवाओं के प्रयोग में सबसे पहले सावधानी दवाओं के चुनाव में रखनी चाहिए। कौन सी दवा किस कीट या बीमारी के नियंत्रण में प्रयोग होती है और कितनी मात्रा में प्रयोग होती है, यह जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक दवा प्रत्येक बीमारी को नियंत्रित नहीं कर सकती तथा प्रत्येक खरपतवारनाशी प्रत्येक खरपतवार को नष्ट नहीं कर सकता। बीमारियों, कीड़ों, खरपतवारों तथा अनाज भंडारण के लिए अलग अलग दवाएं प्रयोग होती हैं तथा इनकी मात्रा अलग अलग होती है। दवा का नाम जान लेने के बाद दवा खरीदने की बात आती है। बाजार से दवा खरीदते समय 2-3 बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। दवा खरीदते समय डिब्बे पर अंकित तिथि को पढ़ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि दवा की मियाद बीत तो नहीं गई है। बीते मियाद वाली दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का पैकेट अच्छी तरह सील होना चाहिए, क्योंकि खुली दवा में मिलावट की संभावना हो सकती है। दवा अच्छी कंपनी की ही होनी चाहिए, भले ही उसका मूल्य कुछ अधिक क्यों ना हो। घोल बनाते समय कभी भी एक से अधिक प्रकार की दवाओं को एक साथ मिलाकर प्रयोग न करें, इससे फसल को नुकसान पहुँच सकता है। कई तरह की दवाओं को एक साथ तभी मिलाना चाहिए जबकि इस प्रकार की संस्तुति हो। दवा छिड़काव करने के पहले यह भी जानना आवश्यक है कि फसल में कीट संख्या आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए। यदि कीट इतनी संख्या में नहीं है कि वह खेत में आर्थिक क्षति पहुंचा सकें, तो दवा का छिड़काव तर्कसंगत नहीं होगा।

0: हर छिड़काव करते समय किसी भी प्रकार का नशा जैसे बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए तथा बच्चों और जानवरों को खेत के पास नहीं जाने देना चाहिए। छिड़काव के समय यदि मशीन की नोजल फंस जाए तो भूल कर भी उसे मुंह से नहीं फूंकना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। छिड़काव या बुरकाव के समय यदि अस्वस्थता महसूस हो तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह कहना है कि छिड़काव में दवा की सही मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। इससे कम मात्रा प्रयोग करने पर कीड़ों में विष के प्रति सहनशीलता पैदा हो जाती है और ऐसा बार बार करने से कीट नियंत्रण एक दुष्कर कार्य बन जाता है। अतः जहाँ तक संभव हो दवाओं को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए, इससे विष प्रतिरोधकता की संभावना कम हो जाती है। वैसे बाजार में अब जैविक पदार्थ और नीम वाली दवाएं भी आ गई हैं जिनके प्रयोग से रसायनों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करना चाहिए।
1: कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। दिवस का आरंभ यदि सकारात्मक विचारों और प्रभु स्मरण से किया जाए तो संपूर्ण दिवस में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है।

भक्ति ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण और अटूट श्रद्धा की वो अवस्था है जो अहंकार को मिटाकर मन को शांत और उदार बनाती है, साथ ही आंतरिक शुद्धि और निरंतर स्मरण का मार्ग है भक्ति।

सच्ची भक्ति मन के सारे द्वंद्वों को शांत कर देती है और भक्त परोपकारी, क्षमाशील और सदैव दूसरों के हित और प्रेम में समर्पित हो जाता है।

प्रकृति के संपूर्ण जीवों में ईश्वर का वास होता है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास होता है। अतः भक्ति दर्शाने के लिए ये कतई आवश्यक नहीं कि आप केवल मंदिर मंदिर भागे। सच्ची भक्ति और निष्ठा इस पर निर्भर करती है कि प्रत्येक जीव के प्रति आपके मन में सदाचार हो, सेवा भाव हो और समर्पण हो।

0: भक्ति संगीत के अंतर्गत आज आपने सुमन कल्याणपुर, हरिओम शरण, तुलसी कुमार और ओम प्रकाश की गाई भक्ति रचनाएं सुनी। हमारी आज की आराधना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। इसके अंतर्गत आज सुनिए स्वामी करपात्री जी महाराज के विचार।
1: प्रकाशते आत्मतत्त्वमस्यम अध्याम इति काशी, ऐसे जाबालोपनिषद है। कई उपनिषदें हमारे यहाँ हैं जो कि काशी के मरने से मुक्ति बतलाती है। काशी में जो मरता है मुक्ति होती है। तो क्योंकि उस प्रकार की भावना से भावित यहाँ ये भाव बन जाता है कि हम सब अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा के पुत्र, इसलिए हम सबका समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृता स्वाभाविक। हमारा आपस का जो भाईचारा का भाव और स्वतंत्रता का भाव और के समानता का भाव, ये हमारे यहाँ मूल आधार है। तो ये सब काशी में ही इस भाव का प्रसार विस्तार हुआ। मूल तो आदि अंत शून्य अनादि वेद है। हमारे यहाँ वेद अनादि है। वेदा अपौरुषेया संप्रदाय विच्छेदे सति असमर्जमान कर्तृकत्वात् जन्न एवं तन्न एवं यथा महाभारत आदि। वेद अपौरुषेय है माने उनकी संप्रदाय परंपरा टूटी नहीं और उनका उत्पत्ति हुई नहीं, आदि उनका है नहीं। तो संप्रदाय विच्छेदे सति असमर्जमान कर्तृकत्वात्, जिसकी संप्रदाय परंपरा टूटी नहीं और जिन ग्रंथों के कहीं कर्ता नहीं श्रुत होता। वेद का कोई कर्ता नहीं है। वेद अनादि अनंत जैसा परमात्मा है, जैसा परमात्मा है अनाद्य अनंत, ऐसे उसका निश्वास भूत वेद भी अनाद्य अनंत है। कहा जाता है वेद भगवान के निश्वास है। तो निश्वास भी जो है, निश्वास जो होता है वो प्राणी के साथ है, रहता है। तो ईश्वर अगर अनाद्यनंत है तो उसका निश्वास भी अनाद्यनंत है। ईश्वर अनादि है तो उसका निश्वास भी अनाद्यनंत है। इसलिए वेदा अपौरुषेया संप्रदाय विच्छेदे सति असमर्जवान कर्तृकत्वात्, इसलिए वेद अनाद्यनंत है और ये ईश्वर के श्वास है। श्वास का अर्थ यह है, श्वास अकृत्रिम होता है। श्वास अकृत्रिम होता है माने श्वास अपने आप होता है, उसका कोई उसका कर्ता नहीं होता। जब से प्राणी तब से उसके प्राण, जब से श्वास वाला तब से उसके श्वास। तो अगर श्वास वाला अनाद्यनंत परमात्मा है तो उसका श्वास भी अनाद्यनंत परमात्मा स्वरूप ही है। तो इस दृष्टि से वो वेद शास्त्र हमारे यहाँ का मूल मंत्र है और उसमें अनादि काल से श्रौत स्मार्त धर्म कर्म का प्रतिपादन है। कर्मकांड का, उपासना कांड का और आत्म साक्षात्कार का, तीन चीज माने क्या, ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपासना कांड। अर्थात कहीं आवश्यक है कि तभी सफलता होती है जब जैसे हमारे विचार हो वैसे हमारे आचार हो। आचार विचार सामंजस्य होता है। किसी के विचार बड़े ऊंचे हैं लेकिन आचार

0: गंदे हैं तो कोई फायदा नहीं। आचार किसी के बहुत अच्छे हैं लेकिन विचार कमजोर हैं तो काम नहीं चलता। इसलिए आचार आचार और विचार का सामंजस्य होना चाहिए। तो भारत में आचार विचार का सामंजस्य, विचार हमारे अनाद्य अनंत वेद ही, और वेदों के आधार पर हमारे यहाँ कर्मकांड अनादि काल से चल रहा है। उस कर्मकांड में हमारे यहाँ प्रत्येक प्राणी को अमृत का पुत्र जान करके उसके साथ उसी प्रकार के सद्भावना रखना, सद्भावना के साथ व्यवहार करना, ये हमारे यहाँ का विचार। तो हम विचार और आचार और उसी के अनुसार हमारे यहाँ कर्मकांड होता है।
1: विचार बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रही थी स्वामी करपात्री जी महाराज के विचार। मीडियम वेव के मीटर पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को, और अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी। आज सुनिए इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं दांतों के प्रत्यारोपण की, और डेंट उसी को हम लोग कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। और डेंटल इम्प्लांट इसको हम लोग एक तरह से इस समय कहते हैं थर्ड डेंटिशन। थर्ड डेंटिशन मतलब तीसरा दांतों का समूह। पहला समूह होता है जो दूध वाले दांत होते हैं, दूसरा समूह जो होता है असली दांत होते हैं, और तीसरा समूह होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल डेंटिशन, थर्ड डेंटिशन, मैन मेड डेंटिशन इसको कहते हैं कि आदमी ही इस डेंटिशन को बनाता है। अब देखिए कायदे से तो डेंटिशन या दांत जो है ज़िंदगी भर के लिए होते हैं, और लेकिन उसमें कुछ न कुछ बीमारियां हो जाती हैं हमारे खान पान की वजह से, उसके स्वस्थ न रहने की वजह से। तो दांत तो फिर हम लोगों को इंडिकेशन होता है कि हम लोग दांत निकालते हैं, ऐसे समय पर फिर हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं, डेंटल इम्प्लांट। अब डेंटल इम्प्लांट के ऊपर जब असली फिक्स दांत लगा देते हैं तो उसमें प्रिकॉशन भी हम लोगों को लेना पड़ता है। और प्रिकॉशन क्या होता है, जैसे कि दांत तब निकालते हैं तो हम लोगों को कोई नशा पानी नहीं करना होता होगा, क्योंकि अगर आप उसमें कोई सुरती पान तंबाकू इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये डेंटल इम्प्लांट में बहुत सहायक नहीं होता है। और कोई स्पेशली स्मोकिंग तो होता है तो दांत तो उसमें जो मेटल होते हैं, जो दांत अंदर होते हैं हड्डी के, उसके ऊपर दांत लगाए जाते हैं, वो बड़े सक्सेसफुल नहीं, फिर हिलने लगते हैं। जैसे दांत नॉर्मल हिलता है वैसे ये भी हिलने लगते हैं। और इम्प्लांट एक तो हमारे खाने पीने का प्रिकॉशन, दूसरा है हम लोगों को लोड। जैसे अब कहते हैं कि दांत एक निकाल दें तुरंत तो तुरंत एक लगाए जाते हैं, उसको हम लोग अर्ली लोडिंग एक दो दिन के अंदर हम लोग लगा देते हैं। अगर कुछ दांत होते हैं कि जैसे होता है कि जो है डिले लोडिंग कुछ एक आध महीने के बाद लगाते हैं, और असली जो होता है असली होता है कि 3 से 6 महीने तक दांत अगर नहीं है उसके बाद हम लोग लगाते हैं, और 3 से 6 महीने बाद लगाने के बाद हम लोग पूरा दांत पे लोड देते हैं, तो उसको कहते हैं कि डिले लोडिंग। और प्रॉपर लोडिंग वही होती है तो उसमें हम लोगों का पूरा फंक्शन, हम लोग दांत का जो चबाने का काम होता है, मुख्य काम दांतों का चबाने का काम होता है। इसके अलावा मुंह में दांतों का रहना और भी ज़रूरी होता है कि इससे सपोर्ट मिलता है हम लोगों को पूरे ऊपर नीचे के जबड़ों का, इसमें हंसने पे चेहरे का सपोर्ट मिलता है। इसमें खान पान अगर हम करें तो जैसे अब दांतों का हम लोग प्रॉपर चबा नहीं पाते हैं तो हमारे शरीर की कई बीमारियाँ होती हैं, तो डेंटल इम्प्लांट लगाने से कई बीमारियों का इसमें अपने आप निदान हो जाता है। ये करना है कि बहुत लोड हम लोग नहीं दें, और दांतों को डेंटल इम्प्लांट लगा के एक कुशल दंत चिकित्सक से लगवा के उसकी उतनी ही केयर करें, क्योंकि जो दांतों में बीमारियां होती हैं वैसी बीमारियां डेंटल इम्प्लांट या मेटल में भी हो सकती है। मेटल जो इंसर्ट होता है वहां भी मसूड़े चारों ओर इस तरह जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, या थोड़ा सा और कोई हड्डी की बीमारी है तो वहां भी हो सकती है। ये सब चीज देख के हम लोग यही कह सकते हैं कि डेंटल इम्प्लांट जो है बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन इसको उतनी ध्यान की जरूरत होती है जितना और विधाओं में और जो नॉर्मल दांतों में जरूरत होती है। अब एक दांत अब्सेंट हो तब भी डेंटल इम्प्लांट करके उसके ऊपर क्राउन लगाते हैं, जो डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम इम्प्लांट होता है, या दो या तीन, जैसे देखो इसको लगाने से इतना होता है कि हमारी हड्डी जो है, ऊपर और नीचे की हड्डी जो है वो सुरक्षित होती है, दांतों का

0: यही काम होता है, वही इम्प्लांट लगाने से भी सुरक्षा होती है। तो असली दांत जो है, अगर हम लोग प्रॉपर इम्प्लांट लगवाएं तो 3 से 6 महीने लगते हैं, और 3 से 6 महीने बाद हम उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं जो असली दांत, और वो उसको हम प्रॉपर फंक्शन करते हैं। अब वही जो पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब ये दांत चलेंगे कि नहीं पुराने, ये जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है। देखिए वही हमें बात फिर से कह रहा हूँ कि असली दांत भी जिंदगी भर के लिए होते हैं, लेकिन उसकी हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए उसको पहले निकाल चला जाता है दांत। तो इसको भी हमें पूरा ध्यान रखना है। उसी तरह हमें सफाई करनी है, कोई खान पान नशा ऐसी चीज नहीं करनी है कि इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो, और सुरक्षित अगर हम लोग मुंह का ध्यान रखें तो हमारा दांत हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है।
1: दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे, इस विषय पर अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी। स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्रीराम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

अभी आप सुन रही थी श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी के गायक कलाकार थी अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगांवकर। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से शाम 4 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित बाला साहब पूंछवाले का गायन। दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे अशोक कुमार झा का उपशास्त्रीय गायन। इसी कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित अरुण भादुड़ी का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनिएगा ए हरिहरन की गाई चंद गजलें, और दोपहर 12:30 पर इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित सीताराम सिंह के गाए भजन। संस्कृत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा और काजोल वाल्मीकि के गाए लोकगीत के अलावा सुनेंगे डॉक्टर शिशुपाल सिंह से की गई बातचीत। बातचीत का विषय होगा छिड़काव में उपयोगी उपकरण एवं नाशी जीव रसायनों की मात्रा की गणना। काजोल वाल्मीकि के गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे राजस्थानी लोकगीत।

दिन में 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें चर्चा और गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी डॉक्टर राजश्री यादव से की गई बातचीत, जिसका विषय होगा नाक कान गले से जुड़ी समस्याएं, कारण लक्षण और उपचार। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 12 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आपके लिए लेकर आएंगे रात 9:30 पर। श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 11 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कम्पीट प्रोग्राम कहकशा आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। आज की प्रस्तुति होगी शुचि उपाध्याय की। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में रसमाधुरी सुनिएगा रात 8:15 पर, रसरंग शाम 7:00।

0: 30 मिनट पर, झंकार सुबह 10 बजे और मधुरिमा सुबह 8:45 पर, साथ ही शाम 6:10 पर भी आप लोग फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। तो ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीयसञ्चेतना प्रख्यापिता।

0: यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज गए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

हेलो हाय नमस्कारम सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बनारस, क्या हाल है? सब बढ़िया ना? हाँ जी, मैं भी आपकी होस्ट और दोस्त शुचि बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ, और आ गई हूँ आपके आज के दिन को खास और एनर्जेटिक बनाने के लिए आपके अपने फेवरेट और नंबर वन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस में। तो फटाफट से अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका अपना फेवरेट और नंबर वन मॉर्निंग शो द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। गुड मॉर्निंग।

0: पड़ी।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी एनर्जेटिक धुन के साथ बनारस भी धीरे धीरे अंगड़ाई लेकर जाग चुका है। कहीं घाटों पर गूंज रही है सुबह बनारस का संगीत, कहीं चाय की दुकानों पर हो रही है गपशप, और कहीं गंगा किनारे बैठकर लोग खूबसूरत सुबह को अपने दिल में उतार रहे हैं। और दोस्तों, बनारस के घाट और गलियां तो यहाँ की पहचान है, और इन्हीं पहचान के साथ इन दिनों हम बात कर रहे हैं बनारस के घाटों की और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्सों और कहानियों की। हर घाट की अपनी एक कहानी है, कहीं राजाओं का इतिहास छिपा है तो कहीं संतों की साधना, और कहीं बनारस की वो परंपराएं जो आज भी इस शहर को दुनिया से अलग बनाती हैं। तो चलिए, आज घाटों की श्रृंखला में हम बात करते हैं निरंजनी घाट की। एक ऐसा घाट जो अपनी आध्यात्मिक शांति और साधु संतों की परंपरा के लिए जाना जाता है।

काशी के विभिन्न घाटों में से एक निरंजनी घाट का अपना विशिष्ट स्थान है। ये घाट न केवल अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। निरंजनी घाट पर स्थित निरंजनी अखाड़ा इस घाट का मुख्य आकर्षण है। ये अखाड़ा नागा साधुओं का प्रसिद्ध स्थान है और इसी अखाड़े के आधार पर इसका नाम निरंजनी घाट पड़ा। सन 1897 ईस्वी से पहले इस अखाड़े का विशाल भवन चेत सिंह किला का एक भाग हुआ करता था, जिसे काशी नरेश ने नागा साधुओं को दान कर दिया था। इस घाट पर स्थित अखाड़े में चार प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें निरंजनी महाराज की पादुका, माँ दुर्गा, गौरी शंकर और माँ गंगा की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इन मंदिरों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व काशी के धार्मिक जीवन से जुड़ी है। इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ का शांत माहौल उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है।

निरंजनी घाट का पुनर्निर्माण सन 1958 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा किया गया था, जिससे ये घाट अब पक्का, स्वच्छ और सुदृढ़ हो गया। ये घाट अपनी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत प्राचीन है और कभी काशी के पंच तीर्थ घाटों का हिस्सा हुआ करता था। निरंजनी घाट का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण है। यहाँ पर पर्यटक और स्थानीय लोग सुबह और शाम के समय सैर सपाटा मारते हुए चल देते हैं और यहाँ वे शांति का अनुभव करते हैं। काशी के अन्य घाटों में जहाँ हलचल रहती है, वहीं निरंजनी घाट पर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यदि आप काशी के घाटों में किसी शांतिपूर्ण स्थान की तलाश कर रहे हैं, तो निरंजनी घाट पर समय बिताना आपके लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। निरंजनी घाट काशी के अन्य प्रसिद्ध घाटों से अलग और वैशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ का शांत वातावरण, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक धरोहर इसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक आदर्श स्थल बनाता है। तो दोस्तों, यदि निरंजनी घाट की वो शांति और आध्यात्मिकता को आप जीना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ गंगा की लहरें मन को सुकून देती हैं, वहीं काशी की प्राचीन परंपराएं आज भी यहाँ जीवंत दिखाई देती हैं। ये घाट हमें बताता है कि बनारस सिर्फ गलियों और मंदिरों का शहर नहीं, बल्कि साधना, श्रद्धा और आत्मिक शांति का एहसास है। और दोस्तों, बनारस की सुबह हो, घाट की सीढ़ियों पर बैठे सुकून को महसूस करते हुए हाथों में गर्मा गर्म चाय की प्याली हो, तो क्या बात है। देखिए दोस्तों, बनारस की सुबह और चाय, ये रिश्ता बिल्कुल गंगा और घाटों जैसा है, कभी अलग नहीं हो सकता है। यहाँ हर गली में चाय की खुशबू है, हर घाट पर दोस्तों की महफिल और हर कुल्हड़ में अपनापन घुला हुआ है, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और बनारस में चाय सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है। सुबह की पहली चुस्की हो या शाम की लंबी बातें, चाय यहाँ लोगों को जोड़ती है, मुस्कुराहटे बांटती है और अनगिनत यादों का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि बनारस में चाय पे चर्चा होती है। जी हाँ दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। प्रत्येक वर्ष 21 मई को ये दिवस मनाया जाता है। पहले ये दिवस विश्व भर में हर साल 15 दिसंबर को विभिन्न उत्पादक देशों द्वारा मनाया जाता था। भारत की सिफारिश पर अब संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। दरअसल अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का सीजन मई में ही शुरू होता है, इसलिए ये दिवस 21 मई को मनाना सुनिश्चित हुआ। अब इस चाय के महत्व को जान लेते हैं। चाय उत्पादन और प्रसंस्करण विकासशील देशों में लाखों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है और लाखों गरीब परिवारों के लिए निर्वाह का मुख्य साधन है, जो कम से कम विकसित देशों में रहते हैं। चाय उद्योग कुछ देशों के लिए आय और निर्यात राजस्व का एक मुख्य स्रोत है और श्रम गहन क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से दूरस्थ और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। सिर्फ यही नहीं, चाय विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर किसी के दैनिक जीवन में चाय के महत्व को बताता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दुनिया भर में चाय के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब तक के पूरे इतिहास में चाय एक मूल्यवान आर्थिक वस्तु रही है। इस दिन का लक्ष्य बेहतर व्यापार प्रथाओं और काम की परिस्थितियों को बढ़ावा देने के साथ साथ चाय के नैतिक और टिकाऊ उत्पादन पर केंद्रित है। इस दिन का उद्देश्य भूख और गरीबी से लड़ने के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। चाय के विकास में गहन देखभाल और प्रयास की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बस इतना याद रखिए कि चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाली एक प्यारी सी वजह है। कभी दोस्तों की हंसी में, कभी परिवार की बातों में, तो कभी बनारस के घाटों पर बहती हवाओं के साथ चाय हर पल को खास बना देती है। और सच कहें तो बनारस में चाय की एक प्याली सिर्फ थकान नहीं मिटाती, बल्कि दिल को सुकून और बातों को अपनापन दे जाती है। तो अगली बार जब कुल्हड़ से उठती चाय की खुशबू आए, तो थोड़ा ठहरिए, मुस्कुराइए और जिंदगी के छोटे छोटे खूबसूरत पलों का आनंद लीजिए। इसी प्यारी से चुस्की और ढेर सारे मुस्कुराहटों के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

कामनाएं। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र, और अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं अपने देश दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। बरेका महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने अभिकल्प विभाग का व्यापक निरीक्षण कर विभाग में चल रही तकनीकी गतिविधियों, डिजाइन विकास कार्यों और आधुनिक अभिकल्पन प्रक्रियाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुणवत्ता, तकनीकी दक्षता और नवाचार आधारित कार्य संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने निरीक्षण के दौरान यूनिग्राफिक्स 3D सॉफ्टवेयर के माध्यम से WAP-7 पुशपुल लोकोमोटिव के कैब इंटीरियर डिजाइन मॉडल का अवलोकन किया। उन्होंने चालक दल की सुविधा, सुरक्षा और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए कैब को अधिक आधुनिक, एर्गोनॉमिक और क्रू फ्रेंडली बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोको कैब का डिजाइन केवल तकनीकी मानकों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें मानव केंद्रित सुविधाओं का भी समावेश होना जरूरी है, ताकि चालक दल को बेहतर कार्य वातावरण मिल सके। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने निर्यातित लोकोमोटिव के अंडर फ्रेम डिजाइनिंग कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संरचनात्मक मजबूती और वैश्विक गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अंडर फ्रेम के डिजाइन एनालिसिस और स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ परीक्षण हेतु फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को जल्द से जल्द RDSO भेजने के निर्देश दिए, ताकि परीक्षण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। महाप्रबंधक ने विभाग के कंप्यूटर रूम, प्रिंटिंग सेक्शन, वेंडर डेवलपमेंट सेक्शन, इलेक्ट्रिक सेक्शन और कंप्यूटर एडेड डिजाइन रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आधुनिक तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग, डिजिटलीकरण और कार्यस्थल के सुव्यवस्थित विकास पर भी बल दिया। साथ ही अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और आधुनिक डिजाइन तकनीकों के प्रभावी उपयोग की सराहना भी की। रोम में दिखी काशी की झलक, इटली के कलाकार ने पीएम मोदी को भेंट की वाराणसी के घाटों की पेंटिंग। इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में एक खास उपहार मिला। इटली के प्रसिद्ध कलाकार जंपाउलो टोमासेट्टी ने उन्हें वाराणसी के घाटों पर आधारित एक सुंदर पेंटिंग भेंट की। इस पेंटिंग में गंगा तट, नावें और काशी के घाटों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छटा को बेहद आकर्षक ढंग से दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए कहा कि रोम में काशी की झलक देखने को मिली। उन्होंने बताया कि जियांपाओलो टोमासेट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव 4 दशकों से भी अधिक पुराना है। पीएम मोदी के अनुसार टोमासेट्टी ने 1980 के दशक में वैदिक संस्कृति से जुड़ी पुस्तकों के लिए चित्रांकन का कार्य शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 2008 से 2013 के बीच उन्होंने महाभारत पर आधारित 23 विशाल पेंटिंग्स तैयार की, जिन्हें काफी सराहना मिली। सोशल मीडिया पर साझा तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी कलाकार के साथ खड़े नजर आए। उनके पीछे वाराणसी के घाटों की भव्य और रंग बिरंगी पेंटिंग दिखाई दे रही थी, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पेंटिंग में गंगा नदी के किनारे बसे काशी के आध्यात्मिक वातावरण को जीवंत रूप में उकेरा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकार के भारतीय संस्कृति और काशी के प्रति प्रेम की सराहना करते हुए कहा कि ये भारत और इटली के सांस्कृतिक संबंधों की गहराई को भी दर्शाता है। वाराणसी से होकर गुजरेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट और शेड्यूल। जी हां दोस्तों, रेलवे प्रशासन की ओर से गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए ग्वालियर बरौनी ग्वालियर समर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन वाराणसी से होकर गुजरेगी, इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। ग्वालियर से 19 मई से 14 जुलाई तक हर शनिवार, मंगलवार और बरौनी से 20 मई से 15 जुलाई तक हर रविवार और बुधवार को ये ट्रेन चलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन ग्वालियर से दोपहर 2:15 पर चलकर इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर होते हुए दूसरे दिन रात 1:05 पर प्रयागराज पहुंचेगी, फिर वाराणसी जंक्शन जाएगी। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार, और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 21 मई में क्या है खास।

नियुक्त हुए थे। सन 1994 में आज ही के दिन दक्षिणी यमन द्वारा उत्तरी यमन से अलग होने की घोषणा हुई थी। सन 1996 में आज ही के दिन प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की थी। और दोस्तों, बात करें आज के दिन जन्मे व्यक्तित्व की, तो आज ही के दिन सन 1940 में भारतीय मूल के हिंदी लेखक जो ब्रिटेन से हैं, नरेश भारतीय का जन्म हुआ था। सन 1931 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी का जन्म हुआ था। सन 1930 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर का जन्म हुआ था। सन 1857 में आज ही के दिन प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सार्वजनिक कार्यकर्ता सर सुंदर लाल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और बात करें आज जिन्होंने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो सन 2021 में आज ही के दिन प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ था। आज ही के दिन विश्व के एकमात्र ऐसे पहलवान जिन्होंने अपने जीवन में कोई कुश्ती नहीं हारी, गामा पहलवान का निधन हुआ था। सन 1991 में आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र भारत राजीव गांधी का निधन सन 1991 में हुआ था। और आज ही के दिन गांधीवादी जीवन शैली के समर्थक जानकी देवी बजाज का निधन सन 1979 में हुआ था। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की कुछ खास बातें। और दोस्तों, अब समय हो गया है आप सबसे फिर मिलने के वादे के साथ टाटा बाय बाय करने का। जल्दी मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी बातों और बनारस के घाटों से जुड़ी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से कुछ ही देर में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित

0: कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुए से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का अंतिम दिन आज। कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को रोम में सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए वैश्विक मंच पर एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु देश व राज्य की क्षति है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अधिकांशतः जागरूकता के अभाव में होती हैं। ऐसे में सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन स्तर पर सड़क सुरक्षा के संबंध में पाक्षिक बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीड तथा नशे में वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान परिवहन निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सही फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें। साथ ही चालकों, परिचालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण आने वाले वर्षों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य को अभी से खाद्य सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। उन्होंने मंडी कर और मंडी शुल्क प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंडियों में स्वच्छता, रंग रोगन, त्योहारों के दौरान प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार

0: और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक निर्माण विभाग की 2026-27 की कार्ययोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और XHandle AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने कल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर अपना कामकाज संभाल लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से MSME विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
1: प्रदेश में चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन है। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज भी लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में कल से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी।
3: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी, तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समय शेड्यूल में प्रोग्राम है।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में रात में भी उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा आज 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का

अंतिम दिन, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अरुण भादुरी का गायन, राग है नट भैरव। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं पिनाक घर शंकर। तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं रटत तेरो नाम। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री कुमार लाल मिश्र ने और सारंगी पर है जकन खां।

0: अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो

0: परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट अब आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
0: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
5: As America gets ready to celebrate our
6: 200th अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं

0: look forward to celebrating together.
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की चार दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी

0: बंगाल की फाल्ट असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खुसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरका अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिजाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली डिजाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के उसूल पर आगे कदम बढ़ाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत और इटली के दरमियान दिफाई सनती खाके के तहत साजो सामान मिलकर तैयार करने की राह हमवार हुई है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कामयाब दौरा भारत के बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात और सकाफती ताउन को मजबूत करने की उनकी जारी कोशिशों का हिस्सा रहा है। वजीर आजम मोदी का यह इटली का पहला दो तरफा और मजमूई तौर पर तीसरा दौरा था। उनके इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम और सरगर्मियां अंजाम पाई। उन्होंने इटली के सदर सर्जियो मटरेला से मुलाकात की। उन्होंने वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के साथ वफद की सतह की बातचीत की, जिसमें भारत और इटली के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। खुराक और ज़राअत की तंजीम के उनके दौरे का मकसद कसीर जैती और आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अज़्म को मुस्तहकम करना था, जहां उन्हें अहम यूएन एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। दोनों फरीकों ने 2027 के लिए सकाफत और सियाहत के इटली भारत साल के आगाज का भी फैसला किया। उन्होंने पुरजोश भारतीय और इतालवी फनकारों से भी मुलाकात की, जिन्होंने रोम आमद पर उनका इस्तकबाल किया। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान सकाफती तबादलों को फरोग देने और मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझबूझ को बढ़ावा देने और सकाफती सिफारतकारी को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात सिर्फ सियासी और इक्तसादी राबतों के जाविये से ही नहीं देखे जाते, बल्कि अवाम और मुआशरों के दरमियान रिश्तों से भी इनकी अक्कासी होती है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल गूगल, मेटा और टेलीग्राम समेत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और मुकाबला जाति इम्तिहानात से मुतालिक गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात, खासतौर पर टेलीग्राम चैनल्स और नामालूम ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 21 जून को दोबारा होने वाले नीट यूजी इम्तिहान से कबल ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। हुकाम ने कहा है कि अहम इम्तिहानात से पहले इस तरह के कई चैनल बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं और पेपर लीक होने के फर्जी दावे करने लगते हैं, जिससे तलबा और वालिदैन में गैर जरूरी तौर पर घबराहट, फिक्रमंदी और इबहाम की कैफियत पैदा होती है। मगरबी बंगाल में जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असेंबली हलके में आज दोबारा पोलिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने वहां

0: 29 अप्रैल की वोटिंग को रद्द कर दिया था और पूरे फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया था, क्योंकि वहां राय दहिंद खान को डराने धमकाने, पोलिंग मराकज में गैर मजाज अफराद की मौजूदगी और वोटिंग मशीनों के साथ मुमकिन छेड़छाड़ समेत बेजाबतगियों की कई इत्तलात मौसूल हुई थी। दो आजाद उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐलान किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता बैलेट पर उनका नाम मौजूद है, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पहले ही गुजर चुकी है। इस चुनाव में दिबांशु पांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम की तरफ से शंभुनाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। कल नाबन्ना में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अहदेदारों की मौजूदगी में बाजाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज किया। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
1: रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने साबिका सरकार पर तावुन न करके सरहदी सिक्योरिटी में रखना डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरहद पर बाड़ लगाना मुल्क और रियासत की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस तनाजुर में दरंदाजी, स्मगलिंग, जाली करेंसी, जबरन मजहब बदलने और गैर कानूनी बांग्लादेशियों के आने से वाबस्ता जराइम का हवाला दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर तवील सरहद में से लगभग 2200 किलोमीटर का सरहद का इलाका मगरबी बंगाल से मुत्तसिल है। तकरीबन 1600 किलोमीटर के इलाके पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर के इलाके में कोई बाड़ नहीं है। कल जो 27 किलोमीटर अराजी हवाले की गई है, उसमें 18 किलोमीटर खारदार तार लगाने के लिए और 9 किलोमीटर बीएसएफ की जांच चौकियों और बुनियादी ढांचे के बंदोबस्त के लिए है। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि मजीद अराजी जल्द ही मुंतकिल की जाएगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज के बारे में सलामती काउंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश परवदा नैनी ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम जरीफी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो बिल्कुल भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश परवदा नैनी ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो भारत में अपने साझेदारों के साथ अमरीका के कयाम को 250 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के मुंतजिर हैं। अपने दौरे से कबल एक वीडियो पैगाम में जनाब रूबियो ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और अमरीका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत है, लिहाजा अमरीका इसे मिलकर मनाने का मुतमन्नी है। भारत में अमरीका के सिफारतखाने ने भी मजकूरा वीडियो शेयर किया है। अमरीका 4 जुलाई को आज़ादी के ऐलानिये पर दस्तखत किए जाने के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। जनाब रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्तोदुलिदिस कल शाम भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे। उनके हमराह एक आला सती वफ्द भी है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हवाई अड्डे पर सदर क्रिस्तोदुलिदिस का इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारिजी उमूर की वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सदर क्रिस्तोदुलिदिस का ये दौरा भारत कुब्रुस शराकतदारी की बढ़ती हुई रफ्तार को उजागर करता है और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकदार और मजबूत अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित पर मबनी हैं। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। कांग्रेस कानून साज पार्टी के

0: नुमा राजेश कुमार और मेलूर से रुकने असेंबली पी विश्वनाथन को काबीना में शामिल किया जाएगा। साल 1967 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस सरकार रियासती काबीना में शामिल होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, मनिकम ठाकुर और दीगर बहुत से रहनुमाओं ने मखलूत हुकूमत कायम करने के वजीर आला विजय के फैसले का खैर मकदम किया है। अलफबरदारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के बाद हिस्सों में भी गर्मी का जोर जारी रहने का इम्कान है। आज मुल्क में इंसदादे दहशतगर्दी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों की तकलीफ को उजागर करते हुए और ये दिखाते हुए कि कैसे दहशतगर्दी कौमी मफाद के खिलाफ है, नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद से दूर करना है। इस दिन दहशतगर्दी के खिलाफ हलफ लेने के साथ साथ दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं। साल 1999 में आज ही के दिन मुल्क ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को एक दहशतगर्दाना हमले में खो दिया था। आईपीएल क्रिकेट में कल रात ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का चौथा और आखिरी हॉकी मैच 3-3 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। इससे कबल इसी मैदान पर 18 साल तक की उम्र की खातून खिलाड़ियों के चौथे और आखिरी मैच में भारत ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में इटली का दौरा करने और वजीर आजम जॉर्जिया मिलोनी से मुलाकात करने से मुतालिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को शहसुर्खी बनाया है कि भारत और इटली के दरमियान बातचीत सिर्फ रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक ने खसूसी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। अखबार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया किया है कि इंतजामी फैसले में ताखीर लोगों को उनके जायज हकूक से महरूम करने के मुतरादिफ। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि जनूबी कोरिया के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी और होगी मजबूत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हो चुके हैं और हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनल

0: लोगों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें
2: 054-222-7658
3: 054-222-7658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त यानी अंजू तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी आपके मुलाकात रोज सवेरे होती है, वो आवाज चाहे मेरी हो चाहे किसी की, लेकिन श्रोताओं तक पहुंचती जरूर है। और कहते हैं ना कि सुबह का समय जो होता है ना, वो ऐसा होता है शांत एकदम, और जब हम नींद में से उठते हैं तो सभी को सिर्फ एक तलब होती है, चाहे वो सुबह 5 बजे उठ रहा हो, चाहे वो 7 बजे उठ रहा हो, चाहे जो देर से उठने वाले हैं, उन सब की एक ही तलब होती है और वो होती है
1: चाको, चाको, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।

0: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो भी तो सोया पड़ा है।
1: ए, ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
0: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: सिट तो आए।
1: अरे अरे ठीक से पूजा तो करने दो मुझे, सारा दिन झगड़ा ही करोगे क्या है?
2: अरे साला, अभी तक लड़े हो तुम लोग?
3: अरे छोटू।
4: बनिया नीचे खड़ा है, साला पैसा मांगेगा।
1: लगता है आज तो
5: छूटी हो गई।
6: जागो जागो, सुबह हो गई। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत जो है वो चाय के साथ ही होती है, और सच पूछिए तो पानी के बाद चाय ही एक ऐसी चीज है जो ज्यादा पी जाती है। वो चाहे काली चाय हो, नींबू की चाय हो, या फिर दूध वाली चाय हो, या ग्रीन टी हो, लेकिन चाहिए जरूर। हर किसी के दिन की शुरुआत जो है वो चाय से होती है, और चाय के सम्मान में इसीलिए पूरा एक दिन विश्व भर में मनाया जाता है। यानी आज 21

मई का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हालांकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस साल 2005 से ही मनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले 15 दिसंबर को मनाया जाता था। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनल टी डे मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 21 दिसंबर 2019 को मान्यता दी गई। तो 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था, और तब से चाय प्रेमियों के लिए ये दिन खास होता है। और चाय से हमारे बनारस वासियों का लगाव तो खैर पूछिए ही मत। सुबह आप कहीं भी जाएंगे, कोई मॉर्निंग वॉक करने निकला है तो वो कहीं रास्ते में एक ठेले पे चाय पी रहा है, या फिर आप अगर अर्ली मॉर्निंग कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं घर में ही ऑनलाइन ही, लेकिन वो साथ में एक चाय का कप जरूर रखा रहता है। इसी तरह से कोई भी काम हो, चाय के बिना वो काम अधूरा रह जाता है, और इसीलिए हमारे लिए चाय का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कहते हैं ना कि दिन भर की एनर्जी अगर जगाए रखनी है तो सबसे ज़रूरी है कि सुबह बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से एक गर्म चाय की प्याली मिल जाए बस।

दोस्तों, आज का ये दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का मकसद सिर्फ चाय के स्वाद को ही जानना नहीं होता, बल्कि चाय से जुड़े जो एहसास हैं उनका भी उत्सव मनाया जाता है। और आज के दिन ख़ास तौर पर चाय से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं, चाय के व्यापार के बारे में, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, चाय के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या चाय को हम कैसे अच्छे तरीके से पी सकते हैं ताकि वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर बात करें भारत की, तो चाय तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और बनारस में आप कहीं भी निकल जाओ, चाय की टपरी आपको हर जगह मिलेगी। और सच में चाय दुनिया का सबसे पसंदीदा पेय है। सुबह की शुरुआत हो तो चाय, और अगर ऑफिस में काम कर रहे एक छोटा सा ब्रेक है तो चाय, या फिर बारिश के मौसम में अगर हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो चाय, या फिर अगर हम काम से बिल्कुल थक गए हैं और थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, तब एक प्याली चाय की ज़रूरत महसूस होती है। और ख़ास तौर पे ये जो नए नए आइडियाज़ और विचार आते हैं ना, ये भी लोग बैठते हैं, कागज़ों पे लिखते हैं, फिर नहीं समझ आता है फाड़ के फेंकते हैं, फिर लिखते हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रिया होती है चाय की एक प्याली के साथ। और सच पूछे तो चाय का संबंध मौसम से भी है, चाय का संबंध हमारे सांस्कृतिक त्योहारों से भी है। जब हम सारे किसी भी उत्सव में इकट्ठे होते हैं तो पहले तो यही होता है कि हाँ भाई, कोई चाय बना रहा है, और अगर आपने परिवार में किसी से पूछा उस दौरान कि आपको चाय पीनी है, तो ना का जवाब तो शायद ही कहीं से आता हो। तो हर किसी की पसंद है चाय, और हमारे एक दूसरे से जुड़ाव का, नज़दीकी का बहुत ही खूबसूरत एहसास है ये चाय की एक गरम गरम प्याली।

0: और अब इस प्रोग्राम में भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर होते हैं दोबारा चाय की कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, TB रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और TB की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में TB के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर TB के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे चाय की, कि हमारे यहाँ चाय एक अजीब सा अपनेपन का एहसास दिलाती है। दोस्तों के साथ बैठना, एक कप चाय पीना हर उस मौके को खास बना देता है जब भी हम किसी दोस्त से मिलते हैं। ये सिर्फ थकान दूर नहीं करती बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। कहा जाता है चाय की शुरुआत चीन से हुई थी और वहाँ चाय पीना सिर्फ आदत नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। चीन में चाय परोसने की पारंपरिक विधि को बहुत खास माना जाता है। चाय बनाने और परोसने का ये तरीका वहाँ शांति, सम्मान और अनुशासन से जुड़ा होता है। धीरे धीरे चाय चीन से दुनिया के अन्य देशों में भी पहुंची और इसका अलग अलग रंग रूप भी देखने को मिला।

और हमारे यहाँ जहाँ चाय जिंदगी का हिस्सा है, चाहे घर हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़क किनारे की कोई टपरी हो, दफ्तर की कैंटीन हो या गांव की चौपाल, हर जगह चाय मिल जाती है। कहीं मसाले वाली चाय, कहीं अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय या कड़क चाय, हर किसी की अपनी पसंद होती है। और मुंबई में तो कटिंग चाय भी बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है। कटिंग चाय यानी चाय का पूरा कप नहीं, आधा कप। तो इस तरह से चाय हमारी जिंदगी में हमेशा से शामिल रहती है। और भारत में तो हम ये मान के चलते हैं कि हर किसी की बातचीत की शुरुआत जो है वो चाय से ही होती है। हम कोई नई बात करने जाते हैं, कोई नई डील करने जाते हैं, तो ये होता है कि हाँ भाई, चाय की टेबल पे मिलते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी बातों पर बातचीत भी करनी होती है, यानी चाय पे चर्चा एक ऐसा टॉपिक है हमारे बनारस में, खास तौर पे वो चाय की अड़ी लग जाती है। लोग बातचीत करते रहते हैं और चाय की दुकान पे बैठे हैं, चर्चा राजनीति की हो, क्रिकेट की हो, काम की हो या परिवार की, बहुत सारी बातें हो, सारी बातें, उसमें कुछ टेंशन भी होती है, आपस में कुछ तकरार भी होती है, लेकिन एक लाइन बोली जाती है और उसके बाद वो सारे लोग फिर से एक रस हो जाते हैं और वो लाइन होती है, चलो चाय पीते हैं, और ऐसे करके माहौल को हल्का कर देते हैं। इवन बनारस में ही क्यों कहें, हर जगह संबंधों की शुरुआत भी चाय से होती है। और तभी तो रिश्तेदारों को कुछ बात करनी होती है तो हम चाय पे ही बुलाते हैं।

दोस्तों, चाय हमारे लिए एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एहसास है। चाय पी नहीं जाती, सिर्फ चाय महसूस की जाती है। और आज का ये दिन केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि उन लाखों किसानों और मजदूरों को सम्मान देने का दिन है जो चाय को खेतों से हमारे कप तक पहुंचाते हैं और हमारी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं। चाय हमारे दिन भर की तेज तर्रार जिंदगी में एक छोटे से आराम की तरह है जो कुछ देर रुकने, अपनों से बात करने और खुद को थोड़ा समय देने की याद दिलाती है। यानी चाय हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। और एक वाकया है दोस्तों कि एक बार शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी खंडाला जा रहे थे और वो लोग अक्सर जाते थे तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता था जहाँ रुक कर चाय पानी किया करते थे। और उस ढाबे पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम था रमैया। जब ऑर्डर देने के बाद ये लोग वेट कर रहे थे तो उस वक्त दुकान वाले ने आवाज़ लगाई, रमैया वस्तावैया। तेलुगु भाषी वो लोग थे और रमैया वस्तावैया का मतलब होता है रमैया इधर आओ। तो ये शब्द शैलेंद्र जी को इतना भाया कि ये बार बार उसी शब्द को दोहराते रहे दोहराते रहे। और कई बार सुनने के बाद शंकर जयकिशन जी और हसरत जयपुरी जी, उन्होंने कहा बस यहीं तक। और लौट के आने के बाद दोस्तों, उन्होंने ये खूबसूरत सा गीत तैयार किया और सबके मन को इतना भाया कि क्या ही पूछना। इस तरह से चाय का ये खूबसूरत दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चाय पीते रहिए, रेडियो सुनते रहिए और अपने रेडियो दोस्त संजू तिवारी को इजाजत दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। जिले की हलचल सुनिए लखनऊ केंद्र से।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सुल्तानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 प्रतिमा किए जाने के अवसर पर आगरा में अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित

0: अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम का लखनऊ से सजीव प्रसारण को जनप्रतिनिधि अधिकारियों और अनुदेशकों द्वारा देखा गया। इस अवसर पर जनपद के 226 अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि शिक्षक केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद समागम थीम पर आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, उद्यमी, निवेशक, किसान और गोपालकों द्वारा भाग लिया गया। डेयरी कॉन्क्लेव में स्वदेशी नस्ल संरक्षण और आधुनिक डेयरी तकनीक योजनाओं की जानकारी, गोपालन पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था, डेयरी और क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया गया। कॉन्क्लेव में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित निवेशकों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी। विगत दिनों आगरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस बिजनेस मीट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और न्यूजीलैंड सरकार के व्यापार और निवेश मंत्री टाड मैकल की मौजूदगी में व्यापार, निवेश, औद्योगिक साझेदारी के नए अवसरों का अन्वेषण करना और उन्हें बढ़ाने की ठोस रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए बिजनेस मीट में भारत और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों और नीति निर्माताओं ने सहभागिता कर दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिससे व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आगरा आने वाले समय में निर्यात के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे और इसी के तहत आगरा में भी एक इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की योजना प्रस्तावित है। आगरा में उद्योग बढ़ने से बेरोजगारी दूर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ताजमहल के साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी आगरा पहचाना जाएगा।
1: बहुत ही विस्तार से बड़ी सार्थक चर्चा आगरा के उद्योग जगत के साथ आज करने का सौभाग्य मिला। जो बेहतरीन काम आगरा में हो रहा है अलग अलग व्यापार में, चाहे वो चमड़ा का उद्योग हो, कपड़ा का उद्योग हो, मसालों का उद्योग हो, कि हम कैसे आगरा के उद्योग के लिए क्या नई योजनाएं, क्या नए प्लान्स कर सकते हैं।
0: धर्मवीर छत्रपति सामाजी महाराज की 369वीं जयंती पर छावा भारत क्रांति मिशन द्वारा राष्ट्रीय जन्मोत्सव समारोह 2026 के तहत महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा के विगत दिनों आगरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आगरा किला के सामने हनुमान मंदिर पर आयोजित संभाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, छावा भारत क्रांति मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर विजय काकड़े पाटिल द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बिलास पंगारकर ने बताया कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर 10 मई को महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा संभाजी नगर, इंदौर, चित्तौड़गढ़, भीड़वाड़ा होते हुए जयपुर से आगरा पहुंचे और यहां से जयपुर होते हुए नर्मदा के खलघाट पहुंचकर संपन्न होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि धर्मवीर संभाजी महाराज का जीवन और उनका संघर्ष आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है।
2: जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की चूलें हिला दी थी और औरंगजेब का दक्कन जीतने के सपने को कभी महाराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ने दिया था और हिंदवी स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी और उनकी वजह से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और सनातन संरक्षित रहा था। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं आगरा की तरफ से प्रणाम करता
3: हूं। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
4: जिले में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पिछले एक सप्ताह से पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। निरंतर बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। भीषण गर्मी व हीट स्ट्रोक से जिले के अस्पतालों के ओपीडी कक्ष में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। जनपद में नवागत जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह व पुलिस अधीक्षक चारू निगम के कार्यभार संभालने के बाद जन सुनवाई के मामलों में दिखाई गई गंभीरता के बाद जन शिकायतों का कुशलता पूर्वक निस्तारण कर रहे हैं। जिले की तस्वीर को बदलने के लिए प्रयासरत जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह

0: ने आकाशवाणी को बताया कि
1: तो ये सारे जो हमारे कोर इश्यूज हैं, एक डे टू डे हैं, एक लंबे हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके पूरी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है डिपार्टमेंट वाइज उस पर वर्क करेगी। हर डिपार्टमेंट से हमने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ले चुके हैं 50% हम लोगों से, और बाकियों की भी ले रहे हैं। फाइनल करके हम पब्लिक भी शेयर करेंगे, अपनी साइट्स पे भी डालेंगे कि ये चीजें जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है।

0: किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। आर्थिक सहायता से खाली खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी है और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। योजना ने छोटे व सीमांत किसानों को खेती के लिए आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे प्रधानमंत्री का किसानों की आय बढ़ाने का सपना साकार होता दिख रहा है। जनपद सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल पात्रों की संख्या 4,51,600 है, जिनमें से 13 मार्च को 22वीं किस्त के रूप में 3,97,442 किसानों के खातों में योजना की धनराशि भेजी जा चुकी है। जिन किसानों को धनराशि नहीं आई है, उनकी कमियों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर दूर किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि
1: फार्मर रजिस्ट्री हमारी लगातार चल रही है और ये 31 मई तक चलेगा। इसमें लगातार निराकरण चल रहा है और आगे के दिनों में इन किसान भाइयों का जिसका किसी कारण से वंचित रहे हैं, इनको प्राप्त होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अपने फार्मर रजिस्ट्री का जो कैंप चल रहा है उसमें अपना फार्मर रजिस्ट्री कराएं।
0: सत्र संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। भारतीय सत्र संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पर्यवेक्षक विद्यासागर ने बताया कि कुड़वार के रवनिया गांव के निकट गाटा संख्या 198 की नीलामी होगी। 11 जिलों में सत्र संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। शहर के लोक निर्माण विभाग, सिविल लाइन व गभड़िया में भी कीमती संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में जनगणना 2027 को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक सर्वे, मकान सूचीकरण और डिजिटल डेटा संकलन की प्रक्रिया शुरू करा दी है। जनगणना प्रक्रिया को मीडिया कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय पत्रकारों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र के वार्डों में कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक चिन्हित कर घर घर सर्वे की रूपरेखा बनाई गई है। जनगणना कर्मियों को डिजिटल एंट्री और मोबाइल आधारित डाटा फीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशासन QR कोड आधारित पहचान प्रणाली और ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। 16 मई 2026 से घर घर सर्वे और स्वगणना अभियान शुरू हो चुका है। रेलवे, बैंक और सरकारी संस्थानों में सेल्फ एलुमिनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जनगणना 2027 को प्रमुख अभियान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी निगरानी लगातार हो रही है। प्रथम चरण में 22 मई से 20 जून तक जनगणना का कार्य कर्मी घर घर पहुंचकर मकानों की गणना करेंगे। सुल्तानपुर जिले में आगामी वृक्षारोपण अभियान को लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया है। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने इस वर्ष व्यापक जनभागीदारी के साथ विशेष पौधरोपण अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी, घटते भूजल स्तर और पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना एक छोटे से अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: टी शर्ट जीन्स, इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम भवानीपुर थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर निवासी पन्नालाल पाल ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री सरिता दिनांक 18 मार्च 2026 से लापता है। इनकी उम्र है लगभग 23 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा, इकहरा बदन, कदकाठी सामान्य है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम साई धाम कॉलोनी लखीमपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली निवासी राम प्यारे ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री सुधा मसीह दिनांक 27 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 23 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला, गहरा बदन और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें नीले आसमानी रंग की साड़ी में देखा गया था। चंदौली से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम कांटा थाना सैयद राजा जनपद चंदौली निवासी रमाकांत ने सूचित किया है कि उनके पुत्र अभिषेक साहनी दिनांक 3 मई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 24 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला और कद काठी सामान्य है, चेहरा गोल है। आखिरी बार इन्हें हरे रंग की टी शर्ट और खाकी रंग के ट्राउजर में देखा गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना लीजिए, अब सुनिए।
1: को रहा था
0: कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पिंडराई थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी निवासी शिवम सिंह की पुत्री लावण्या दिनांक 2 फरवरी 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 4 वर्ष, कद 3 फीट और पहनावा है सफेद।

0: ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं।
1: स्फिग्नोमैनोमीटर।
2: बिल्कुल सही जवाब है, विदाउट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। टीम आबशार का, टीम रजनीगंधा के लिए अगला सवाल है,
0: मेटफॉर्मिन किस बीमारी में दी जाती है?
2: आपके ऑप्शन है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी डायबिटीज और ऑप्शन सी है अस्थमा।
3: सर ऑप्शन बी डायबिटीज।
2: डायबिटीज।
0: तालियां
2: हो जाइए।
0: और अब
2: फिर से सवाल हवा महल की तरफ।
0: टीम हवा महल के लिए, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है?
2: ऑप्शन है आपके स्टमक, चेस्ट या नेक।
4: नेक।
2: नेक। इस बार ऑप्शन ना भी दे तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड नेक पर होती है।
0: अगला सवाल बहुत आसान है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स जो है उनका जीवन काल, लाइफ
2: स्पैन
0: कितनी होती है?
2: 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन या 120 दिन?
1: 120।
2: जोरदार तालियां होनी चाहिए।
0: अगला सवाल है टीम रजनीगंधा, एमोक्सिसिलिन किस वर्ग की दवा है?
2: आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक या सी सेडेटिव।
1: एंटीबायोटिक।
2: एमोक्सिसिलिन राइट आंसर।
0: बिल्कुल सही जवाब। और एक बार फिर माइक आता है टीम हवा महल की तरफ। ORS का इस्तेमाल किसमें किया जाता है?
2: ऑप्शन है आपके हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन या डायबिटीज।
5: डिहाइड्रेशन।
0: और एक बार फिर टीम आबशार के लिए,
2: कौन सा विटामिन हमारे ब्लड को क्लॉट करता है यानी कि हेल्प करता है?
1: विटामिन के।
2: टीम रजनीगंधा के लिए अगला सवाल है,
0: कौन सी दवा नींद लाने के लिए दी जाती है?
2: आपके ऑप्शन है सेडेटिव, एंटीबायोटिक या एंटीसिड।
3: सर ऑप्शन ए
2: सेडेटिव।
3: जी
2: बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक बार फिर से टीम हवा महल की तरफ चलिए।
0: और टीम हवा महल के लिए सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है?
2: आपके ऑप्शन है शोल्डर जॉइंट, एल्बो, हिप या नी।
5: नी जॉइंट।
2: जोरदार तालियां टीम हवा महल
0: के लिए, बहुत बढ़िया। और अब एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। और सवाल है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है?
2: स्टमक, माउथ या इंटेस्टाइन।
1: माउथ।
2: माउथ। बिल्कुल सही जवाब है आपका।
0: अगला सवाल टीम रजनीगंधा के लिए, शम साहब।
2: मानव शरीर में ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? बोन मैरो, किडनी या लीवर।
0: बोन मैरो, किडनी या लीवर।
2: ऑप्शन ए बोन मैरो।
0: और एक बार फिर टीम हवा महल की तरफ हम चलते हैं। और टीम हवा महल के लिए सवाल है,
2: सोलबुटामॉल किस रोग में दिया जाता है?
0: अस्थमा, डायबिटीज या फिर फीवर।
5: अस्थमा।
2: अस्थमा। सही जवाब।
0: बिल्कुल सही जवाब। और अब अगले सवाल के लिए एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। और सवाल है कि मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है?
2: किडनी, लीवर या लंग्स।
1: लीवर।
2: लीवर।
0: और रजनीगंधा के लिए सवाल आ जाता है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन? इंसुलिन कहाँ बनता है?
1: पैनक्रियाज।
2: पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। आप लोगों का जो ये राउंड था वो टाई हो चुका है, लिहाजा हम एक सवाल आप लोगों के सब्जेक्ट से बाहर पूछेंगे। इसमें से एक टीम को जो हमें एलिमिनेट करना है।
0: ये सवाल आपके लिए आ रहा है जो आपको अगले राउंड तक ले जाएगा। रमनप्रीत सर पूछेंगे आपसे सवाल,
6: लेकिन ये जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोगों को हाथ उठाना है बस, ठीक है? मैं इसमें दो ऑप्शन दूंगा, जिसका हाथ उठेगा उसी का जवाब माना जाएगा। पहले आपको ये बताना है कि आकाशवाणी पे रजनीगंधा कार्यक्रम किस समय स्टार्ट होता है? ऑप्शन है 8 बजे रात में या 10 बजे।
2: टीम आबशार में हाथ उठाए।
3: सर रात 8 बजे।
6: गलत जवाब है, माइनस मार्किंग हो जाएगी।

0: जिसकी वजह से टीम रजनीगंधा आगे जाएगी।
1: तो अब ये टीम हवा महल और टीम रजनीगंधा ये फाइनल में है।
2: बहुत शानदार।
3: अब ये आखिरी राउंड शुरू हो रहा है। इस राउंड में जो जीता वही सिकंदर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बॉलीवुड और उर्दू अदब की दुनिया से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। टीम हवा महल के लिए पहला राउंड जो शुरू हो रहा है, जो जीता वही सिकंदर का, इसमें हम आपको एक गाना सुनाएंगे, उसके बाद सवाल पूछेंगे आपसे।

0: सवाल ये है, ये फिल्म थी दिल्ली 6 और इस गाने को आपने सुना। आपको ये बताना है कि इस गाने के लेखक कौन थे। ऑप्शन है गुलजार, प्रसून जोशी, आनंद भट्टाचार्य या फिर इरशाद कामिल। ऑप्शन बी प्रसून जोशी, और ये बिल्कुल सही जवाब
1: है। टीम हवा महल के लिए। टीम रजनीगंधा का अगला सवाल गौर से सुनिएगा ये।

0: इस गजल को लिखने वाले कौन है? और ऑप्शन है आपके पास गुलजार, समीर, निदा फाजली या फिर इंदीवर।
1: ऑप्शन ए गुलजार, क्या लगता है आपको?
0: नहीं, ये जवाब गलत है।
1: गलत है, आप डॉक्टर हैं।
0: इसे लिखा है निदा फाजली ने। अगला सवाल।

0: ये आवाज सुनी आपने, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज। आपको ये बताना है कि ये गाना किस फिल्म का है, नमस्ते लंदन, न्यूयॉर्क, रुस्तम या फिर सिंग इज किंग। ऑप्शन ए यानी नमस्ते लंदन।
1: नमस्ते लंदन कह रहे हैं भाई साहब।
0: बिल्कुल सही जवाब।

0: गाना आपने सुना, फिल्म थी कयामत से कयामत तक, गाया था उदित नारायण ने, और आपको ये बताना है कि गाना किस पर फिल्म आया गया है। ऑप्शन है आपके सलमान खान, शाहरुख खान, या फिर आमिर खान, या फिर सैफ अली खान।
1: ऑप्शन सी क्या है भाई?
0: आमिर खान।
1: आमिर खान
0: सही जवाब।
1: बिल्कुल सही जवाब, टीम रजनीकांत के लिए जबरदस्त।
0: और अगला गाना प्ले करें।
1: हाँ बिल्कुल।

0: गाना आपने सुना सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, ये किस फिल्म का गीत है? कुली नंबर वन, बेटा, डर या फिर आशिकी?
1: आशिकी। जोरदार तालियां। वेल डन।

0: जिंदगी की यही रीत है। मिस्टर इंडिया का ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है?
1: टीम रजनीगंधा के लिए ये सवाल।
0: राहुल रॉय, अक्षय कुमार, अनिल कपूर या फिर सुनील शेट्टी? ऑप्शन सी, अनिल कपूर। बिल्कुल सही जवाब।
1: टीम रजनीगंधा के लिए बहुत बढ़िया आपने खेला है।

0: आवाज आपने सुनी, तेरा हिजर मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। आपको बताना है कि इस गीत को गाया किसने। ऑप्शन है पंकज उदास, कबन मिर्जा, अनवर या फिर शब्बीर कुमार।
1: पंकज।

0: जी।
1: और ये सवाल है
0: रजनीगंधा के लिए।
1: बिल्कुल टीम रजनीगंधा के लिए, तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये किस फिल्म का गीत है? बहुत आसान सवाल है और ऑप्शन आपके पास है, रेडी, टाइगर जिंदा है, सुल्तान या फिर दबंग।
0: सुल्तान, इजहारे ताजियत अगेन, ऑडियंस पोल दबंग।
1: यानी आपका जवाब यहाँ पर होता है गलत। अब सवाल आपके पास आए हैं, बॉलीवुड से रिलेट करते हुए हैं।
0: टीम हवा महल के लिए प्ले करिएगा।
2: अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है और यही मेरा मजहब।
1: आवाज आपने सुन ली शाहरुख खान की, आपको बताना है ये डायलॉग किस फिल्म का है।
0: ऑप्शन,
1: माय नेम इज खान, डंकी, पठान या फिर रईस।
0: रईस, ओहो,
1: बिल्कुल सही जवाब। और अगला डायलॉग सुनाएंगे।
3: ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है।
1: सुन लिया आपने, सवाल भी हम आपको बता दें, आपको ये बताना है कि सनी देओल साहब इस फिल्म में कात्या किसे कह रहे हैं। और ऑप्शन हम आपको बता दें, अमरीश पुरी, परेश रावल, डैनी या फिर आशीष विद्यार्थी। ऑप्शन ए, अमरीश पुरी।
0: गलत जवाब।
1: गलत जवाब, सही जवाब है डैनी।
4: सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की।
1: सुन लिया, ये फिल्म कालीचरण का डायलॉग है और आपको बताना है कि लॉयन किसे कहा गया है, उस अभिनेता का नाम बताना है, रंजीत, प्रेम चोपड़ा या फिर अजीत।
0: प्रेम चोपड़ा।
1: सही जवाब है अजीत।
5: वो गैम्बो खुश हुआ
0: जी।
1: आपको बताना है ये डायलॉग किस फिल्म में बोला गया है, फिल्म तिरंगा, फिल्म खून भरी मांग, मेरी जंग, मिस्टर इंडिया या फिर हम पार।
0: टीम रजनीगंधा। ऑप्शन बी क्या है?
1: मेरी जंग।
0: मेरी जंग ऑप्शन बी राइट, यही है। गलत जवाब।
1: सही जवाब है मिस्टर इंडिया।
0: मिस्टर इंडिया, चलिए ये राउंड यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अब हमारा फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। पहला जो सवाल होगा इसमें उर्दू अदब से जुड़े सवाल होंगे। टीम हवा महल के लिए उर्दू अदब का सवाल है, गालिब का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है जफर अली गालिब, असदुल्ला खान गालिब या इनमें से कोई नहीं। दूसरा वाला, असदुल्ला खान गालिब, बिल्कुल सही जवाब है, तालियां हो जाएं।
1: और अगला सवाल क्या है?
0: अगला सवाल हमारा है, लफ्ज मर्द का मुतजाद क्या है? ऑप्शन क्या है जमशेद भाई?
1: आदमी, इंसान या फिर औरत।
6: सर ऑप्शन सी, औरत।
0: बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हमारा है, एक शेर दे रहे हैं आपको और आपको इसके राइटर का नाम बताना है। शेर है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। जमशेद भाई ऑप्शन दे दीजिए।
1: ऑप्शन जौक, गालिब या फिर मीर।
7: मीर।
1: मीर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही है, गलत है?
0: सही जवाब। जी, अगला सवाल आपके टीम रजनीगंधा से, लव गुफ्तगु का पहला हर्फ कौन सा है? के ऑप्शन है गाफ, बी गैन, सी इनमें से कोई नहीं।
6: सर गाफ है।
0: गाफ, क्या कहते हैं सईद अख्तर भाई? बिल्कुल सही जवाब है टीम रजनीगंधा का। शेर फिर से आप ही के हिस्से में आ रहा है, बेहद फेमस शेर है ये, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
1: ऑप्शन दे दे, इकबाल, हसरत मोहानी या फिर गालिब।
7: इकबाल।
0: इकबाल।
1: इकबाल।
0: ओ, बहुत बढ़िया, आपने इजहार ताजियत किया।

0: बिल्कुल गलत जवाब,
1: बिल्कुल गलत जवाब।
0: और आखिरी सवाल
1: आपके लिए, इस बार आपके लिए शेर एक आ रहा है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सवाल क्या है?
0: ये शेर किसका है? ऑप्शन है आपके पास बशीर बद्र, जिगर मुरादाबादी या फिर गालिब।
2: सर ऑप्शन सी गालिब।
1: मिर्ज़ा गालिब
2: जी।
1: इज़हारे ताज़ुब नहीं करेंगे आप लोग? गलत जवाब। और इसी के साथ ये राउंड यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। हमारे जजेस अभी जो विनर है उसका नाम अनाउंस करेंगे।
0: काफी जद्दोजहद, और आपने देखा कि बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने खेला। फाइनल राउंड में दोनों ही टीमों ने बड़ी मेहनत की। टीम हवा महल बहुत खूबसूरती के साथ खेली और टीम रजनीगंधा काबिले तारीफ, लाजवाब। ढेर सारी तालियां, एक बार तालियां पहले हो जाएं,
1: जोरदार तालियां हो जाएं। ये फाइनल
0: बहुत, बहुत जो मेहनत की है इन दोनों टीमों ने। और आकाशवाणी एट 90 जो गौरवशाली हमारे साल चल रहे हैं, और आज एरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं, और क्विज प्रोग्राम के जो विनर हैं यानी जो जीता वही सिकंदर, तो इस राउंड में सबसे ज्यादा नंबर की बात करेंगे तो टीम रजनीगंधा को मिले हैं 40 पॉइंट। जोरदार तालियां
1: होनी चाहिए।
0: और टीम हवा महल को मिले हैं 60 यानी
1: 60 पॉइंट। जो जीता वही सिकंदर,
0: तो जोरदार तालियां हमारी टीम हवा महल के लिए। जो जीता वही सिकंदर, और आज की सिकंदर टीम बनी है हवा महल टीम। और मैं दावत दूंगा हमारे सहायक निदेशक आकाशवाणी प्रोग्राम सुभाष खन्ना जी को कि वो स्टेज पर आए और हमारी विनर टीम को
1: ट्रॉफी यानी मोमेंटो पेश करें। मोहतरम सुभाष खन्ना सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीम हवा महल जो कि इस राउंड में यानी फाइनल में विनर रही है, ये मोमेंटो आपके लिए है। जोरदार तालियां होनी चाहिए जल्दी से।
0: और उसके बाद रनर टीम हमारी है टीम रजनीगंधा,
1: रजनीगंधा के लिए।
0: और उसके लिए स्टेज पर हम बुलाएंगे आसिफ इकबाल सर और रमनप्रीत सर, कृपया स्टेज पर आए दोनों लोग।
1: जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने भी,
0: बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने खेला, शानदार।
1: और आखिरी जो थर्ड टीम है टीम आबशार।
3: टीम आबशार के लिए मैं कहूंगा कि आप ये समझ लीजिए आप जीते नहीं हैं, लेकिन आज के बाजीगर आबशार
1: जी। बिल्कुल सही बात है, जोरदार तालियां आपके लिए।
0: और बहुत खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को अख्ताम तक पहुंचाया जुबैर साहब ने,
1: जुबैर खान साहब की।
0: जुबैर साहब को मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर साहब का।
4: अदा करना चाहूंगा आकाशवाणी लखनऊ से आए हुए पूरी टीम का एक बार फिर। ये मेमेंटो मेरे लिए बहुत बड़ा मेमेंटो है, बहुत सारे मेमेंटो मिले हैं, मेरी अलमीरा में रखे हैं, लेकिन आकाशवाणी से मिला हुआ इस पे जो आकाशवाणी लिखा है रियली है मेरे दिल के करीब है। अब मैं वाकई में इमोशनल हो रहा हूँ।
0: बहुत शुक्रिया आप सभी का।
5: सामईन ये था हमारा क्विज प्रोग्राम। हम इसमें शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों के बेहतर मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। अपनी राय, मशवरा या खत आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7997178157। इसी के साथ इजाजत दें अपने मेजबान आसिफ इकबाल को। आदाब।
6: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम के
7: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए
10: 0542227658।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें
11: 0542227658।
7: मीडियम वेव के मीटर पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को, और हम लेकर हाजिर हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं काजोल वाल्मीकि। इनके स्वर में सबसे पहले आपको सुनवा

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है काजोल वाल्मीकि। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन्हीं का गाया धोबिया गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थी काजोल वाल्मीकि। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। आज इस प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे फिल्मी दुनिया के कुछ ऐसे नायाब गीत जिन्हें हम कम सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं तो आनंद आता है। और हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का जश्न, और ऐसे में आकाशवाणी से बजाए गए कुछ ऐसे गीत जो रोज़मर्रा तक तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी सुनने ज़रूर मिलते हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म चोर पुलिस से।

दोस्तों, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और बोल निदा फाजली के और संगीत राहुल देव बर्मन का। और हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों

की, यानी ये जश्न हम सब मिलकर मना रहे हैं और आकाशवाणी यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्श पर खरा उतरते हुए हमारी विशाल देश के विभिन्न हिस्सों में 2400 घंटे सातों दिन प्रमुख भाषाओं में समाचार और मनोरंजन उपलब्ध कराता रहता है। आकाशवाणी देश की 98% आबादी तक अपनी पहुंच रखता है और रेडियो जो लोगों के दिलों में बसता है, हमारा आपका जुड़ाव इस रेडियो के माध्यम से ही है। इसलिए ये जो जश्न है, ये जो हमारा 90 वर्षों का सेलिब्रेशन चल रहा है, इसमें हमारे श्रोताओं की भी अहम भूमिका है, क्योंकि अगर हमारे श्रोता ही नहीं रहेंगे तो रेडियो पहुंचेगा कहाँ तक। रेडियो को रेडियो बनाया है आप सब श्रोताओं ने, तो इसीलिए कहते हैं ना कि कितनी भी हम बातें कर ले यहाँ से, लेकिन अगर हमारे श्रोताओं के दिलों तक बात नहीं पहुँचती तो फिर हम क्या कर रहे हैं रेडियो में। तो बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, रेडियो सुनते रहिए, गानों का लुत्फ लेते रहिए और इस शानदार जश्न का हिस्सा बनिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी आओ प्यार करें, बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत उषा खन्ना का। दोस्तों, आकाशवाणी के लिए हम सब ने इतना लगकर काम किया है, यानी जब से हम आकाशवाणी से जुड़े तब से हम लोगों ने, चाहे वो गीत आप तक पहुंचाने हो, चाहे आपकी फरमाइशें पूरी करनी हो, चाहे किसी खास विषय पर जानकारी देनी हो, आकाशवाणी हमेशा हमारे श्रोताओं के दिल में बसी रही। और अगर हम बात करें इतिहास की, तो 1936 प्रसारण की दुनिया में ये साल इतिहास में दर्ज है। जो आवाज़ आज 140 करोड़ श्रोताओं तक पहुंच रही है, ये उस

दिन की खास महत्व को दर्शाता है। शुरुआती दिनों में प्रसारण की इस विकास यात्रा को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बीबीसी के लियोनेल फील्डनल से सेवाएं ली। ये प्रसारण नियंत्रक के रूप में भारत में 1935 में आए और दिल्ली स्थित हमारे इस केंद्रीय रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ। 1936 में नए साल के दिन शुरू हुई रेडियो के विस्तार की योजना प्रक्रिया और इसी योजना प्रक्रिया का हिस्सा आज हम और आप सब बन रहे हैं।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी अकेली मत जइयो। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आर पार सी। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने, और आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की।

0: मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है, मोहब्बत कर लो।
1: श्रोताओं के साथ आकाशवाणी का 90 वर्षों का जो साथ है उसे निरंतर विस्तार और विकास मिलता रहा, और इस निरंतर विकास और विस्तार की यात्रा में 1990 के दशक में आकाशवाणी ने देश के कोने कोने में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। 2 मार्च 1990 को आकाशवाणी ने अपनी सफलता का एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इसका 100वां स्टेशन स्थापित किया गया। महज 3 वर्षों के अंदर 1993 में ओडिशा के बहरामपुर में 150वां स्टेशन स्थापित हुआ, यानी सफलता का परचम धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ रहा था। ये उपलब्धि देश में रेडियो प्रसारण के तेजी से फैलते नेटवर्क का प्रतीक थी, जिसे आकाशवाणी को हर कोने में पहुंचाने की अहम भूमिका निभाई। आकाशवाणी को एक ऐसी विरासत मिली जो आकाशवाणी के प्रत्येक छोटे छोटे स्टेशन पर देखने को मिली, एक ऐसा स्टेशन जहां से गूंजती आवाज देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और लोगों को जानकारी और मनोरंजन दे रही है।

हसरत जयपुरी की लिखी लिखा ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ में। शंकर जयकिशन का संगीत था और फिल्म थी जंगली। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इस कार्यक्रम के बाकी के नगमे हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार, और इस झंकार में अब जो घुंघरू हम लगाने जा रहे हैं, यानी अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो है मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे।

दोस्तों, हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का जश्न। देश भर के लगभग हर केंद्र में एक स्टेशन स्थापित किया गया, एक साधारण सा स्टेशन। ये बता रहा था कि आकाशवाणी की पहुंच कहाँ कहाँ तक बढ़ गई है। एक ऐसा केंद्र बन गया है जहाँ आवाज़ों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों में ऐसी गूंज निकली, इन दीवारों से, जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज़ पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों को भी हमसे जोड़ता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए आज AIR का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को प्रत्येक भूभागों में 2400 घंटे, सातों दिन, सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार विचार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है और साथ ही सभी का मनोरंजन भी करता है।

अब सुनिए गहरा दाग फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। शकील बदायूनी का लिखा ये गीत है और तर्ज बनाई है रवि ने।

आकाशवाणी के 90 वर्षों का जो जश्न हम मना रहे हैं उसमें हम और आप रेडियो के माध्यम से साझेदार बन रहे हैं, और आकाशवाणी ने इन सफ़र में एक और ऐतिहासिक मुकाम दर्ज किया और वो था रामचरितमानस की ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग। 1980 में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र में रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग आरंभ की गई। ये परियोजना भोपाल केंद्र के तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर समर बहादुर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। गोस्वामी तुलसीदास के इस महान महाकाव्य के सातों कांडों को रिकॉर्ड करने के लिए 14 लोक कलाकारों की एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें कई लोग शामिल थे। रिकॉर्डिंग की ये लंबी प्रक्रिया 1980 से 1992 तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 62 घंटे से अधिक समय का एक विशाल और सुरीला संकलन तैयार किया। अपनी प्रामाणिकता और मधुर प्रस्तुति के कारण ये संस्करण हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशाल उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया।

0: पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार के ना भी मुश्किल।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए और कार्यक्रम का अगला गीत

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब से। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष के इस सफ़र का हिस्सा हम भी रहे और हमारे श्रोता भी रहे। इस विस्तार और विकास के दौर में अनगिनत श्रोता हमसे जुड़ते रहे और उम्मीद है कि आगे भी हमारे श्रोताओं की ये संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी और आकाशवाणी आप सबके लिए मनोरंजन का संसार ऐसे ही बना रहेगा। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अब झंकार कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की युगल आवाज़ में। इसे हमने लिया है फिल्म भरोसा से, बोल राजेंद्र कृष्ण के, धुन रवि की। और अब इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 11 बज रहे हैं, सुनेंगे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बस कुछ ही पलों में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आए। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सबसे पहले जिन गीतों को, जिसके लिए आपको पहले से भेजे हुए ईमेल्स हमने इसमें शामिल किया है, उनके नाम हैं धरती फिल्म से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत राजेंद्र कृष्ण का और संगीत है शंकर जयकिशन का। और इस कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि प्रत्येक गुरुवार को हम ये ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम सुनवाते हैं आपको, जिसमें पहले से भेजे हुए ईमेल्स हम शामिल करते हैं। कार्यक्रम में हम आपके ईमेल्स शामिल करेंगे, पहले सुन लेते हैं आपका भेजे हुए ईमेल्स पर आधारित ये खूबसूरत सा फिल्म का गीत धरती से।

धरती फिल्म से अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है उनके नाम आपको बता दें। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, अनुराग मोहन। गनोरा विराली तहसील से, तहसील महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, सचिन पाटिल, सोनवर्षा खानपुर। चुनार मिर्ज़ापुर से अनिल राजभर, मनीष राजभर, आकाश राजभर। परभड़ी महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रवेश संगई, प्रीतेश संगई और पूरा संगई परिवार। तहसील रोड गंज डुंडवाला से केएच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हमाद जमील। इसके अलावा पटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू का ईमेल आया है। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव का ईमेल प्राप्त हुआ इसी गीत के लिए। पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह ने हमें ईमेल भेजा है इसी गीत के लिए। गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान, ग्राम खरवत खड़कोना से मोतीलाल गुप्ता, लाल बिहारी सिंह, विजेंद्र पासवान ने सुनना चाहा था इस गीत को। इसके अलावा सीतामढ़ी बिहार से नूर महल महसौल, मुसर्रत जहां, तुलहत जहानाज, फरहत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी ने ईमेल भेजा था इस गीत के लिए। इसी गीत के लिए नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कुवात बिहार से शेख जबर हसन और नरगिस सफर का ये ईमेल प्राप्त हुआ। इसी गीत के लिए ये ईमेल हमें मिला है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले। इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म आया सावन झूमके से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आया सावन झूम के, अभी आपने सुना इस फिल्म के गीत को। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है उनके नाम हम आपको बता दें। घमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेनपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने ये संदेश भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा, जिला गाजीपुर से ये संदेश भेजे हैं इसी गीत के लिए। प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेर पुरकला, जिला गाजीपुर से, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का ये ईमेल प्राप्त हुआ। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमें ईमेल भेजे थे इसी गीत के लिए।

लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू का ये ईमेल प्राप्त हुआ। अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है कोल सिटी बरका खाना से। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अनु गोस्वामी का ये संदेश प्राप्त हुआ है उच्ची भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष का ये संदेश प्राप्त हुआ। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू हईद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत का ये ईमेल मिला है। इन्होंने शुक्रिया लिखा है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ने ये ईमेल भेजा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिवार का ये ईमेल प्राप्त हुआ। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का ये ईमेल प्राप्त हुआ। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने ईमेल भेजा था इसी गीत के लिए। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ था हनुमानगढ़ राजस्थान से। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर और अनूप जलोटो की आवाज में। गीत है आनंद बख्शी के और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक दूजे के लिए फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को, और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा था उनके नाम आपको बताते चले। जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ था इसी गीत के लिए। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा ने ये ईमेल भेजा था। पद्मा टॉकीज नेपानगर उत्तर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र दी जी शाह का ये ईमेल प्राप्त हुआ। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, रजिंदर सिंह ओबेरॉय ने ईमेल भेजा। वाड़ी खामगांव से अनंता वाढ़े, रामेश्वर वाढ़े, शुभम, साक्षी और खुशी और उनका समस्त परिवार ने ये ईमेल भेजा था। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडलकर, शुभम।

बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, जिन श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा उनके नाम बता दे। बन्ने बुजुर्ग भुजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनल विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहूं जिला जौनपुर से, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरा तबस्सुम, अनेई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। अलावा इसके गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा का संदेश हमने ईमेल में शामिल कर लिया है। इसके अलावा लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, धरारा बजरडीहा वाराणसी से एनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, सलीम आजाद अंसारी, इकबाल अंसारी और श्रवण कुमार का ये हमें संदेश प्राप्त हुआ। विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा और डोली थापा का ये संदेश हमें मिला है सरगुजा मेन पार्ट से। जेल रोड झांसी से सुमित मोगा, देव मोगा, राधिका मोगा, कबीर मोगा, सहारनपुर जंक्शन से सुरेश पासवान और आशा डूकर का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ। पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुंभार का ये संदेश हमें मिला है कुंभार गली कोलगाम से। इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उमर खेड़ से अभिजीत मोगा, देव शंकर मोगा, प्रमिला पॉल, कबीर नगर वाराणसी से देव जाटव, बेलदार शंकर बेलदार, सरिता बेलदार और पूजा टुनटुन बेलदार, बक्सर से सरफुद्दीन अंसारी, राधे राज आशा अंसारी का ये ईमेल मिला। अलावा इसके मेहर पटेल कॉलोनी राजकोट से अजीता पॉल, हेमा का ये संदेश हमें मिला। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ। जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नासिर मुलाणी, बाबूजी मुलाड़ी, बादशाह मुलाड़ी और पूरा मुलाड़ी परिवार ने हमें ये ईमेल भेजा था। मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली, तालुका पंढरपुर से। भाटपारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू का ये हमें ईमेल प्राप्त हुआ। डोली बेलदार जाटव छत्तीसगढ़ से, प्रभा रानी गुड़िया चंद्रनगर महाराष्ट्र से, आशा जटोलिया और देवशंकर जटोलिया, जेल रोड रायगढ़ से उमा रानी अजनबी, बेबी जोई अजनबी ने ये हमें ईमेल भेजा।

अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कुवात बिहार से, शेख जफर हसन और नरगिस जफर का ये ईमेल प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको हिमालय की गोद फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल से, महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरत।

हिमालय की गोद में फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को, आवाज थी लता मंगेशकर की। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है उनके नाम आपको बता दें। शिवाजी चौकटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जक, लालू, सोना मोना और हनी और उनके मम्मी पापा। अलावा इसके मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से हमें ईमेल भेजा था इस गीत के लिए। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जलंधर, पंजाब से।

ये संदेश हमें प्राप्त हुआ था। ग्राम कुंडवाल तारापोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी राखी आर्या इंद्री ओमनाथ सारंग शिवांग रोली अदिति माताजी निर्मला त्रिपाठी इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाड़ी खामगांव से अनंता वाढ़े रामेश्वर वाढ़े शुभम साक्षी खुशी और समस्त वाड़े परिवार का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ। इरशाद अहमद अंसारी कामरान इरशाद अरमान इरशाद नावेद इरशाद अजरा तबस्सुम का ये संदेश मिला है। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहूं जौनपुर से रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल अब्दुल मजीद अंसारी नौरी नाफिया परवीन का ये ईमेल मिला। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ। नबी हसन अब्बासी सहनाज अब्बासी नावेद हसन अब्बासी राशिद वारसी सुहेल हसन अब्बासी अनम अब्बासी यसफ अब्बासी का ये संदेश मिला है। मरहरा दरवाजा एटा से सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इरशद अब्बासी का ईमेल हमें यह प्राप्त हुआ। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रिस्टो रोजी डिक्रिस्टो पल डिक्रिस्टो और विलिस डिक्रिस्टो का संदेश हमें मिला। इन्होंने धन्यवाद लिखा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नांदेड़ से ये संदेश आया है। नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ का रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही शमशुल कुमार राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन तुषा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी का ये मिला था इसी गीत के लिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से ये हमें ईमेल आया है। आजन कुमार सिंह वंदना सिंह विनती विनायक सिंह मोहिनी मोहित सिंह और उनकी प्यारी प्यारी कोको रानी का इन्होंने भी धन्यवाद लिखा है। आपका भी धन्यवाद। ओम कुमार सुरलकर विजय सुरलकर रतन माला सुरलकर मुताला महाराष्ट्र से हमें ईमेल भेजे थे इसी गीत के लिए। शाहजी बोटके श्रीमती नंदा बोडके हनुमान बोडके उत्तम जाम जम दोड़े इन्होंने हमें ये संदेश भेजा है हिंगोली महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में अब आइए सुनवाते हैं अगला गीत। फिल्म राजकुमार से लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है और संगीत है शंकर जयकिशन का।

राजकुमार फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है उनके नाम आपको बताते चलें। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु अर्णवानंद, सत्यम आनंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, मधुकर येले, कुरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू का ये संदेश मिला। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का ये ईमेल मिला है। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ का ईमेल प्राप्त हुआ।

संजय साहू पुटिया कला से हमें ईमेल भेजे हैं। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह का ईमेल प्राप्त हुआ इसी गीत के लिए। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तमन्या गजभिये का ईमेल प्राप्त।

शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का ये ईमेल प्राप्त हुआ था राजकुमार फिल्म के इस गीत के लिए। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवनराज जाधव का ईमेल हम शामिल कर रहे हैं। नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू का ये ईमेल है। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार का संदेश शामिल हुआ। परभणी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने ये हमें ईमेल भेजा है। राशिद हुसैन अंसारी का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ। कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना, रजिंदर सिंह ओबेरॉय का ये संदेश है। छत्तीसगढ़ पराली से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा का ये ईमेल है।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने हमें ईमेल भेजा है इसी गीत के लिए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिवार का ये ईमेल है। इन्होंने लिखा है, संदेश को शामिल ज़रूर से करें, आपका हमने ईमेल शामिल कर लिया है। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहूं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद का ये संदेश है। रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशूल कुमार राही, बेगम रुखसार, अकीबा शाहीन, तुबा आफरीन और शमीम अंसारी का ये संदेश हम प्राप्त कर चुके हैं। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई, सुदामा नगर खंडवा लक्ष्मी नंदिन से नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगपाल का। अब इसी के साथ हम अब फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आपको अब सुनवाते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: सभी श्रोताओं

0: स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
0: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
0: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
0: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
0: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
0: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
0: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
0: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
0: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
0: जी,
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी,
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए। वर्षा वनों के बारे में। तो अजीत जी, आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की
0: जी।
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं
0: जी।
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट
0: जी।
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत
1: जी।
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग

0: 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओ, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी
1: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन, यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया।

0: चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं।

0: अगला कार्यक्रम शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
0: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता उधर।

0: इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश,

0: और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।

0: बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
1: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
2: अरे वाह अटकू मटकू,
1: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
3: पेड़ हमारे
4: दोस्त हैं।
3: जीवन में हरियाली लाओ,
4: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
5: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार। उमंग,
7: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुनेंगे सुगम संगीत इस संदेश के बाद।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए
10: 0542227658।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें
11: 0542227658।
7: सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं पंडित सीताराम सिंह। इनके स्वर में आइए सुनते हैं सबसे पहले ये भजन, रचना है तुलसीदास की।

विद्यापति की इस रचना के साथ ही समाप्त होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार थे पंडित सीताराम सिंह। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अशोक कुमार झा का उपशास्त्रीय गायन। राग है पीलू में ठुमरी। आपके साथ तबला संगत की है भोलानाथ मिश्र ने।

अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार झा का उपशास्त्री गायन राग था पीलू में ठुमरी। आपके साथ तबला संगत की थी भोलानाथ मिश्र ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी

0: निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। आइए आपको जानकारी दे दें कोविड के संबंध में और कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज केंद्र से प्रसारित शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। थाना प्रभारी लालगंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुन्ना लाल यादव पुत्र गिरजा यादव निवासी तुलसी पोस्ट लहंगपुर थाना लालगंज मिर्जापुर। मुन्ना लाल यादव दिनांक 11 अप्रैल 2026 दिन रविवार को घर से कहीं चले गए थे और लौट कर वापस नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र लगभग 65 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच। लापता होने के समय इन्होंने शर्ट, लुंगी, रुमाल ले रखा था और इनका हल्का दाढ़ी भी बढ़ा हुआ है। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी लालगंज को 9454404013 पर सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आशा देवी पत्नी कविराम निवासी ग्राम विदापुर थाना कछवा जनपद मिर्जापुर। आशा देवी दिनांक 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार शाम 3:30 से बिना बताए घर से कहीं चली गई और लौटकर वापस नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 21 वर्ष, कद

5 फीट 3 इंच, रंग गोरा है। लापता होने के समय इन्होंने आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को 9736802924 पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। अब आइए एक नजर डालते हैं आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। संदेश टू सोल्जर्स सुनिएगा शाम 4 बजे से। कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित बाबा साहब पूंछवाले का गायन सुनेगा रात्रि 10:30 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन होगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में ए हरिहरन की गाए गजलों का लुत्फ उठाइएगा रात 8 बजे। और कहकशा का समय होगा दिन में 2:30 से। संस्कृत कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7 बजे से। कृषिजत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा सुनिएगा छिड़काव में उपयोगी उपकरण एवं नशीजीव रसायनों के मात्रा की गणना विषय पर डॉक्टर शिशुपाल से बातचीत। और साथ ही सुनिएगा काजोल वाल्मीकि का गाया लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में होगी आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में राजस्थानी गीत सुनेगा शाम 5 बजे से। बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम अंगने या दिन 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा सुनिएगा PCOS कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर रुचि सिन्हा से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। और साथ ही साथ होगा गीत संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपकी पसंद सुनिएगा रात 10 बजे रसमाधुरी, रात 8:15 पर रसरंग, शाम 7:31 पर। और फिल्म संगीत सुनेगा शाम 6:10 पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित शेष प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इलाकाई खबरें सुनेंगे बस कुछ ही पलों में हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल लखनऊ में रोड सेफ्टी को लेकर एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि सड़क हादसात ज़्यादातर बेदारी की कमी से होते हैं, ऐसे में तमाम अज़ला में रोड सेफ्टी से मुतालिक खुसूसी मुहिम चलाई जाएँ। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वह सड़क की हिफाजत की कोशिशों के पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए सरकारी सतह पर 2 हफ्तेवार मीटिंग करें। उन्होंने स्टंटिंग, स्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाने की रोकथाम के लिए मुअसर इकदाम की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से कहा गया कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि सिर्फ मुनासिब फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें और ड्राइवर और कंडक्टर की बाकायदगी से सेहत की जांच होती रहे। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत दी कि सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही करके ज़रूरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अल नीनो के असर से आने वाले बरसों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए रियासत को अभी से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और अंदरून मुल्क गंदम की प्रोसेसिंग को फ़रोग देने के लिए मार्केट फीस में छूट जैसे मसाइल का जायज़ा लिया।
1: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को

0: डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल महकमा तामीरात आम्मा के साल 2026-27 के लाहे अमल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। मीटिंग में रियासत के तमाम जिला मजिस्ट्रेट, वुजरा और अवामी नुमाइंदे शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने अफसरान को वाज हिदायत दी कि तरक्याती कामों में मेयार और वक्त से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के हर एक ज़िले से मकामी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती तजावीज़ तैयार करके एक हफ्ते के अंदर पेश की जाएँ। रियासती काबीना की तौसी में काबीनी वजीर बने भूपेंद्र चौधरी ने कल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के वजीर के तौर पर ओहदा संभाला। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की में MSME का अहम किरदार है।
2: निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से MSME विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आइंदा नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान के मद्देनज़र मरकजी हिफाजती और खुफिया एजेंसियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में जनाब प्रधान ने इम्तिहान को महफूज, गैर जानिबदाराना और शफाफ तौर पर कराने के लिए सख्त निगरानी और पुख्ता हिफाजती इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया। रियासत में जारी खुद शुमारी का आज आखिरी दिन है। रियासती मर्दम शुमारी के डायरेक्टर और चीफ प्रिंसिपल मर्दम शुमारी अफसर शीतल वर्मा ने लोगों से आज भी खुद शुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। मर्दम शुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत रियासत में कल से मकानों की गिनती शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस दरमियान कल सुप्रीम कोर्ट ने मर्दम शुमारी 2027 के तहत ज़ात पर मबनी मर्दम शुमारी कराने के मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मसला हुकूमत के पॉलिसी दायरा कार में आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि पसमानदा तबकात के लिए फलाही इकदाम करने के वास्ते हुकूमत को उनकी तादाद जानना ज़रूरी है। रियासत में शदीद गर्मी और लू से लोगों की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। बांदा कल 48 डिग्री दर्जे हरारत के साथ रियासत का सबसे गर्म ज़िला रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। महकमा मौसमियात ने कल तक रियासत के बाज़ मकामात पर शदीद लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:15 हो रहे हैं। बहनें अपना सुनेंगी कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहिन लोगन के नमस्ते और हम साथे साथे कहीं पारो तहु के नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी और सुनने वाली सब बहिन लोग के नमस्ते। और दीदी का हाल चाल बा?
0: अरे का हाल चाल बताई पारो, आवा में लगल रहा भैया के कितना दूर जो है टहक टहक के लगत बा। अब तो घरे से सवेरे संझा ही निकले लायक हो, अगर बहुत जरूरी ना हो तो भाई दोपहरिया में तो निकल के एकदम में मन ना करत हुए।
1: हाँ दीदी देखा नहीं, इतना गर्मी पड़ता कि मन करत है कि ऐनी है कि तुरंत ही एक लीटर पानी पी दे, लेकिन देखा ना दीदी मन के तनी समझा के रखल जाओ, घामे से ओले पर तनी थोड़ी देर सुस्ता लियल जा फिर पानी पियल जा। दीदी हो

0: कि बड़ा बढ़िया से दुपट्टा उपट्टा बांध के आवत रहलू हाँ।
1: हाँ का कहीं हो पारो दुपट्टा नहीं कहीं कि सथवा में तब छातो भी लेके चले के बा बोतल के पन्नियों लेके चले के बा काहे से जोनी धूप लगत बा न कपारे पर तो ऐसे अपने के बचाव करे बदे ये सब अपने साथे रख बहुत जरूरी है।
0: हाँ।
1: और जोन कहली होना कि पानी पिए के बाद तो भाई कहीं कि बिल्कुल ये बात के सभी के बांध लो के चाहिए कि धूप से अला के बाद तुरंत जो है पानी न पिए और थोड़ा देर रुक के पिए और लेकिन ओकरे साथे साथे कहीं पारो ना कि
0: हाँ
1: कुछ
0: दीदी
1: भाई गुड़ हो या चीनी हो कुछ मीठा जरूर खा लें खाली
0: हाँ
1: पेट पानी ना
0: बिल्कुल
1: पिए।
0: बिल्कुल। अब आखिर देखा दीदी जैसे हमन के धूप से शरीर के बचावे नहीं जाना वही तरह शरीर के भीतर पल रहल रोग से भी बचावल बहुत जरूरी बा।
1: ये मने ही कहला ना कि
0: हाँ
1: कुल खैला पिला बेकार बा जब तक कि भाई शरीर में अगर कोनो अंदर अंदर रोग पड़त बा तो ओकर जो है कि ना शक्ति बनेला ना ओके कार्य करे के मन करेला ओके हमेशा जो है कि लगेला कि भाई कितना सुस्तायल रखल हो जाए ना।
0: हाँ दीदी। और वही में एगो रोग हवे टीबी जेके क्षय रोग भी कहल जाला। जब मनई के लगातार 6 हफ्ते से ज्यादा खांसी आवत होके कमजोरी होके भूख ना लगे तब ई रोग के संकेत हो सकेला। लेकिन घबराए के ना बा कि होइबे करे लेकिन अगर संकेत दिखे तो जांच जरूर कराई लोगन।
1: और कहीं ना
0: हाँ
1: कि जोन
0: दीदी
1: बात कहलू है जांच करावे के तो कहीं कि अपन सरकार भी में पीछे ना हो सरकार के
0: हाँ
1: द्वारा
0: दीदी
1: जोन हो ना
0: बिल्कुल
1: कि
0: हाँ
1: टीबी मुक्त भारत अभियान जोन हो ये योजना चलावल जात हो
0: हाँ
1: और
0: दीदी
1: एकर उद्देश्य ही ई हुए कि भाई जे भी अपने पूरे देश में
0: हाँ
1: सबकर जोन हो कि स्वास्थ्य अच्छा रहे और एकरे बदे ई भी प्रयास कैल जात हो कि भाई जगह जगह दिखा ना
0: हाँ
1: अपने जोन
0: दीदी
1: स्वास्थ्य केंद्र हुअन
0: हाँ
1: ओपे
0: हाँ
1: निःशुल्क दवा वगैरह भी जोन हो वितरित कैल जाला। लेकिन जोन
0: हाँ
1: एक बात कहलू है ना बड़े पते कहे कि भाई जरूरी ये बात कहो कि अगर आपके शरीर में कोनो तरह के ऐसा लक्षण आवत हो
0: हाँ दीदी
1: ना
0: बिल्कुल
1: तो
0: हाँ
1: पहले जाके आप ओके जोन हो कि जांच करा ले परीक्षण करा ले
0: हाँ
1: अगर आपके लगत हो डॉक्टर का सलाह हो कि नहीं टीबी रोग का आपके अंदर लक्षण हो तो भाई डॉक्टर जे तरह का सलाह दे ओकर संबंधित दवा करें परहेज करें और
0: हाँ
1: कहें कि इलाज बीमारी ना हो एकर इलाज संभव हो।
0: हाँ दीदी। और बतौलू ना कि सरकार भी इनमें मदद करे ना तो एगो निक्षय पोषण योजना हवे तो जौन रोगी क्षय रोग से पीड़ित होखेला ओकरे उपचार बदे पौष्टिक आहार के भी जरूरत पड़ेला तो
1: बिल्कुल
0: उमें सरकार सहायता देले जैसे दूध दाल सब साग सब्जी फल मूल के आवश्यकता होला
1: हाँ
0: तो ये
1: हाँ
0: खातिर के आर्थिक सहायता भी मिलेला। तो खाली एमें खाली औषधि ना बल्कि सही भोजन भी बहुत जरूरी बा।
1: अरे इतने ना ही कहीं ना कि
0: हाँ
1: अब भाई
0: दीदी
1: निक्षय मित्र सामुदायिक समर्थन योजना भी भाई में एक व्यक्ति या संगठन जो हो ना जनप्रतिनिधि बन के अपन
0: हाँ
1: टीबी
0: दीदी
1: रोगन के गोद ले सकन है और इनके इलाज करा सकन है इनका जो पोषण किट होला वो सहायता प्रदान कर सकन है। जैसे होला ना
0: हाँ
1: कि भाई
0: दीदी
1: बहुत लोग मिल करके कहें कि भाई देखा मैं रोगी की सेवा करे के हो या लोगन के बीच में इस तरह का जागरूकता फैलावे के हो तो इतना नहीं अब समाज के कुछ ऐसा भी लोग होंगे ना कि जो मिलजुल करके ये तरह के सामुदायिक समर्थन योजना चलावत हुए
0: हाँ
1: जिनमें
0: दीदी
1: कि ये रोग के बचाव बदे उनके खाना पीना से लेके दवा से लेकर के हर तरह के व्यवस्था करत हुए।
0: हाँ दीदी। तो एमा देखा हो दीदी हम घर इतनी लोगन के भी आगे आवे पड़ी और उन लोगन के बतावल जा कि दूरी रोग से बनाई ना कि रोगी से उनके
1: बिल्कुल
0: सहारा दी सम्मान दी। लेकिन जे भी रोगी की देखभाल करत हो के चाहे कि सावधानी बरती जैसे समय समय पर हाथ जरूर धोई साफ सफाई के विशेष ध्यान रखी। हम ऊपर जब ओकर देखभाल करी तो मास्क लगा ली जब मरीज के पास रही था।
1: कहीं ना
0: हाँ
1: कि
0: दीदी
1: भाई जब कहीं कि ये तरह के सावधानी बरती हैं
0: हाँ
1: और कहीं कि भाई ये तरह का जागरूकता आपस में फैल रही है तो कहीं कि कोनो भी रोग ऐसा ना हो जिससे कि हम लोग लड़ ना सकीला और लड़के स्वस्थ ना हो सकीला और खास करके टीबी के बारे में तो ये कहल जा सकेला कि अब इलाज बीमारी ना हो एकरे बदे जरूरत हो कि थोड़ी सी आप सावधानी बरतें सचेत रहें
0: हाँ
1: अगर
0: दीदी
1: ये तरह का कोनो परेशानी हो तो एक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के आप जरूर
0: बिल्कुल
1: जो
0: दीदी
1: होकर परीक्षण करावें और उससे संबंधित जो डॉक्टर कहते हुए परहेज करें अपन दवा खाएं खाना खाएं पौष्टिक
0: हाँ
1: आहार
0: दीदी
1: लें आप स्वस्थ हो जाई हैं। तो
0: हाँ
1: भाई
0: दीदी
1: एक जरूरत हो कि लोगों में एक जागरूकता फैलावल जाए अपने आसपास जे भी हो इस तरह का लक्षण दिखात हो तो भाई ओके भी जागरूक करें इसे कहें कि भाई आप जाएं और स्वास्थ्य केंद्र पर अपन परीक्षण करावें।
0: हाँ दीदी देखा दीदी बातचीत तो होकर ली लेकिन
1: काम जाना
0: हाँ
1: थी तू का कहत हो
0: हाँ
1: कहल चाहत हो
0: संदेश सुन ले जा
1: बहन लोगन
0: हमनी के
1: संदेश
0: हैं।
1: सुन ले फिर हम लोग बात कही कही जाए।
0: हाँ दीदी बिल्कुल
2: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कसे क्लिक पे अरे वाह अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: सुनो ना
5: हाँ
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ
5: तो रोका किसने है हाँ
4: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं
5: मुझसे
4: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर
5: आकाशवाणी है ना मैंने सुना है।

0: उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
1: ओ,
3: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ,
3: 0542227658।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: हाँ, कहीं हो पारो।
6: हाँ दीदी,
5: देखा भाई, हम लोग बात कही कल रह लिए ना कि भाई अपने स्वास्थ्य संबंधी की बात है ना।
6: हाँ,
5: लेकिन हम कहें कि जो घर के घर आती नहीं, अगर वो स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, उनका खान पान ठीक ठाक रहे, उनके शरीर में कोई बीमारी ना रहे, तो वो अपने घर परिवार का देखभाल, बाल बच्चन का देखभाल बड़े अच्छे से कह सके। नहीं
6: हाँ दीदी, देखो दीदी, आजकल इतना रोग बीमारी बा जो पहले सुने के ना मिलत रहा, आज देखे के मिलता। और देखो दीदी, यही पर हमने बढ़िया की नीचे की जानकारी लाइल बनी जा, महिलाओं में PCOC की समस्या और चिकित्सा के उपाय। ये जानकारी दी हाँ डॉक्टर रुचि सिन्हा जी, जिनसे बतियावत है शिखा श्रीवास्तव जी, तो बहन लोगों ने के सुने गुने।
5: बिल्कुल
7: श्रोता बहनी, आज हमारे साथ एक कार्यक्रम में आये हैं डॉक्टर रुचि सिन्हा जी। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और पूर्व CMO रह चुकल हैं BHU वाराणसी में। और आज आप लोगन के संगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपन जानकारी साझा करी है, और वो विषय है PCOS। ये ऐसा समस्या है जोन 5 में से एक महिला के संगे जरूर रहेले। तो PCOS का है और इसे कैसे छुटकारा पावल जा सकेला, एकर इलाज कैसे कई जा सकेला, इस सब विषय पर जानकारी देवे बदे हम इनके आमंत्रित कर ली। तो डॉक्टर साहिबा, आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करा थे।
8: नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, PCOS जो है ये बहुत प्रमुख समस्या के रूप में लड़कियों में, स्त्रियों में ये एक बनती जा रही है।
7: तो पहले डॉक्टर बहन ये बता दे कि PCOS होला का, बहनी लोगन ये जान ले।
8: बिल्कुल बिल्कुल, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको हम लोग अपनी मेडिकल की भाषा में कहते हैं। इसका अर्थ मेनली होता है कि थोड़ा सा औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी उनको परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कि लेट से मासिक आना और चेहरे पे दाने निकलना, चेहरों पे शरीर पे ज्यादा बाल उग जाना, जिसको हर्शिटिज्म कहते हैं मेडिकल भाषा में। और ये जो PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, मतलब अल्ट्रासाउंड में ओवरीज या अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाना।
7: अच्छा,
8: क्यों? ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि मुख्यतः जेनेटिक और बदलती जीवन शैली की वजह से होता है।
7: अच्छा, तो कम उम्र में भी ये हो सकेला?
8: हाँ, ये कम उम्र में भी होता है आजकल, बल्कि ये पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या जैसी उत्पन्न हो गई है, और स्पेशली भारत में इसके केसेस बहुत सारे बढ़ गए हैं, और इसलिए सारी महिलाओं को ये जो अवेयरनेस है ये बहुत जरूरी है इसके बारे में।
7: सही बात आप कहते हैं, और बहुत महिला लोगन तो शर्म के कारे डॉक्टर के लगे जाइलिन नहीं है, जाइलिन तब बता ना पावेलिन कि उनके तरह का समस्या हो जाता। अच्छा, PCOS के संगे संगे एक शब्द और सुने में आवेला, PCOD, तो दोनों में का अंतर है?
8: PCOS का मतलब ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, और दूसरा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। बहुत अंतर नहीं होता, ये एक ही तरह का है, क्योंकि सिर्फ ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही नहीं होता, बल्कि जब महिलाओं में ये पाया गया है कि उनके में अगर PCOS या PCOD के सिम्टम्स हैं, उनको दिक्कत है, तो आगे चल के उनके और भी चीजें, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं, जिसमें कि मोटापा या डायबिटीज का खतरा, ये सारी चीजें भी महिलाओं में बढ़ जाती हैं।
7: अच्छा, कौन कारण से तब ये हो जाएगा?
8: जैसे मैंने बताया ना आपको, मुख्यतः यह जेनेटिक होता है, और जो आजकल की जीवन शैली है, खान पान है, वो सारा जो इतना बदलाव आया है, उसकी वजह से भी इसकी रोग में लोगों में बहुत बढ़ गया है।
7: अच्छा, आप तो जानते हैं कि भाई आजकल का जो जीवन शैली हो के बदलल नहीं जा सकेला, भाई अगर बहुत घरेतीन है, उन घरे का भी काम करते हैं, बहरे भी जाके काम करते हैं, तो अगर बहरे काम करते हैं

0: तो उनके बहुत देर तक खड़ा भी रहे के पड़ी, बहुत देर तक बैठ के भी काम करे के
1: बिल्कुल
0: पड़ी,
1: बिल्कुल
0: कंप्यूटर पर चाहे मोबाइल पर चाहे लैपटॉप पर भी काम करे के हुई। और कबो कबो तो ऐसा स्थिति हो जाएला कि रात के देरी तक जगे के होला, देरी तक काम करे के होला, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन पर हो चाहे लैपटॉप पर हो। तो वो कैसे अपने जीवन शैली में बदलाव लिया
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल
0: वो सही
1: बहुत
0: हो?
1: सही प्रश्न किया आपने। एक्चुअली बहुत आधुनिक शैली में बहुत सारा तनाव हो गया है, बहुत सारा बिजी हम लोग का लाइफस्टाइल हो गया है,
0: जी
1: पर फिर भी कुछ बदलाव करके, कुछ चीजें अपना कर, जो पुराना खान पान था ना, जो कहते हैं दादी नानी के टाइम का,
0: जी
1: वो सबसे बेस्ट था, घर
0: जी
1: का खाना, ठीक है, और बाहर का खाना बंद कर देना, वसा युक्त खाना नहीं खाना, मैदे को अवॉइड करना, फास्ट फूड जो आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है उसको थोड़ा सा कम कर दें। इसके अलावा तनाव मुक्त रहे, थोड़ा योगा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, जो कहा जाता है ना, सवेरे सवेरे उठिए और थोड़ा टहल के फिर अपना काम शुरू करिए, बिल्कुल सही चीज है। और अपने वजन को नियंत्रित रखकर काफी हद तक हम लोग पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या से बचा जा सकता है।
0: बहुत अच्छी बात आप बतावत हैं। और अगर श्रोता बहनी लोगन सुनत हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि भाई समय तो सबके पास 24 घंटा ही है, लेकिन ओके व्यवस्थित करके अपन दिनचर्या के व्यवस्थित करके वो ई रोग से छुटकारा पा सके लिए। अच्छा आप अभी कहलिन हैं कि मोटापा के चाहे वजन के नियंत्रित करके, तो का जे कर वजन बहुत कम हो के समस्या ना होले?
1: ज्यादातर मुख्यतः या जो है ना, जो ज्यादा वजन की औरत होती है, जिनका बीएमआई बोला जाता है ना कि अपनी हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, तो अगर अपनी हाइट के हिसाब से उनका वजन ज्यादा है तो उनके में ये मुख्यतः पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या ज्यादा पाई जाती है। पर आजकल पतली दुबली महिलाओं में भी या लड़कियों में भी स्पेशली जो है, जो कम उम्र की युवतियां होती हैं, उनके में भी ये समस्या पाई जाती है। लेकिन उनके में भी जीवन शैली को नियंत्रित करके और खान पान को नियंत्रित करके इस समस्या को बहुत कम कर सकते हैं, और ज्यादा दिक्कत होने पर अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं।
0: अच्छा ये तरह का अगर कोनो महिला की समस्या हो जाता, अगर वो अविवाहित हैं तो का विवाह के बाद उनके कोनो समस्या ई बढ़ जाएले, या फिर जैसे बंधत्व का समस्या आगे आ सकेले, अगर आ जाते ये तरह का समस्या तो वो कैसे ही कर इलाज कर?
1: बहुत बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं और बड़ी चिंतित भी रहती हैं कि अरे हमारा तो देखिए अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस आ गया है, अब हम क्या करें। तो इस बारे में दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहले तो जैसे कि जो बहुत कम उम्र की युवतियां हैं, 18 साल से कम, जैसे 14 साल, 15 साल या 16 साल की लड़कियां, अगर अल्ट्रासाउंड में उनकी आ रहा है कि उनकी अंडाशय या ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, उस तरह का आ रहा है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है उसमें, आराम से रहे वो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो दिखाएं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग से, और उसमें कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। वो ज्यादातर वो नॉर्मल फाइंडिंग होती है एक्चुअली, हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में बोले तो। लेकिन कुछ जो औरतें होती है स्पेशली 18 साल से ऊपर, उनके में ये पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या कभी कभी बांझपन का एक कारण हो सकती है, ठीक है। इसीलिए शुरुआत से ही अगर पता रहता है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर समस्या ज्यादा है तो छिपाएं नहीं, उसको दिखाएं, बताएं। अगर दिक्कत है तो उसके लिए सामान्य दवाएं चलती हैं, अगर बच्चा नहीं हो रहा है या मासिक की अनियमितता है या मासिक लेट से आ रहा है या बाल है, जो भी दिक्कतें हैं इसकी वजह से, उनके लिए बहुत सिंपल दवाएं हैं जिससे कि बिल्कुल आराम हो जाता है और बिल्कुल अपना सामान्य जीवन वो जी सकती है और मातृत्व का सुख भी भोग कर सकती है।
0: बहुत अच्छी आप जानकारी देते हैं। बहुत बहनी लोगन के ई भ्रम रहेला कि जौन दवाई चले ले, जिसे आप कहली ना कि हार्मोनल असंतुलन के बैलेंस करे के, ना नियंत्रित करे बदे दवाई चले ले, तो का जोन हार्मोन का दवाई चले ले तो बहुत बहनी लोगन कहेलिन कि ओकर साइड इफेक्ट बहुत होला, तो ई सही बात है?
1: जिनकी 16 साल उम्र है, अल्ट्रासाउंड में आ गया, कोई कारण होगा, पेट में दर्द था या कुछ भी था, उसकी वजह से एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पीसीओ आ गया कि भाई सिस्ट है छोटी छोटी ओवरी, और बहुत परेशान होती है और कई तरह की दवाइयां शुरू कर देती है, उनमें ऐसा कुछ नहीं करते। और दूसरा, उनके में हार्मोन्स हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि उनके में हार्मोन्स के साइड इफेक्ट हो सकते हैं
0: जी।
1: इसीलिए बिना किसी स्त्री रोग के सलाह के कोई भी दवा नहीं शुरू करिए, क्योंकि बहुत सिंपल दवाएं शुरू होती हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तभी हम लोग हार्मोनल वगैरह वगैरह देते हैं, अदरवाइज पहले कुछ जीवन शैली को अलग करके और थोड़ी सिंपल दवाओं को शुरू करके ही आराम हो सकता है।

0: डॉक्टर बहनी बहुत बहनी लोगन के अगर सिस्ट का समस्या हो जाए ले तो वो लोगन जब जाए लेन डॉक्टर के पास तो वो बोले लेन कि ऑपरेशन करवावे के पड़ी। तो ये ऑपरेशन करवावे लेन भी फिर ओकरे बाद फिर सिस्ट बन जाएला तो ये समस्या से उनके छुटकारा नहीं पड़ेला और साथे में शरीर का दुर्गति अलग से होला। तो
1: बिल्कुल
0: एकरे बारे में सलाह दे।
1: बिल्कुल क्योंकि सिस्ट ना, जो सिस्ट जो होती है ओवरी में, अंडाशय में बहुत कॉमन होती है और कई बार ये नॉर्मल चीज होती है। जैसे कि औरतों का हर महीने, आप भी जानते होंगे, सभी जानते हैं कि औरतों का हर महीने अंडा बनता है। वही अंडा कभी कभी फूट नहीं पाता और थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट या सिंपल सिस्ट कहते हैं। उसमें कोई ऑपरेशन किसी तरह का बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, उसमें सिंपल दवाओं से आराम हो जाता है और ऑपरेशन बहुत कम ही कंडीशन में, जैसे कि कोई ट्यूमर है उसमें ओवरी में और कुछ दिक्कतें हैं, उसी में करते हैं। सामान्यतः ये दवाओं से ही ठीक हो जाता है।
0: एक प्रश्न और हमारे मन में आवा था, सोचा कि पूछ लें आपसे। बहनी लोगन भी जानल चाहे लीन कि ये जो सिस्ट होला एकर जो दवाई चलेले कितना लंबा समय तक चलेला और का ये दवाई से पूरी तरह ठीक हो सकेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दवा से ही ये ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि दवा से ही ठीक हो जाए, और ऑपरेशन कराने के पहले हमेशा किसी डॉक्टर की सलाह अच्छे से ले लीजिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ की। और इसमें सामान्यतः 2 से 3 महीने का एक कोर्स होता है दवा का, हॉर्मोन्स का। वो भी हम लोग सारे मरीज में नहीं, कुछ ही मरीजों में देते हैं। बाकी कुछ जो यंग पेशेंट्स हैं, युवतियों में, तो वो अपने आप ही कुछ सामान्यतः गोलियों से ठीक हो जाता है।
0: आप बतौलीन है कि ये जेनेटिक भी होला अनुवांशिक, तो अगर ये अनुवांशिक और पीसीओएस के स्थिति में अगर केहू महिला गर्भवती हो जाता तो गर्भावस्था के दौरान उनके कौने तरह का सावधानी रखे के चाहिए कि कौन समस्या न हो।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, ये तो बड़ा, कभी कभी क्योंकि पीसीओएस की वजह से जब प्रेगनेंसी भी होती है तो थोड़ी सी कुछ चीजें रिस्क होती है, जैसे कि कभी कभी महिला का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कभी कभी उसको कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो हम लोग उसमें जब हमेशा जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिलाएं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, ताकि जब भी ये कोई समस्या इस तरह की आएगी तो उसको तुरंत ही पता करके और उसका फिर निदान किया जा सकता है।
0: आपसे बात करत के बहुत अच्छा लगा था और इतना नीक नीक जानकारी आप बहनी लोगन के दे थे, लेकिन समय भी बहुत कम है। चलत चलत एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछल चाहब कि ये पीसीओएस जो समस्या है एकरे कारण का मानसिक तनाव का भी स्थिति उत्पन्न हो जाले या मानसिक रोग का भी कारण बन सकेला।
1: बिल्कुल, आजकल तो हर मानसिक रोग एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों में डिप्रेशन या भी बहुत कॉमन हो जाता है, और तनाव होगा तो पीसीओएस बढ़ेगा।
0: जी,
1: और पीसीओएस जब होता है, जब लड़कियों का नहीं आता मासिक, लेट आता है, देर आता है, या अनचाहे बाल चेहरे पे किसी भी लड़की को आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उसको अच्छा तो नहीं लगेगा और एक तरह का स्ट्रेस या तनाव वो बढ़ता जाता है। इसीलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कि योगा करें, अच्छा खाना पीना खाएं, संतुलित भोजन लें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा अपनी हॉबी रखें कि भाई हम कुछ खेल रहे हैं या डांस कर रहे हैं, तो उस तरह से करेंगे तो ये तनाव भी निकलेगा और पीसीओएस की समस्या भी नहीं होगी, मानसिक कुछ परेशानियां भी नहीं आएंगी।
0: बहुत बढ़िया, और चलत चलत बहनी लोगन बते आपका संदेश दे।
1: मैं जो यही कहना चाहूंगी, पहले तो अपनी जीवन शैली को अच्छा रखिए, संतुलित भोजन करिए, अपने पे भी महिला लोग ध्यान दें, और अच्छी एक्सरसाइज और थोड़ा अपने शरीर को नियंत्रित रखें।
0: बहुत अच्छा लगल आपसे बात करके डॉक्टर रुचि सिन्हा जी, आप हमारे कार्यक्रम में अयलिन और पीसीओएस पर बने लोगन के इतना महत्वपूर्ण जानकारी देलिन। ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: पारो,
3: हाँ दीदी,
2: देखा कितना नीके का बत कही रहा है कि महिलाओं में पीसीओएस की समस्या और चिकित्सा और ओकर उपाय कैसे कैल जाए। और डॉक्टर रुचि सिन्हा बतियात सिका श्रीवास्तव कहीं की नीके नीके का जानकारी बहन लोगों के देनी है।
3: हाँ दीदी, जानकारी के बात कहलू, अब बहन लोगों के हमार मन के भी ध्यान रखा है, गीत संगीत सुनल जा। अवध नगरिया भैल गुलजार कलाकार है मंगला विश्वकर्मा जी, तो बहन लोग के सुने, हम सुनल जाओ।
2: हाँ, तो मंगला विश्वकर्मा के स्वर में हम लोग ये गीत सुनल जाए।

0: हाँ दीदी,
1: काहो पारो एकदम
0: कदी
1: भाई, भजन सुन के तू एमे गुनगुनाए लगलू, मन तोहर मनसायन हो गल।
0: हाँ दीदी, आ देखा दीदी, मन तो मनसाइन हो गए, लेकिन अब जाए के घड़ी होई तो हमनी के जाए के पड़ी धूप में। फिर घरे जाए जाई तो फिर सुतावल जाई तो पानी जरूर पियल जाई, आ जब पानी पियल जाई तो तनी गुड़ लेके जा, पानी जरूर पिया। देखा दीदी
1: बात
0: गुड़
1: तो
0: में।
1: सवेरे जब से आयल बारू गुड़े गुड़ कैले बारू भाई,
0: हाँ
1: कहें कि
0: दीदी,
1: भाई एक गर्मी के मौसम में तो कुछ ना रहे, भेली खाए के मनाई पानी पी ले 2 गिलास तब कर पेट भर जाला। और
0: हाँ
1: कहें कि भाई सब कुछ अपने घर में मिठाई रख ले रहा, लेकिन अब बहुत लोग होंगे ना कहीं भाई मैं देसी गुड़ खियाए दा जैसे कि हमारा मन ठीक हो जाए।
0: हाँ तई कितना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होला इहो बता दहल जा दीदी।
1: बिल्कुल।
0: हाँ दीदी, तई शरीर में ताकत देला, जब खा के पानी पी ला तो तुरंत ऊर्जा मिलेला, आई खून बढ़ावे में मदद करेला।
1: आ
0: हाँ
1: इतने नहीं हो
0: हाँ
1: पारो
0: दीदी,
1: कहीं ना कि देखा कभी कभी को कहना ना कि भाई गला जलत हो या कच्ची डकार आवत हो या इतना, तो तुरंत ही होला कि भाई अगर पाचन सही करे के हो या इतना के समस्या के सही करो तुरंत है लोग कहना गुड़ खाला, गुड़ खेले
0: हाँ
1: के बाद ये समस्या ठीक हो जाए। यानी कि पाचन संबंधी अगर कोनो समस्या हो तो भाई कहें कि गुड़ खेले से वो ठीक हो जाला।
0: हाँ दीदी, एमे कई गो खनिज तत्व तो होला, आयरन कैल्शियम और कई गो होला। खाना खेला के बाद बात कैलू पाचन शक्ति के, खाना खेले के बाद थोड़ा सा गुड़ खाला तो पाचन शक्ति बढ़िया हो जाला, आ गंदगी निकाले में, शरीर के गंदगी निकाले में सहायता करेला।
1: इतना नहीं कहीं ना कि देखा जब ठंडा होला ना मौसम या कोनो तरह का परेशानी होला तो लोग कहना कि भाई जैसा गूढ़े में जो है ना कि
0: हाँ
1: एक काहे से
0: दीदी,
1: तासीर गर्म होला, तो
0: हाँ
1: इमें अदरक या जो हो कि कफ हो खांसी हो तरह का सामान,
0: हाँ
1: तो
0: सर्दी
1: कुछ लोग
0: जुकाम में,
1: हाँ सर्दी जुकाम में गुड़ के जो है चाय बना के पी लेना। तो
0: हाँ
1: देखा
0: दीदी,

0: उसमें भी तुलसी वगैरह डाल देना, अदरक डाल देना, तो उससे भी उन लोग को बड़ा राहत मिल जाला।
1: हाँ दीदी, अब गुड़ के बात कह लो दीदी, अब गर्मी इतना बात, तनी स्वास्थ्य, गर्मी में स्वास्थ्य के ध्यान कैसे रखल जाए, एहू विषय पर तनी थोड़ा बहुत जानकारी बहन लोगन के साथ साझा कर जाए हमन के।
0: अरे कहलू है साझा कैल जाए, बहन लोग खुद बहुत जागरूक हैं, लेकिन हम लोग का काम भी ये होला कि उन्हें समय समय पर जागरूक कैल जाए। भाई अगर थोड़ा धीमा पड़ गए हो तो थोड़ा सा और जो हो कि उनके अंदर ऊर्जा आ जाए। अरे गर्मी के मौसम में देखा ना, जब बाजारे निकल जाए तो देखा जगह जगह बेल मिलत बा, खरबूजा मिलत बा, तरबूज मिलत बा, ककड़ी मिलत बा, खीरा मिलत बा, माने कहीं कि ये मौसम में जो हो कि प्रकृति हम लोग के इतना समान पानी वाला दे ले बा खाइले पीला के, कि मने अगर थोड़ा सा अपने के ना सचेत रखा, जागरूक रहे, तो कहीं कि वो बीमार हो ही ना सकेला, खैले पीले से ना मन स्वस्थ रहला।
1: हाँ दीदिया देखो दीदी, दोपहरिया में जरूरत होके तभी घर से बाहर निकली, अगर निकले पड़े तो खाली पेट धूप में बाहर ना निकली। अब पानी खूब पी, प्यास ना लगे तब हो थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर पर जरूर पी। अभी बात कैलू है कि बेल के शरबत वरबत, नींबू पानी भइल, सत्तू सत्तू भी भइल, वो बढ़िया होला।
0: बात कर लो सत्तू का, तो कहीं कि भाई बहुत समय हो गल कि सत्तू का शरबत पी ले, और
1: हाँ
0: कहीं कि ये समय जो ना कि सत्तू का सेवन आप लोग जरूर करें। काहे से हम कहें कि हर घर ही में सत्तू बहन लोग रखले हुई हैं, और अपनों खाएं अपनों खियावें, और लोग जो आवे ना ओहू का सेवा भाव करें कि भाई सत्तू हो, गुड़ हो, बेल हो, जो भी अपने आपके घर में हुआ है उससे जो है सेवा सत्कार करें। और कहीं
1: हाँ
0: कि अब
1: दीदी,
0: घड़ी भी इशारा करत हो कि हम लोग चले गए, लेकिन एक जरूरी विशेष कार्यक्रम हम लोग के आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होए पर हुई 23 तारीख के,
1: हाँ
0: 23 तारीख के जो ना हो कि हम लोग एक प्रसारण सुनावल जाए, आगे भी अगर हम लोग जो ना हो कि जो बतावल जाए कि सजीव फोन इन कार्यक्रम हुई 26 तारीख
1: दीदी,
0: के पे, ठीक है।
1: हाँ तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होखला पर सजीव फोन इन
0: कार्यक्रम
1: कार्यक्रम कल
0: हुई,
1: जाए हमन के।
0: हाँ
1: हाँ
0: 26 तारीख के,
1: हाँ तो बहन लोगन है नंबर नोट कर ले, 0542221052।
0: हाँ। तो बहन लोग जो हो कि आप अपने रेडियो की सुनत हैं, और उप पे का आपका अनुभव हो, इस पे आपके साथ हम लोग जो हो अपने सीधा बातचीत हुई जोन हो, आप लोग अपने जो अनुभव हो उप पे अपने के आप
1: जरूर
0: बता सके
1: साझा
0: नहीं।
1: करें।
0: हाँ तो कहीं चला चला जाए,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं काजोल वाल्मीकि। इनके स्वर में सबसे पहले सुनिए पचरा।

0: lies internal failures through acts of violence within and beyond its border.
1: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
0: In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a 4-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heatwave to severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heatwave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heatwave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया, जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन

0: करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं से ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दो।

0: को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडी वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कॉम्पियर प्रोग्राम कहकशां। प्रस्तुति है शुचि उपाध्याय की।
3: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार।

नजर से नजर मिला के तुम नजर लगा गई, नजर से नजर मिला के तुम नजर लगा गई, ये कैसी लगी नजर की खम हर नजर में आ गई।

कागज पर नहीं लिखते हम राज मोहब्बत के, पल भर में बिखर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के। तुझे टूट कर चाहा है और उम्र भर चाहेंगे, ऐसे ही हैं सनम मेरे अंदाज मोहब्बत के।

सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे फसाने होंगे, सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी।

तुमसे मिलने पर मेरा हाल बदल जाता है, तुमसे मिलने पर मेरा हाल बदल जाता है, सच कहूँ तो मेरा हर ख्याल बदल जाता है। शिकायतें बहुत करनी है तुमसे मुझे, तुम्हारे मिलने से मेरा सवाल बदल जाता है।

आप सभी को इस कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कॉम्पियट प्रोग्राम कहकशा। प्रस्तुति थी शुचि उपाध्याय की। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की ये सभा। शाम 4 बजे सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIRF, DTH और DRM 1233 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर, यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज़ में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड ज़ीरो। तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में, जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीज़ों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF की बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था।

0: और उन 3 सालों ने हम उसको बहुत तपाया और मैं
1: जी
0: कश्मीर, साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रेस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा,
1: जी
0: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन
1: बिल्कुल
0: 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
1: बिल्कुल
0: जेन के असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
1: जी
0: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ। और ये
1: जी
0: अटैक करने वाला और कोई नहीं, जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन
1: जी
0: जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की।
1: जी
0: और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी
1: जी
0: वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट, मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा,
1: जी
0: ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लाडेन बन गया। और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
1: बिल्कुल
0: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, JNK पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब
0: और
1: वो
0: वो
1: इतना
0: मौका
1: बड़ा आतंकवादी और
0: इतना
1: इतना
0: बड़ा
1: जी के
0: आतंकवादी
1: सब
0: कि
1: जान
0: भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है,
1: जी
0: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक की तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पर हमला करते हैं, जिस पर अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला। BSF की बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था, और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को, एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे।
1: जी
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें JNK पुलिस, BSF का बड़ा अहम किरदार रहा। और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया, लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा, और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए, कि वर्ल्ड मीडिया में वो
1: जी
0: जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में 3rd फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: वो गाजी बाबा और उसके 2 साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लाडेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को, हॉट शॉट मास्टर को, सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही, और
1: बिल्कुल
0: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फख्र की बात है
1: बिल्कुल बहुत
0: ऑर्गेनाइजेशन
1: सम्मान की
0: के
1: बात है, और ये देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा, वो कैसे आप लोगों ने, आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ, जब फायरिंग हुई, फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई,

0: जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ
0: खुद पर
1: बड़ा
0: अटैक
1: करना है।
0: करना है। लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था।
1: बिल्कुल
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं,
1: जी
0: मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
1: डिजाइन किया।
0: बनाया था, डिजाइन
1: अच्छा
0: किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टॉकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट लिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई।
1: जी
0: अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल किए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका
1: जी
0: किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले, हमारे पर फायर करे,
1: या
0: हमारे
1: वो भागने की कोशिश करे।
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी
1: अच्छा
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
1: जी
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। और थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद हम सही जगह नहीं आए। और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था और
1: अच्छा
0: बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं
1: कुछ
0: था,
1: भी नहीं
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख
0: गाजी
1: रहा
0: बाबा
1: है।
0: देख रहा था जिसका हमको इल्म नहीं था। तो
1: बिल्कुल
0: वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था पाकिस्तानी
1: अच्छा
0: टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो
0: तो
1: शायद
0: शायद
1: वो
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता,
1: ओके
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती थी।
1: ज्यादा होती
0: मार तो
1: बिल्कुल
0: हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक,
1: अच्छा
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ
1: ओके
0: निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की
0: पूरी
1: गई और
0: हिफाजत
1: अपने
0: की
1: ऑपरेशन
0: गई।
1: को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों से,
1: अच्छा
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो

0: गया। उसके अलावा बाकी जो दो ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। तीन ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई। भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद उस सेकंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया?
0: हाथ का,
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर, हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया है,
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट के तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल

0: के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
1: जी, आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
0: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
1: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी 7 गोलियां शरीर में?
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा क्योंकि हाथ का विजिबल था
1: जी,
0: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पे ड्राइंग रूम में लगा रखा,
1: जिसने
0: है
1: आपका दिल बचाया।
0: उसमें यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है,
1: अच्छा,
0: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो जाता है, और फिर
0: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
1: जी जी जी।
0: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं
0: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
1: जी,
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
1: जी,
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू, एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
1: जी,
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा था। मैंने कहा सर फॉर व्हाट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री, होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया, सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा। लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी,
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं ना कहीं उसका पेन कम हो जाता है।
1: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा। और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो नमूने पेश करता।
0: वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज़ ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस सारीमर्ग किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001। तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहान बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवादी
0: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के। और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
0: मैं
1: ये
0: अपॉर्चुनिटी हूँ क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल।
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
1: बिल्कुल।
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है
1: जो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी,
0: मेरे
1: आप लीड कर

0: लीड कर रहा था, मैं चाहता तो अपने किसी नंबर टू को भेज सकता था, नंबर थ्री को भेज सकता था,
1: लेकिन आप
0: लेकिन
1: फ्रंट पर रहे
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है।
1: बिल्कुल,
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो।
1: बिल्कुल,
0: गाजीबाव के माध में घुसना कोई सिंपल।
1: और जैसे आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं हम,
1: मिलता नहीं।
0: और हुआ मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते।
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
1: दुबे सर, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर

0: तो सर, हम आगे और भी बात करेंगे। हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता ही लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया है। और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है, लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा। आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है, हो
0: जी
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये
0: क्या
1: उस
0: बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला इत्तला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद। बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है।
0: पहले
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत। और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब BSF आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक, अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालय नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: होती थी।
0: अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फर्वर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पे बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं। ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे।
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है,
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों

0: साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है,
1: बिल्कुल
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता
1: मौका
0: है,
1: मिलता है
0: विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी। सर ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज़ रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है,
0: जी
1: और
0: जी
1: उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज़ असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में एक
1: जी
0: दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया।
1: जी
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्करे तैयबा की तरफ से,
1: जी
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई,
1: जी
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
1: जी
0: सरकारी
1: तो 25
0: काम के
1: साल
0: लिए
1: जो सर
0: गया।
1: आपने बीएसएफ में दिए उसके
0: जी,
1: अलावा,
0: उसके अलावा ये 9 वर्ष NIA में,
1: अच्छा
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया,
1: जी जी जी
0: और कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है, मेरे
1: अच्छा
0: दिल से लगा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया, और
1: अच्छा
0: काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया
1: कोर
0: है,
1: एरिया है
0: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता
1: जी।
0: हूं।
1: सर आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर एफएम रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूँ, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक
1: ये
0: यू सो मच
1: गिरीश हैं
0: गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं, तो थैंक यू सो मच।
1: अच्छा
0: हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे, तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और आप उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी
0: ये
1: है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर
1: जी
0: से बनी है,
1: जी
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी,
1: जी
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजडी के साए में ये फिल्म रिलीज हुई थी,
1: ओके
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है।
1: जी
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजडी हुई थी देश में,
1: जी जी जी
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी
0: स्ट्रीम
1: सर
0: हो
1: एक
0: रहा है।
1: मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: लिखना
0: लिखना
1: चाहते हैं। यश
0: चाहेंगे
1: शिंदे
0: आप।
1: हैं ये, DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप, नरेंद्रनाथ सर आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप, चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है,
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती
1: बिल्कुल,
0: हैं, देश प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड
1: और सर
0: फॉर मी।
1: यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है, तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें, जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
0: मैं युवा पीढ़ी
1: एक्सपीरियंस
0: को ये बताना चाहूँगा कि आपकी एक ज़िंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पर्पज़ हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है, तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके
1: जी
0: पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं,
1: जी
0: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के
1: बेशक
0: चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही, और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे,

फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही हैं रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थानी गीत और कलाकार हैं अप्पा नाथ और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये गोरबंध।

ये गोरबंध आपने अप्पा नाथ और साथियों के स्वर में सुना। आइए इन्हीं के स्वर में अगला गीत सुनते हैं, जलालो बिलालो।

अप्पा नाथ और साथियों के स्वर में अभी आपने जलालो बिलालो सुना, और अब सुनिए विवाह गीत इन्हीं के स्वर में।

अभी आपने ये विवाह गीत सुना। कलाकार थे अप्पा नाथ और साथी। इसी के साथ धरती के गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: तुम्हारा सफर कठिन है क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है।
1: और मंजिल बड़ी हो तो मेहनत करना और शुरुआत करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है शुरुआत करना।
0: जैसे हम जैसे युवा साथी रोज आते हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी की शुरुआत करने,
1: आपसे बातें करने, देने ढेर सारी जानकारियां। तो आज के युवाणी कार्यक्रम के सफर में मैं आपके साथ हूँ आलिया,
0: और मैं हूँ शिवानी। आप सभी का हम दोनों आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपको हमारा नमस्कार।

0: वैसे आलिया, सच में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न जाने कितनी अलग-अलग संस्कृति हमारे देश में है।
1: हाँ, कहीं मीठी बोली है तो कहीं मीठे पकवान, कहीं तन पे लिपटी साड़ी है तो कहीं घाघरा चोली।
0: हाँ, कहीं लुंगी डांस है तो कहीं मराठी टोपी, लेकिन फिर भी हमारी इन अलग-अलग संस्कृति में समरसता और एकता धूमिल नहीं होती।
1: और होगी भी क्यों, हम होने जो नहीं देते। इसी विविध संस्कृति की पहचान के लिए तो आज हम सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मना रहे हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है हर साल 21 मई को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के विश्व दिवस के उत्सव का नेतृत्व करता है, जो दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि, शांति और सद्भाव प्राप्त करने के लिए अंतर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है।
1: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 2002 में इस विश्व दिवस की घोषणा की थी, जब यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर 2001 की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, जिसमें समृद्धि, सतत विकास और वैश्विक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्राप्त करने के साधन के रूप में संस्कृति की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी।
0: दोस्तों, सांस्कृतिक दिवस का प्राथमिक उद्देश्य हमारे समुदाय के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान, सहिष्णुता और प्रशंसा को बढ़ावा देना है।
1: दोस्तों, एक बात ये कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता का अर्थ यह समझना है कि समाज विभिन्न रुचियों, कौशलों, प्रतिभाओं और क्षमताओं वाले अनेक विभिन्न समूहों से बना है।
0: सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने, पहचान की भावना को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों को ज्ञान हस्तांतरित करने के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है दोस्तों। जबकि चुनौतियां बनी रहती हैं, व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और जश्न मनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
1: और काम करते भी हैं, तभी तो शिवानी आज हम सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मना रहे हैं।
0: हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। वैसे आलिया, हमारे देश में या कहीं भी, चाहे जितनी भी भाषा या संस्कृति हो, हर संस्कृति में एक चीज तो कॉमन है।
1: वो क्या है?
0: वो है हमारी एक प्याली चाय, चाहे छोटी सी खुशी हो या बड़ी,
1: एक कप चाय हो जाए,
0: मन खराब लगे तो,
1: चाय हो जाए,
0: बहुत टेंशन भी हो
1: तो भी चाय हो जाए।
0: और तो और, एकदम चिलचिलाती गर्मी में भी एक चाय प्रेमी यही कहता है, भाई आज गर्मी बहुत है, एक कप चाय पी ली जाए तो गर्मी कम लगेगी। तभी
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसी चाय प्रेमियों के लिए आज का दिन खास है।
1: हाँ, आज दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, खास तो है ये दिन चाय प्रेमियों के लिए।
0: बिल्कुल। सोचो, दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय चाय, और अब तो इसे संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता दी है।
1: और पता है दोस्तों, चाय की शुरुआत भारत में असम से हुई थी, उससे पहले तो लोग चीन से पौधे मंगवाते थे।
0: वाह,

0: भारत की दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की चाय तो पूरी दुनिया में फेमस है दोस्तों। और भारत चीन के बाद चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है।
1: हाँ, और चाय सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, औषधीय गुणों की खान भी है। ये दिल की बीमारियों से लेकर डायबिटीज तक में भी मदद कर देती है। लेकिन दोस्तों, सावधान रहिएगा, इसमें शक्कर ना डाल दीजिएगा।
0: बिल्कुल, और फेफड़ों को भी एंटीऑक्सीडेंट से बचाती है, खासकर इस प्रदूषण भरे माहौल में तो और भी जरूरी हो गई है चाय दोस्तों।
1: यही नहीं, चाय के उत्पादन और निर्यात से रोजगार, खाद्य सुरक्षा और जीडीपी तक में योगदान होता है। कितनी बड़ी बात है ना।
0: और एक समय था जब भारत में हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों मई में चाय का उत्पादन ज्यादा होता है।
1: वैसे शिवानी, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोग करता है। पता है दोस्तों, एक सर्वे में तो ये भी बताया गया था कि भारत में उत्पादित 80% चाय यहीं पी ली जाती है।
0: बिल्कुल, और चाय बनती है दोस्तों कैमेलिया साइनेसिस नामक पौधे से। वैसे आलिया, क्या तुम जानती हो कि चाय की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है?
1: हाँ, कहते हैं कि चाय की शुरुआत उत्तर म्यांमार, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन से हुई थी। हालांकि इसकी सटीक जगह तो अब भी रहस्य ही है।
0: लेकिन एक बात तो तय है, चाय की चुस्की न सिर्फ सुकून देती है बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ रिश्तों को भी और गहरा कर देती है।
1: सच कहा। तो चलो, आज इस अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर एक और कप चाय हो जाए, और साथ में ढेर सारी बातें तो अपने दोस्तों से हम कर ही रहे हैं।
0: बिल्कुल, चाय और बातें, परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
1: कॉम्बिनेशन तो शिवानी, चाय और गानों का भी परफेक्ट ही होता है। फिर चाय हो और एक गीत ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो चलो, चलते हैं गीत के इस सुहाने सफर पर।
0: बिल्कुल।

0: आया गया?
1: नहीं पापा।
2: चाची कब से खांसी है इनको?
1: महीने भर से होगी।
2: टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? दो हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए, हो सकता है आपको टीबी हो।
3: टीबी? और हमको?
2: किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है।
1: बहुत पैसा लग जाएगा।
2: देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसकी इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या?
1: आ गया।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है।
0: आया गया?
1: नहीं पा।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो।
8: 0542227658।
6: 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
9: दोस्तों हंसी मजाक रोचक जानकारियों के साथ साथ कुछ गंभीर मुद्दों पर भी बातें होनी चाहिए और जानकारियां भी मिलनी चाहिए। और अब जानकारी देते हुए
10: हम दोनों आपसे बातें करेंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को यानी आज के दिन ही मनाया जाता है।
9: दोस्तों आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है जो अपने आर्थिक धार्मिक राजनीतिक या विचारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गैर सैनिक नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाती है।
10: वैसे दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस का उद्देश्य लोगों में आतंकवाद और हिंसा के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, आतंकवाद के दुष्प्रभावों के बारे में समझ बढ़ाना और समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना है।
9: दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया तो जाता ही है, लेकिन यह दिन लोगों को आतंकवाद के खतरे के प्रति सचेत करने के लिए भी मनाया जाता है।
10: वैसे दोस्तों इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि हमारे देश में हिंसा लड़ाई या आतंकवादी गतिविधियों को कोई पसंद नहीं करता।

0: नहीं करता शिवानी, हमारा देश तो शांति, सद्भाव और एक साथ मिलजुल कर रहने वाला देश है।
1: बिल्कुल
0: यहाँ पसंद है तो बस एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहारों को मनाना, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना और किसी विपत्ति में एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहना।
1: एक दूसरे के साथ भी, और जब बात देश के साथ खड़े होने की आती है तो वो भी हम खुशी खुशी करते हैं, जैसे इस समय हम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, यही बात तो अपने देश और अपने देश के लोगों की मुझे बहुत पसंद है।
1: अब पसंद की बात तो तुम ना ही करो, तुम्हें क्या क्या पसंद है वो मुझे भी पता है।
0: पता है तो फिर मेरी पसंद वाला काम कर ही दो ना अब।
1: हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ।
0: दोस्तों, शिवानी तो मेरी प्यारी साथी है और वो सब समझ भी जाती है, तो आप भी मुझे समझते हुए सुनिए मेरी पसंद का ये गीत और लीजिए आनंद।

0: दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये गीत और जानकारियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी, और हम अभी और जानकारियाँ देंगे भी। पर उससे पहले आपको आपके जवाब बता दिए जाएं। अब आप सोच रहे होंगे, शिवानी ये हमारे दोस्त क्या सोच रहे हैं, कौन से जवाब? तो
1: नहीं,
0: भाई
1: अब हमारे दोस्त जो है थोड़े से स्मार्ट हो गए, उन्हें पता है किस जवाब की बात कर रहे हैं हम।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, वक्त है कल के प्रश्न और उसका सही जवाब जानने का। तो हमने कल आपसे प्रश्न किया था कि आकाशवाणी की प्रसिद्ध युवा केंद्रित सेवा युववाणी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। और भाई, आप जितने भी हमारे युववाणी के लिसनर्स हैं, उन्होंने इतना मतलब करेक्ट जवाब दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सही जवाब बता ही देती हूँ। तो सही जवाब है 21 जुलाई 1969।
1: बिल्कुल आलिया, सही जवाब तो देंगे ही ना, क्योंकि आखिर वो युववाणी कार्यक्रम रोज सुनते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होना ही था। तो जिन्होंने ये सही जवाब दिया है उन विजेताओं में नाम है आलोक कुमार श्रीवास्तव, ग्राम पीपरलोड सनगांव मुंगेली, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी के साथ हमारे जो में और भी साथी हैं जो विजयी हुए हैं, उनका नाम है प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं, और रवि मौर्य हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सिमरौल से, साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से। इसी के साथ हैं ग्राम जसवाड़ली जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वन्ना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
0: आप सभी दोस्तों को हमारी युवाणी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं।
1: और हमारे जो साथी आंसर करने से चूक गए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि आपके पास है आज का अवसर, और जो हमारे नए साथी हमें सुन रहे हैं उनके पास भी अवसर है कि वो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के इस जो हम पहल चलाते हैं उसमें भाग ले सकते हैं और अपना जवाब दे सकते हैं। तो अपने स्मार्टफोन लेकर तैयार हो जाइए और सुनिए हमारा आज का सवाल।
0: तो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है कि मई 2026 में प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस एंड उबर कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मई 2026 में प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस एंड उबर कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो फटाफट से भेजिए अपने उत्तर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth_AIR वाराणसी पर, या फिर हमें मेल कीजिए youth_AIR_VNS@gmail.com पर और बन जाइए हमारे विनर्स।
1: बिल्कुल, तो अब इन्हें सब बातों के साथ साथ समय हो गया है जानने का कि आज के हमारे यूथ डायरी में कौन से नए शब्द हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का नया शब्द है विलक्षणता। इसका अर्थ होता है अनोखापन, असाधारणता या किसी सामान्य नियम से अलग होने का गुण। दोस्तों, यह शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की उस विशिष्ट विशेषता को दर्शाता है जो उसे सबसे अलग और अद्भुत बनाती है। और अगर विलक्षणता शब्द को प्रयोग कैसे करेंगे के बारे में आप सोच रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ, मैं इस शब्द को इस प्रकार वाक्य प्रयोग कर रही हूँ कि एक अच्छे चित्रकार की कला में एक विलक्षणता होती है।
0: और दोस्तों, हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है यूबीक्विटस। इट्स स्पेलिंग इज UBIQUITOUS। इट्स मीनिंग इज सीमिंग टू बी एवरीवेयर और वेरी कॉमन। इट्स साइनोनिम्स आर कॉमन प्लेस, यूजुअल और फेमिलियर, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी वी वर प्लेग्ड बाय द यूबीक्विटस मॉस्किटो और शुगर इज द यूबीक्विटस इन डाइट।
1: तो हम आशा करते हैं आपको आज के ये दो शब्द अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें नोट करिएगा और इस्तेमाल भी जरूर करिएगा जरूरत पड़ने पर। तो हमारे जीवन में जितना जरूरी दोस्तों प्रेजेंट और फ्यूचर है, कुछ इतना ही जरूरी है इतिहास जानना। तो आइए देख लेते हैं आज के इतिहास के दिन को।

0: दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1497 में जॉन कैबोट अपने जहाज मैथ्यू पर सवार होकर पश्चिम की ओर जाने का मार्ग खोजने के लिए इंग्लैंड के ब्रिस्टल से रवाना हुए थे।
1: और इसी के साथ ये भी जान लीजिए दोस्तों कि वर्ष 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को दिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, जब वह कोझिकोड, जिसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था, भारत पहुंचे थे।
0: वर्ष 1609 में शेक्सपियर के सोनेट पहली बार लंदन में प्रकाशित हुए और संभवतः अवैध रूप से प्रकाशित हुए थे ये थॉमस थोर्पे द्वारा।
1: दोस्तों, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 20 मई 1802 के कानून द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति में दास प्रथा के उन्मूलन को रद्द करते हुए फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को पुनः स्थापित किया था।
0: और दोस्तों, वर्ष 1902 में क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और टोमास एस्ट्राडा प्लामा देश के पहले राष्ट्रपति बने थे।
1: तो भाई, जानकारियां तो बहुत हो गई हैं और हमें लगता है कि आप उन्हें सुन रहे हैं और याद भी रखेंगे, और बातों का सिलसिला अभी और भी जारी रहेगा आलिया, लेकिन उससे
0: बिल्कुल।
1: पहले एक गीत तो बनता है।

0: तो दोस्तों ये गाना सुनते सुनते कहीं आप भी तो नहीं लुट गए भाई? अगर कहीं खो गए हैं तो वापस आ जाइए स्टूडियो में,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हम वापस आ गए हैं। और आज हम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बात करेंगे, महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम नई रोशनी की। इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को ज्ञान, बुनियादी तकनीकों और उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है।
1: दोस्तों, इसकी मदद से उन्हें सरकारी बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ सभी स्तरों पर बातचीत करने में मदद होगी। इस योजना को गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और सरकारी संस्थानों के माध्यम से लागू किया गया है।
0: दोस्तों ये अल्पसंख्यक महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और आर्थिक रूप से विकसित होने में मदद करता है, जिससे नागरिक समाज मजबूत हो सके।
1: और दोस्तों, अब हम बात करेंगे उसकी जो हमारे दिल के तो करीब है ही, लेकिन आपके भी दिल से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, क्यों शिवानी?
0: बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा और यादें भी जुड़ी हुई होंगी।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं दोस्तों हमारी आपकी आकाशवाणी की। तो दोस्तों, हमारी इस आकाशवाणी के सुनहरे सफर के 90 वर्ष पूरे होने ही वाले हैं। 1930 में बॉम्बे के एक निजी स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई, फिर 8 जून 1936 को इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला।
0: दोस्तों जब रेडियो आया तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इसे इतनी लोकप्रियता मिल जाएगी। आज भारत के हर शहर, हर जिले में आकाशवाणी मौजूद है। ये सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं, बल्कि भारत को जोड़ने वाली आवाज है।
1: दोस्तों, आकाशवाणी ने भाषा, बोली और संस्कृति की सीमाओं को मिटाते हुए 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। इसने भारत की विविधता को एक धागे में पिरोया है।
0: 90 साल की इस यात्रा में आकाशवाणी ने आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए डिजिटल इंडिया की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। मोबाइल ऐप, इंटरनेट और पॉडकास्ट के जरिए ये नई पीढ़ी से भी जुड़ रहा है, और हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों आकाशवाणी रेडियो का कोई ना कोई ऐसा हमारे साथ याद है जो जुड़ा हुआ है, और हम नई
1: बिल्कुल
0: पीढ़ी से भी चाहेंगे कि वो रेडियो के साथ जुड़कर अपनी यादें बनाए और आगे बढ़े। खैर, आकाशवाणी रेडियो बातों और गीतों के लिए है, तो बातें तो हो ही गई हैं। अब एक और गीत बनता है आपके लिए।

0: दोस्तों, जितनी पढ़ाई और मेहनत हम युवा करते हैं उतने ही बढ़िया रोजगार मिले इसकी भी इच्छा रखते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं आज की रोजगार सूचना।
1: दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए कुल 11,127 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। भारत के युवा और आधुनिक सोच वाले नेताओं में से एक राजीव जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था।
0: वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने देहरादून के प्रसिद्ध विद्यालयों में प्राप्त की तथा आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। राजनीति में आने से पहले वे इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में कार्य करते थे।
1: दोस्तों, 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद वे राजनीति में आए और 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे।
0: राजीव गांधी ने देश में विज्ञान, तकनीक और संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उनके प्रयासों से कंप्यूटर और दूरसंचार का विकास तेज हुआ। उन्होंने शिक्षा और पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी कई योजनाएं शुरू की थी। दोस्तों,
1: राजीव गांधी ने युवाओं को नई सोच और आधुनिक भारत का सपना दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने 21वीं सदी की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया
0: और 21 मई 1991 को
1: सुप्रीमो बंदर में एक चुनाव प्रचार सभा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। और राजीव गांधी दोस्तों आज भी एक दूरदर्शी और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान देने वाले नेता के रूप में याद किए जाते हैं।
0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए शिवानी
1: और आलिया को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी 5.0 के बारे में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी लोगों के साथ पुरहर समीक्षा बैठक कैले। एगो रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जीबीसी 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि एफडीआई को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालिरोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित कैल गैले पर बधाई देले हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कहने कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी अगुवाई में भारत समावेशी विकास आ ग्रामीण सशक्तिकरण बदे वैश्विक मंच पर एगो मजबूत आवाज बन के उभरल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल ही रोम में मिलल सम्मान के देश के लाखन किसानन, पशुपालकन, मछली पालकन, कृषि वैज्ञानिकन आ श्रमिक लोगिन के समर्पित कैले।
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अब से कुछ देर पहले गोरखपुर दौरा पर पहुंचले। वहां के गोरखपुर शहर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में आयोजित 46वां जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का समापन आ पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हो रहा है। 18 मई से शुरू भइल यह प्रतियोगिता में 20 राज्यन का टीम हिस्सा लेलिन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून के प्रस्तावित नीट यूजी परीक्षा के देखत काल ही मेटा, गूगल आ टेलीग्राम के साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म के प्रतिनिधियन के साथ बैठक कैले। बैठक के दौरान प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ल गलत सूचना के बढ़त प्रसार के रुकले पर ध्यान केंद्रित कैल गैल। सूचना आ प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रथुल कुमार आज एक दिवसीय दौरा पर गोरखपुर पहुंचले। इस दौरान वहां के गोरखपुर दूरदर्शन आ आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण कैली आ प्रसारित कैल जा रहल कार्यक्रमन का पुरहर समीक्षा कैली। संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रन पर पौधो लगौलें। इस मौका पर दूरदर्शन आ आकाशवाणी से जुड़ल कई गो सीनियर अधिकारी मौजूद रहले। भारत सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन में उप महानिदेशक डॉक्टर शोभिनी राजन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज गोरखपुर एयरपोर्ट पर 100 दिवसीय अभियान से जुड़ल आयुष्मान आरोग्य शिविर का उद्घाटन कैली। एगो रिपोर्ट।
3: शिविर का आयोजन भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की गोरखपुर इकाई और स्वास्थ्य विभाग ने एम्स गोरखपुर तथा इंडिगो एयरलाइंस के सहयोग से किया। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि शिविर के दौरान स्वास्थ्य जांच, एक्सरे जांच, नेत्र जांच और पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा के साथ साथ नए टीबी मरीज खोजने के लिए स्क्रीनिंग की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: प्रदेश में लेखपाल भर्ती के मुख्य परीक्षा आज 44 जिलन के 861 केंद्रन पर कड़ी सुरक्षा के बीच

0: के आयोजित कयल गेल। लगभग 8,000 पदन बदे भइल एहि परीक्षा में करीब 3.5 लाख से बेसी अभ्यर्थी शामिल भइले। मऊ जिला के घोसी थाना इलाका के बलुआ पोखरा के लगे काली देर रात भइल एगो सड़क दुर्घटना में 3 गो नौजवानन के मौत हो गईल, वही एगो नौजवान गंभीरा है घाही बा। ये दुर्घटना ओह समय भइल जब ओइजा एगो तेज रफ्तार कार बेकाबू होके सड़क के किनारे एगो देवाल से लड़ गईल। गोरखपुरा एकरे लगे के पूर्वी जिलन के सतही प्रदेश भर में भीषण गर्मी या लू का प्रकोप जारी बा। मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन बदे 23 मई ले दिन के समय कुछ जगहिन पर भीषण लू का रेड अलर्ट जारी कैले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे छिड़काव में उपयोगी उपकरण एवं नाशी जीव रसायनों के मात्रा की गणना विषय पर डॉ. शिशुपाल सिंह से की गई बातचीत। साथ ही गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथियों का गाया लोकगीत सुनेंगे। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे ए हरिहरन और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे पंडित बाला साहब पुंछ वाले। शाम 7 बजे संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे कथा घटक शिरोमणि, कथाकार गायत्री प्रसाद पांडे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग में, 8:15 पर रसमाधुरी में और रात्रि 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम में आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर जानकारी और 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे। सुबह 6:25 पर गांधी चर्चा और 6:40 पर श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। प्रातः 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे संजीव अभ्यंकर और दिन 12:45 पर बांसुरी वादन में कलाकार होंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। प्रातः 9:50 पर और दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे तेज बहादुर यादव और साथी। दिन 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी दीप्ति तैलंग। प्रातः 7 बजे आप आनंद उठाएंगे रोज की तरह गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का। 8:45 पर मधुरिमा, 10 बजे झंकार और दिन 11 बजे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो कि आप ही के भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। दिन 1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी चर्चा के अलावा रूपक जिसका विषय होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष तरंगों की समय यात्रा। साथ ही साथ जायका और गीत संगीत का भी आनंद लेंगी। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के

0: वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में गीत सुनने से पहले सुनते हैं एक छोटा सा संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए गुनाह फिल्म से आवाज अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की। गीतकार प्रवीण भारद्वाज, संगीतकार आनंद राज आनंद।

गुनाह फिल्म से ये गीत आपने अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में सुना। आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, दंगल फिल्म से आवाज है अरिजीत सिंह की।

दंगल फिल्म से ये गीत आपने अरिजीत सिंह की आवाज में सुना। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की थी, संगीत निर्देशन प्रीतम का था। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कभी जो धूप सेकते थे मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौंदर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौंदर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमन्त्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मन्त्रिमण्डले द्वात्रिंशत् जनाः सम्मिलिताः, येषु चतस्रः महिला मन्त्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य सायम् अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा च तस्य इटली समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्येतौ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इत्यत्र सहकार्याय स्वकीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तौ। अस्याः परियोजनायाः भूरिशः प्रशंसां कुर्वन्तौ उभौ नेतारौ ऐषमः षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमे अस्य उपक्रमस्य प्रगतये आईमेक मन्त्रिस्तरीय गोष्ठ्याः प्रथमायोजने दृढपदक्षेपं स्वीकर्तुं प्रोत्साहितवन्तौ। रोमनगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह आयोजिते संयुक्त संवाददातृ सम्मेलने इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी आईमेक इत्येतं यूरोप मध्य पूर्व भारत देशान् संयोजयितुं कश्चन महान् आर्थिक सम्पर्क मार्गः वर्तते इति वर्णितवती। तया प्रोक्तं यदस्मिन् व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखला स्थैर्यं दृढीकर्तुं महत् सामर्थ्यं वर्तते। मेलोनी इत्येषा अवोचत् यत् क्षेत्रीयान्तर सम्पर्कस्य सुदृढीकरणार्थं सर्वोपरि प्राथमिकता अस्ति तथा च उभावपि देशौ अस्य वीथि मार्गस्य विकासं दृढतया समर्थयतः। उभावपि प्रधानमन्त्रिणौ पुनरपि प्रोक्तवन्तौ यत् नवोन्मेषः विज्ञानं प्रौद्योगिकी च भारत इटली देशयोः मूलाधाराः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् इटली देशः स्वस्य विशिष्टाभिकल्पनायै सूक्ष्मता कौशलाय च विश्वविश्रुतोऽस्ति। अपरत्र भारतस्य ख्यातिः विशालतायै प्रतिभायै सुलभ नवोन्मेषाय च वर्तते।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: सर्वकारेण प्रोक्तं यत् कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषिद्धो वर्तते। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् प्रसाधन सामग्र्यः केवलं मानव शरीरे घर्षणाय सेचनाय प्रोक्षणाय अथवा विकिरणाय च उद्दिष्टाः सन्ति। संघटनेन प्रोक्तं यत् विक्रयण वितरणार्थं प्रसाधनानां निर्माणं तथा च आयात प्रक्रिया प्रसाधन नियम 20/20 इत्यस्य प्रावधानैः नियन्त्रिता भवति। CDSCO इत्यनेन दृढीकृतं यत् प्रसाधनोत्पन्नेषु प्रतिबन्धित तत्त्वानाम् उपयोगः नामपत्रे भ्रामकोक्तिः संक्रमणोपचारार्थं सौन्दर्य प्रसाधनानां प्रयोगः तथा च सूचिका भेषज माध्यमेन एतेषाम् अनुप्रयोगः औषध तथा प्रसाधन अधिनियम

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: पंचो राम राम।
1: मोहन भैया।
0: हाँ समारू भैया।
1: अरे भाई, इसमें किसानी में क्या करत हुआ हो?
0: किसानी में भैया देखा भूसा अनाज तो कुल घरे में रख देली, अब
1: हाँ
0: देखा ये सब्जी लगवले गर्मी वाली, देखा ये उम्मे जो ना कि देखा ये छिड़काव करके जो ना आवत है ताकि उनमें
1: कीट पतंगा ना
0: कीट
1: लगे। तो
0: पतंगा खर पतवार कुल ना लगे, बढ़िया से पैदावार होत रहे।
1: कौन कौन तरकारी लगो लो हुआ इसमें?
0: ये समय देखा भैया नेनुआ बा, ओकरे बाद देखा भिंडी बा,
1: करेला,
0: करेला भी बा,
1: लौकी भी
0: लौकी
1: हुई।
0: भी बा, ये सब लगल बा घर
1: मोहन
0: पे।
1: भैया देखा, तू जागरूक किसान हुआ हमेशा, कुछ न कुछ लगा वाला जाने वाला कि भाई थोड़ा तो करब, उद्यम तो हमें मिली, लेकिन जो कला कि दवाई छिड़क के लिए तो कौन कीटनाशी दवाई छिड़कला है, रसायन की कौन सी जैविक?
0: नहीं भैया, देखा ही रासायनिक दवाई छिड़क के लिए जो ना कीटनाशी जो ना,
1: अच्छा,
0: हाँ, ताकि ऊपर खर पतंगा कितनी कुल न लगे,
1: प्रभाव ना पड़े।
0: प्रभाव न पड़े।
1: लेकिन मोहन भैया तू तो खुद ही समझदार, कहा समझाई, लेकिन पंच लोग को बता देते
0: हाँ
1: कि कृषि रसायन के प्रयोग में सावधानी बरत ही की पड़ी।
0: एकदम सही कला भैया। देखा हम
1: तो क्या
0: जब
1: तू
0: भी,
1: जब देखला
0: हाँ,
1: तू के देखलिए कि जब तू छिड़कत रहा तो मुँहे पर मास्क लगो रहला,
0: अरे मुहे पर ओकरे संगे संगे हाथ में भी मास्क लगवले रहलिया,
1: दस्ताना।
0: दस्ताना जो ना,
1: हाँ,
0: दस्त,
1: तो सबसे बड़ी बात कि जब कैसे रसायन बड़ी खतरनाक होना हो, जहरीला
0: हाँ,
1: भी होना है, आंखी में पड़ गए, नाकी में पड़ गए, मुँहे में तो छाला पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो यही बदे विज्ञानी लोग भी सलाह देव ना कि जब भी कृषि रसायन का प्रयोग करें तो हाथे में दस्ताना भी धोत पहन लें, फुल कपड़ा पहन ले रहे पूरी बाही
0: हाँ,
1: का
0: नीचे ऊपर दोनों एकदम,
1: दोनों,
0: हाँ,
1: और क्या करें मुँह
0: मास्क लगवले रहे, हाँ
1: लगोला रहे। अब भैया हो
0: हाँ हाँ
1: यो देखे कि हवा कौन दिशा में चला था।
0: हाँ जौने दिशा
1: हाँ
0: में हवा रहे
1: हाँ
0: वही दिशा में देखा कि
1: हाँ
0: प्रयोग करे के
1: ओके,
0: चाहिए।
1: विपरीत न चले न
0: हाँ,
1: मुँह में झोंक दी सब।
0: अब देखा यो काम ना कि देखा बहुत बार देखा लोग जो है कि जौन स्प्रे होला ऊपर
1: हाँ
0: जो नोजल होला ओके लोग
1: हाँ
0: मुंह से जो फूक फूक के लगी है जो है कि
1: नहीं
0: साफ
1: नहीं
0: करे।
1: नहीं
0: देखा यो तरीका गलत हुआ, उसे भी देखा संक्रमण होए के
1: भाई,
0: संभावना
1: ईगुल
0: है।
1: ईगुल जोन भी कौन से कृषि औजार है, कृषि को यंत्र है, ओके पहले से भी दुरुस्त रख लें, अब मुँहे से खिचौल फुकौल ना हो, कैसे कि भी जहरीला पदार्थ छूटल रही अगर नोजल में तो
0: हाँ,
1: मुँहे में लग सकला।
0: अरे भैया ओकरे लिए ब्रश हुआ ओकर प्रयोग कर ले, चाहे
1: हाँ
0: पतला जो ना कोनो पीन होकर ओकर प्रयोग कर ले,
1: ओकर प्रयोग कर लें।
0: और उसे करें तो जो ना कि कोनो दिक्कत भी ना होई और साफ भी हो जाई
1: और दूसरा बात भैया
0: ना।
1: यो जान ला कि जौन डब्बा में प्रयोग के डब्बा खाली हो गए तो ऐसे ही लापरवाही नहीं ना फेंक दें।
0: हाँ ओके, देखा है बढ़िया से जो ना कि गड्ढा खन के
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: ओके जो ना
1: हाँ
0: कि मिट्टी से दबा दें।
1: दबा दें, क्यों कुत्ता जानवर ना पहुंच पावे कि कोई के दिक्कत हो जाए।
0: अब देखा एक बात और देखी ला कि जब होला ना तब लोग जने की उठैया पीठी पर लदियाँ लगियाँ छिड़के जो ना कीटनाशक दवाई,
1: हाँ
0: इहो देखा ठीक ना। आ देखा कम ने कि देखा एकर देखा सही समय ये होला कि सवेरे या सांझी के खाली।
1: हाँ
0: हाँ
1: ये तो बात सबसे महत्वपूर्ण बतौला भैया
0: हाँ
1: कि भाई ओका समय में याद है
0: हाँ
1: कि कोने समय कैसे सुबह कह देला या शाम के, हवा भी ना चलत रही हो समय।
0: हाँ
1: अब भैया हो ये तो बात अपन बताएला कृषि रसायन बदे, लेकिन कल गए कल गल बा कि ऐसा ना अवसर है ना आवे है, कम रसायन से हमन का माटी भी कमजोर हो जाता, मान दो कि नहीं,
0: हाँ,
1: तो हमन
0: एकदम
1: काहे
0: एकदम भैया,
1: ना जैविक रसायन का प्रयोग करल जाए।
0: एकदम सही बात कला है भैया। जैविक जोन खाद बाय उसे
1: हाँ
0: जोन पैदावार होत बाय ओकर तो देखा अलग है बात हुआ,
1: गुड़ो फसल की गुणवत्ता बढ़िया है। हाँ
0: गुणवत्ता भी बढ़िया है ओकर, देखा बाजार में मांग भी ज्यादा है, और
1: हाँ
0: लोग के स्वास्थ्य के नजरिए से अगर देखा ना तो ये घड़ी जैविक खादे का देखा समय चला था।
1: है ना, तो
0: हाँ
1: सरकार का भी प्रयास है,
0: हाँ
1: विज्ञानी लोग भी कहते हूँ कि भाई माटी के मजबूत बनाओ बदे जैविक खेती के अपनाओ खोई,
0: हाँ
1: और जिससे समय भी चलते समय
0: हाँ
1: ढैचा और सोनाई वाला।

0: अरे भैया देखा जैचा सनई जे चतुर किसान भाई ना वो देखा है
1: हाँ
0: घड़ी लगा दे ले। हाँ
1: लगा देला ना,
0: हाँ
1: 10 दिन में जब बड़ा बड़ा हो जाई आ तो एक बारिश हो जाई, अब के दबवा दिया लोगों को जरा, और बढ़िया हरी खाद हो जाई।
0: खाद हो जाए यार, देखा रासायनिक खाद की जरूरत ना पड़ी।
1: हाँ तो यही बात हमारे कल जाके भी अपने माटी के बचाव के साथ साथ मोहन भैया
0: हाँ
1: बातचीत हमारे तो होत रही,
0: हाँ
1: और पंच लोग के कुछ संदेश सुनवा दा।
0: सुनवा दो भैया।
2: लाख की लॉटरी मुझे, वाह।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हाँ संदेश तो हो गल।
0: हाँ भैया
1: अब जैसे हमान बातचीत करते जब है ना
0: हाँ
1: वही विषय पर बातचीत देखा, फिर आ गल है कि
0: हाँ
1: छिड़काव में उपयोगी उपकरण जो छिड़काव होला खेत में
0: हाँ हाँ
1: फसल पर, तो मन जो उपकरण उपयोगी होला और नासी जीव रसायन की मात्रा कितना हो चाहिए ओकर गणना पर आज विषय यही विषय पर बातचीत होता डॉक्टर शिशुपाल सिंह से। अब बात करता हूँ रामकृष्ण मिश्रा
0: तो
1: भैया,
0: सुनवा दे भैया सबके।
1: सुने लो।
4: डॉक्टर शिशुपाल सिंह जी, आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हुआ कृषि विभाग कलेक्टरी फार्म वाराणसी में। आज आपसे जानल चाहब कि जो छिड़काव करे न किसान भाई खेत में, तो ओकरे बदे उपयोगी उपकरण कौन कौन हन, और एक चीज और जानल चाहब कि जो नासी जीव रसायन हैं इनकर मात्रा कितना होए के चाहिए, एकर गणना कैसे कैल जाए। तो पहले तो चर्चा में ये बतावें कि जो उपयोगी उपकरण हुआ छिड़काव बदे तो कौने तरह का हुआ।
5: धन्यवाद सर।
0: जी
5: सबसे पहले बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि ये जो उपयोगी उपकरण हैं ये क्या होते हैं, क्या है, इनको किस नाम से जानते हैं। बेसिकली आप लोग वैसे तो गांव में जानते हैं, स्प्रे मशीन बोलते हैं इनको, और हम लोग इसको इंग्लिश में स्प्रेयर कहते हैं। ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसको नाशी जीवी, मतलब खरपतवार नाशी हो गया, पेस्टिसाइड इसको बोलते हैं, और फर्टिलाइजर का भी हम लोग इसमें घोल बना के जो किसान भाई पौधों पर या फसलों पर बारीक बूंदों के रूप में छिड़काव करते हैं, तो
0: जी
5: उसको हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं उसको हम लोग स्प्रेयर कहते हैं। अब इसे इसमें कौन कौन से उपकरण उपयोगी हैं जो इस काम में यूज करें किसान
0: जी
5: भाई
0: जी
5: उपयोग करें, तो इसमें एक सबसे पुराना एक उपकरण है नैपसेक उपकरण। ये एक बहुत ही पुराना उपकरण है, मतलब सबसे पहले समय में यही एक उपकरण हुआ करता था। ये बहुत ही टिकाऊ उपकरण है, इसको किसान भाई क्या करते हैं अपने पीठ पर
0: अच्छा
5: लाद के, और हाथ से एक इसका हैंडल होता है उससे चला चला के प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर से क्या करता है, इसके नोजल से अपना जो भी नासी जीव है, हाँ जी,
0: छिड़काव होता है।
5: छिड़काव होता है फसल पर, छिड़काव होता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब उपयोगी है, इसमें ना तो आपका बिजली लगना है ना तो आपका कोई इसमें पेट्रोल से चलेगा, ये मतलब मैनुअल चलता है। हाँ
0: अच्छा,
5: किसान
0: अपने
5: भाई
0: हाथ
5: अपने
0: से।
5: हाथ से चला सकते हैं इसको। एक
0: मान
5: ऐसा
0: खर्चीला ही
5: उपकरण,
0: ना
5: खर्चीला
0: ज्यादा।
5: नहीं है, बहुत ही टिकाऊ है और खराब भी नहीं जल्दी होता है।
0: अच्छा।
5: जी,
0: जी और
5: और आजकल वर्तमान समय में अब जानते हैं आधुनिक विधि से खेती हो रही है, तो किसान भाई चाहते हैं कि भाई हम पीठ पे लादें तो, लेकिन जल्दी से जल्दी ज्यादा ज्यादा क्षेत्रफल कवर कर डालें एक दिन में, तो
0: मेहनत थोड़ा
5: उस हाँ
0: कम हो।
5: मेहनत कम चाह रहा है किसान लोग, चाह रहे कम मेहनत में ज्यादा हमको फायदा मिले। तो इसमें बैटरी ऑपरेटेड भी आ गए। आजकल
0: अच्छा।
5: क्या हुआ ना, कई कंपनियों ने और बैटरी ऑपरेटर जो बैटरी से चलते हैं,
0: हाँ
5: चार्जेबल
0: हाँ
5: बैटरी इसमें लगा देते हैं, तो
0: जी
5: बैटरी ऑन करते ही मतलब उसका स्विच एक रहता है, स्विच ऑन करके तो किसान भाई जल्दी जल्दी इसको भी मतलब कर सकते हैं। ये भी पीठ पर ही लाद के ही किया जाता है
0: अच्छा, तो ये बैटरी कर
5: इसका।
0: कैसे
5: हाँ
0: समझा।
5: बैटरी इसका सही है, उसकी लाइफ भी बढ़िया होती है, और जैसे अपनी मोटरसाइकिल लगी होती है उसी टाइप की बैटरी होती है वो। तो बैटरी इसमें अंदर इनबिल्ट होता है, बाहर से आप नहीं
0: अच्छा
5: दिखेगा कुछ ही, बाहर से
0: जी,
5: आपको ऐसा लगेगा कि ये
0: मशीन
5: मैनुअल
0: है।
5: ही है, मैनुअल ही
0: हाँ
5: मशीन है, जैसे हमारा वो नेपसेक वाला स्प्रेयर
0: हाँ
5: है ऐसे रहता है नॉर्मल। तो ये
0: अच्छा।
5: बैटरी से चलते हैं, बस इसमें ये है किसान भाइयों को कम समय में ज्यादा ज्यादा क्षेत्र पर कवर कर लेते हैं, एक एक दिन में बहुत ज्यादा खेत
0: माने
5: को। हाँ
0: तरीका हुआ है जैसे ये हाथ से चलावत रहे तो अभी माँ बैटरी काम
5: बैटरी से
0: करत
5: चलता
0: है।
5: है ये। जी, और एक स्प्रेयर और है पुराने जमाने का, उसको फुट स्प्रेयर बोलते हैं। फुट स्प्रेयर क्या होता है, ये तो काफी लगभग 3-4 फीट का लंबा होता है, और ये जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ऐसे ही इसमें एक पैडल लगा होता है, वो
0: अच्छा।
5: एक ही तरफ से दबाया जाता है और चलता है। तो ये स्प्रेयर स्पेशली बगीचा वगैरह में उपयोग किया जाता है। इसका जो पाइप होता है वो काफी, वो किसान भाई अपने हिसाब से लंबाई से हिसाब से बनवा सकते हैं कि हमारा एक जगह रखकर इसमें दो लोग

0: की जरूरत पड़ती है। इसमें
1: अच्छा
0: क्या करता है, एक लोग पैडल मारता है और एक
1: हाँ,
0: लोग हाथ से उसको बगीचा पे जैसे हमको डालना है या फसल में
1: पाइप
0: ही करता है,
1: पाइप की तरह पकड़ के।
0: हाँ
1: अच्छा
0: पाइप को पकड़ के ऐसे स्प्रे करता है।
1: हाँ
0: जी, तो
1: अच्छा,
0: इसको इसको भी बहुत बढ़िया है स्प्रेयर है।
1: ऐसे माने
0: और
1: ज्यादातर बगीचा और ऊंचाई वाली चीज का
0: हाँ
1: हो
0: ऊंचाई
1: सकता है।
0: वाले मतलब फसलों फसलों और ये बगीचा के लिए ज्यादा
1: हाँ
0: उपयुक्त माना जाता है।
1: अच्छा जी।

0: जाता है।
1: अच्छा जी,
0: और एक ये राकर स्पेयर है, ये भी एक इसमें भी हैंडल को आगे पीछे घुमा के किया जाता है ना। इसको बड़े खेतों और फलों के फलों वाले या जैसे आम है नींबू है उसमें उपयोग करते हैं। ये भी एक बढ़िया ही है। इसमें जैसे 5 से 6 मीटर ऊंचे जो है मध्यम
1: मतलब
0: आकार के
1: अच्छा,
0: जो हैं पेड़,
1: मतलब ऊंचाई वाले पेड़ जो
0: हाँ हाँ
1: चाहिए
0: ऊंचाई
1: उनके,
0: वाले, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है ना।
1: छोट कलमी जैसे आम बाड़े उनमें
0: हाँ
1: हो
0: हाँ
1: जाए,
0: हाँ
1: निबुआ
0: हाँ
1: में हो जाए,
0: 5 6 मीटर के जैसे आम है नींबू
1: अमरूद
0: है
1: तक में भी चले।
0: करौंदा है और ये अमरूद है, इसमें हम लोग दवा जब भी छिड़काव करेंगे तो इस टाइप के राकर टाइप के स्प्रेयर का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं और अपना बढ़िया से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो भी कीड़े मुकीड़े जो लगे हैं फसल पर,
1: हाँ
0: जो भी रोग लगा है उससे नजात पाई जा सकती
1: अच्छा,
0: है।
1: ऐसे तो जैसे टॉप ड्रेसिंग भी कर सकत हूँ खाद
0: हाँ,
1: का।
0: इसमें मैंने बताया ना, इसमें आप तीन प्रकार के तीन, देखिए एक खरपतवार नाशी जो हम लोग के जो भी खरपतवार उगते हैं उसमें खरपतवार नाशी की दवा डाल के घोल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसको छिड़काव करके उसको भी मारा जा सकता है जितने खरपतवार हैं।
1: हाँ
0: और उसके बाद दूसरा हो गया अपना जैसे कीड़े मकोड़ों को
1: जी,
0: मारने के लिए
1: कीटनाशी डाल।
0: नाशी जीव जिसको बोलते हैं कीटनाशी, कीटनाशी का भी छिड़काव किया जा सकता है। और तीसरा हो गया है जैसे हमारी फसलों में कभी भी किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व या हमारा यूरिया की कमी होती है, जैसे घुलनशील फसल उर्वरक होते हैं, तो उनका छिड़काव करने से उसकी जो कमी होती पौधों में वो तुरंत ही ठीक हो जाती है, एक सप्ताह के अंदर मतलब ठीक हो जाती है। लेकिन उसका एक जैसे यूरिया का डालना है तो हमको 2% का घोल बनाते हैं और उसके बाद छिड़काव कर देते हैं, तो 2% के घोल में यूरिया की प्राप्ति मतलब बोले तो नाइट्रोजन की प्राप्ति पौधों में बढ़िया से हो जाती है। किसान भाई को उसकी जो भी कमी रहती है पौधों की वो कमी हो जाती है और उसका जो जो उपज है वो भी बढ़िया मिलती है।
1: और भी
0: जी
1: उपकरण हो करूँ?
0: हाँ, इसमें आजकल मॉडर्न में आजकल जो एक आ गया है ट्रैक्टर,
1: अच्छा
0: ट्रैक्टर ट्रैक्टर पर एक टैंक लगा होता है, मतलब ट्रैक्टर से ही चलता है, जो पीछे हाइड्रोलिक होता है वहां पर उसको लाद के उसके थ्रू ये करता है। ये भी मतलब एक बढ़िया है, जैसे आप एक किसान के पास मान चलिए 50 60 हेक्टेयर जमीन है तो वो छोटे मोटे स्प्रेयर से
1: ज्यादा
0: काम
1: जमीन।
0: नहीं कर पाएगा तो वो क्या करे, ट्रैक्टर से करता है। ट्रैक्टर
1: अच्छा
0: वाले उपकरण, ट्रैक्टर वाला स्प्रेयर अगर इसको ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर बोलते हैं, बूम स्प्रेयर, तो ये काफी क्षेत्रफल
1: माने
0: कवर कर
1: ऊंचाई
0: देता है।
1: पर रही
0: हाँ,
1: एकदम।
0: नहीं ऊंचाई पर भी नॉर्मल में भी, लेकिन ये ऊंचाई को लेके नहीं है, ये नॉर्मल फसल के लिए ही है स्पेशली।
1: अच्छा
0: लेकिन
1: जी।
0: इसमें जो पर डे का है पर घंटे की जो वो मिलता है हमको
1: वो ज्यादा
0: कि हाँ
1: छिड़काव
0: वो
1: कर
0: ज्यादा
1: देगा तो
0: छिड़काव कर सकता है।
1: माने ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो कवर कर ले ही इसे। लेकिन एके जैसे कहल जाला कि ऑपरेट करे के हो तो कैसे करिए, खेत के बीच में से जाइए उसी ट्रैक्टर जाई?
0: नहीं, उसमें क्या होता है ना, ट्रैक्टर का एक साइड में रखते हैं, उसमें
1: हाँ
0: जो पाइप रहता है ना उसका वो फैला देता है, और
1: अच्छा,
0: बीच में भी इसका स्प्रे का जो
1: जो
0: एरिया
1: नोजल
0: होता है, नोजल का
1: वाला
0: है जो
1: जो
0: एरिया
1: क्षेत्र
0: होता है
1: रहे।
0: वो काफी एरिया कवर करता है। एकाध बीघा मान चलिए ऐसे ही हो जाता है तुरंत है। और इसमें एक आजकल मॉडर्न टेक्निक में आ गया कृषि ड्रोन।
1: अच्छा, वो
0: कृषि
1: कैसे?
0: ड्रोन जैसे आजकल आपने देखा होगा किसान भाइयों ने शादी ब्याह होते हैं तो आजकल कैमरा वो ड्रोन के थ्रू कैमरा जो फोटो
1: हाँ
0: लेता है
1: जी जी
0: ना
1: ऊपर से भी बड़ा बढ़िया
0: ऊपर
1: सा
0: से
1: फोटो
0: बढ़िया
1: आ
0: लेता
1: जाला।
0: है, तो इसमें किसान भाइयों क्या करना, एक रिमोट से चलता है, ये रिमोट से चलता है तो ये खेत के ऊपर में उड़ेगा और
1: अच्छा।
0: उसी में एक टैंक लगा होता है और ये ऊपर ऊपर छिड़काव करेगा, ऊपर ऊपर छिड़काव
1: वो
0: करता है ये।
1: ज्यादा वजनी टैंक ले जा सकत है?
0: हाँ, बजनी टैंक का इसमें मान चलिए कम से कम 15 20 लीटर वाले आते हैं, पंद्रह
1: अच्छा।
0: से बीस लीटर का नॉर्मल भी किसान 15 से 20 लीटर वाला यूज करते हैं, तो ये भी एक बढ़िया मेथड है और किसान भाई इसको भी उपयोग कर सकते
1: माने उसे छिड़काव
0: हैं।
1: करके फिर भर के टैंक फिर ओके उड़ा
0: हाँ,
1: दिए।
0: फिर उसके उड़ा देते हैं, फिर ऊपर से छिड़काव होता रहता है फसल पे
1: अच्छा।
0: बढ़िया से। और एक किसान भाई को और बताना चाहेंगे, ये जो कृषि ड्रोन है अभी नया ही आया है और हमारे कृषि विभाग में ये मतलब 5 लाख में आपको मिल जाएगा अगर,
1: अच्छा,
0: हाँ 5 लाख, 10 लाख इसकी कीमत है लगभग।
1: तो चलावे कैसे सीखी हैं?
0: वो चलाना हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, हाँ
1: अच्छा
0: ट्रेनिंग भी दिया जाता है बाकायदा
1: जी
0: जब लेते
1: जी
0: हैं, ये कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत आता है। किसान भाई हमारे बहुत किसान भाई लिए भी हैं बनारस में, और जो इच्छुक किसान भाई जो नहीं जानते हैं इसके बारे में अगर पहली बार सुन रहे हैं तो इस रेडियो टेलीकास्ट के थ्रू आप सुन के एक बार हम लोग से कंटेक्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और अभी ये योजना आने वाली है, जल्द से जल्द इसको आप बुकिंग करा लेंगे तो आपको बढ़िया सब्सिडी भी
1: तो
0: और
1: कुछ
0: ये मिल
1: सब्सिडी
0: जाएगा।
1: का भी प्रावधान हो इसमें?
0: सब्सिडी सर इसमें 50% है, जैसे 10 लाख 8 10 लाख का लगभग है, लेकिन एक एकमुश्त इसमें 5 लाख का सब्सिडी दिया जाता है। 5 लाख का ये
1: अच्छा
0: है, ये
1: जी जी
0: 5 लाख
1: जी
0: में ये मिल जाता है।
1: जी और कौन यंत्र?
0: और किसान भाइयों को बताएं जाए कि जब भी हम लोग का तरल फर्टिलाइजर हो गया या नासी जीव हो गया या हमारा खरपतवार नासी हो गया, उसको तो हम लोग स्प्रेयर से यूज करते हैं, छिड़काव कर लेते हैं। और एक कभी कभी किसान भाइयों के डस्ट मतलब वो रहता है पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइजर, वो रहता है क्या
1: अच्छा
0: नाम नासी

0: जीव हो गया या
1: हाँ
0: खरपतवार नाशी, तो किसान भाइयों को पाउडर फॉर्म
1: हाँ
0: दवा मिलती है तो उसको भी छिड़काव करना होता, तो किसान भाई उस समय परेशान होते हैं यार कि ये इसको कैसे करेंगे, तो किसान भाई हाथ से करते हैं और हाथ से करने में काफी नुकसानदायक होता है, उसमें राख मिलाते हैं ऐसे करते हैं, तो इसके लिए भी एक डस्टर एक उपयोगी यंत्र है
1: अच्छा, तो
0: उपकरण।
1: कैसे काम करता?
0: उसमें क्या करता है, जितना आपको दवा छिड़कना है
1: हाँ
0: वो उसमें डाल दी जाती है, उसमें भी
1: जी
0: टैंक होता है
1: ठीक।
0: और प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो बिल्कुल बहुत ही पाउडर फॉर्म में आंधी तूफान जैसा मतलब निकालता है पाउडर, और वो आपके उस पर बैठ जाता है,
1: अच्छा,
0: वो
1: पौधन पे।
0: पौधन पे बैठ जाएगा, पत्ती पे बैठ जाएगा,
1: जी जी
0: जिसके लिए भी रहेंगे तो बैठ
1: हाँ
0: जाएगा, तो वो उसको भी उपयोग कर सकते हैं, उसको डस्टर बोलते हैं, किसान भाई उसको
1: हाँ
0: भी ले सकते हैं
1: तो
0: कोई
1: का
0: मार्केट में।
1: ये डस्टर का इस्तेमाल करत किस में कुछ सावधानी भी बरते क्यों भी किसान भाई?
0: हाँ सावधानी तो देखिए किसान भाइयों को दोनों में बरतना है, चाहे डस्टर यूज करें चाहे स्प्रेयर, क्योंकि दोनों को पेस्टिसाइड ही है,
1: हाँ
0: खरपतवार नाशी है
1: जी जी
0: और
1: जी
0: नाशी जीव
1: रसायन
0: है,
1: है।
0: रसायन है, बहुत ही खतरनाक होता है। जब भी किसान भाई को यूज करना है ये, तो हमेशा जब भी यूज करें सबसे पहले किसान भाई एक ऐसा मतलब एक कैप खरीद लें, कैप सर में कैप लगा लें, आंख में चश्मा लगा लें, मुंह में रुमाल या मास्क लगा लें,
1: मैंने नाक भी बंद
0: बिल्कुल
1: रहे।
0: बंद कर लें, क्योंकि इसकी एक भी कण अगर अंदर जाएगी तो आपको कुछ
1: नुकसान
0: भी हो सकता है।
1: जी, नुकसान हो।
0: तो किसान भाई को ऐसे यूज करके ही इसका उपयोग करना है। और भी कुछ सावधानियां हैं, जब भी किसान भाइयों को स्प्रेयर का प्रयोग करना है तो सबसे पहले उसका लीकेज की जांच कर लें। लीकेज मतलब जैसे आप कृषि यंत्र किसान भाइयों ने क्या किया, दवा तो बना ली और तुरंत चेक किया नहीं है स्प्रेयर, और चलाना स्टार्ट कर दिए, चलाना स्टार्ट कर दिए, उस कंडीशन में क्या होता है ना, वो हमारा काम नहीं करता तो वो
1: हाँ,
0: नाशी जीव खराब
1: और
0: हो
1: वो
0: जाता
1: भी
0: है,
1: प्रेशर भी ना बनी।
0: प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, उसके नोजल में बहुत बारीक होता है, क्योंकि उसमें फव्वारा फॉर्म निकलता है, वो बहुत बारीक होता है, वो तो उसको साफ सफाई बढ़िया
1: साफ
0: से कर
1: सफाई
0: लें,
1: जरूरी है।
0: मतलब सादा पानी डाल के साफ सफाई कर सकते हैं। और किसान भाई को एक और बताएंगे, किसान भाई क्या करते हैं कभी कभी इसको मुंह में घुसा लेते हैं, मुंह से फूकने लगते हैं, तो ये गलती कतई ना करें, अगर जरा भी नासी जीव चला गया, पेस्टिसाइड चला गया, तो आपको तबीयत खराब हो सकती है। तो इस कंडीशन में ध्यान देना है, और
1: और सर
0: समय का थोड़ा ध्यान दें किसान भाई, जब भी छिड़काव करें सुबह या शाम को ही करें, और सुबह और शाम का टाइम थोड़ा बढ़िया रहता है, दोपहर में ना करें, दोपहर में काफी कुछ उड़ जाता है ना, तो हवा तेज तेज धूप होती तो उसमें वोलेटाइल नेचर के होते तो उड़ जाते हैं, तो उसका प्रभाव बढ़िया प्रभाव ही नहीं पड़ता है फसल पर। और आप बताना चाहेंगे, जब भी हवा जैसे चल रही है तो हवा के विपरीत दिशा में बिल्कुल ना जाएं, हवा चल रही तो उसी के मापक में ही छिड़कें,
1: हाँ,
0: जबकि अगर विपरीत में जाएंगे तो आपके ऊपर भी गिरेगा
1: सीधे
0: कर, है ना।
1: सीधे चेहरे पे या मुंह में भी जा सकता
0: जी
1: है।
0: जी और थोड़ा जब भी इसका छिड़काव करें तो खान पीन का रोक रखें, उस समय कुछ खाएं पिए ना, खान पीन करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है उस कंडीशन में। जी,
1: तो ये सब मतलब ध्यान दें
0: ये
1: किसान।
0: सब ध्यान देने योग्य बातें हैं किसान भाइयों के लिए।
1: अच्छा,
0: जी
1: वो जो अभी चर्चा रहल कि नासी जीव रसायन जो है उनके मात्रा का गणना कैसे हो, तो एक
0: हाँ,
1: तनी सी संक्षेप में बता दें।
0: ये किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जब भी मतलब कोई भी मात्रा आपको डिसाइड करना है 1 हेक्टर में कितना डालना है, किसान सबसे पहले देखो किसान भाई को हम एक सलाह देंगे कि जो आपने दवा खरीदी है, जो रसायन खरीदा है, उसमें ये जरूर लिखा रहता है कि 1 हेक्टर में इतना ML
1: मात्रा
0: डालना
1: का।
0: है, या आधा 500 ML डालना है तो आधा लीटर बोला, अगर 100,000 ML होगा, 1,000 ML है तो 1 लीटर हो गया पर हेक्टर से। और एक किसान भाई को बताना चाहेंगे, 1 हेक्टर में जब भी छिड़काव करेंगे लगभग 400-500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से किसान भाई अपना सोल्यूशन बना लें ड्रम में और अपना छिड़काव कर दें।
1: मैंने जितना संतुलित मात्रा है वह
0: जी
1: उतना जो है जितना कहल जाए उतना
0: बस
1: मात्रा के
0: बस
1: हिसाब से
0: संतुष्टि
1: डालें।
0: मात्रा जो रिकमेंडेड डोज देते हैं सब फर्टिलाइजर कंपनी को दिया जाता है, किसान भाई इतना तो हमारा वो है नहीं, तो उनको दिया जाता है 1 हेक्टर में या 1 बीघा में या 1 टंकी में 1 ML डालना है, 2 ML डालना है, तो उसी हिसाब से इतना बता, पानी तो बता ही दिया, चार
1: वही
0: सौ पांच सौ
1: हिसाब से
0: लीटर
1: वही अनुपात में बढ़त चल
0: बस
1: जाए, तो
0: उसी अनुपात
1: यही
0: में
1: सही
0: बढ़ा
1: मतलब
0: चला जाए,
1: गणना कर लेवे
0: ऐसे
1: के
0: गणना
1: हो।
0: कर सकते हैं किसान भाई।
1: तो अभी का छिड़काव करत के समय कुछ और भी सावधानी रख सकत है?
0: और किसान भाई को बताए जाएंगे कि मतलब गणना करना एक बहुत ही मतलब एक जरूरी है, एक पॉइंट इसको नोट करें कि गणना करना क्यों जरूरी है, क्योंकि किसान भाई इसमें ध्यान देते हैं कि मतलब जो भी हमारा रसायन लेते हैं ये बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही मतलब कॉस्टली होता है किसान
1: जी
0: भाई
1: जी
0: को,
1: जी
0: तो इसका एक जो भी एक निश्चित मात्रा है उस मात्रा का ही प्रयोग करें।
1: हाँ
0: यदि किसान भाई इसमें ज्यादा मात्रा में छिड़काव कर दिए हैं फसल पर,
1: तो
0: तो वो भी नुकसानदायक है।
1: कम करिए तो भी
0: कम करें तो भी नुकसानदायक है।
1: माने एकदम जितना मात्रा है सटीक मात्रा,
0: सटीक मात्रा का उपयोग करें। तो उसमें सर क्या है, जैसे आपने 1 लीटर की जगह 2 लीटर डाल दिया, फसल भी हमारी जल गई, एक तरफ वो नुकसान हुआ फसल का, और दूसरी तरफ क्या हुआ इतना महंगा मिल रहा है, तो हमारा वो भी हमारा पैसा व्यर्थ में जाएगा मार्केट में, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है।

0: के एक तरह से उन्हें तनी जागरूकता रखे के हुई कि विशेषज्ञ लोग कितना मात्रा कहत हुआ वही हिसाब से अपन मात्रा घटावत बढ़ावत रहें कि
1: बस
0: कितना
1: बस
0: हमें बनावे के हुआ रसायन का आ घोले बदे छिड़काव करे बदे वही हिसाब से मात्रा घटा बढ़ा लें। तो आप अपने पंचायती में ही ना डॉक्टर साहब आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ मोहन भैया,
0: हाँ समारू भैया,
1: देखा कितना बढ़िया शिशुपाल डॉक्टर शिशुपाल सिंह भैया बताओ ना हाँ, और रामकृष्ण मिश्रा भैया पूछा ना कि छिड़काव में उपयोगी उपकरण का बाय और नासी जीव रसायन की मात्रा की गणना कैसे करें किसान भाई लोग।
0: देखा एकदम एक एक चीज जो रखकर रामकृष्ण भैया जो उन्होंने कि उनसे फरिया फरिया के पूछना है।
1: हाँ सही बात है भाई, जानकारी रही थी कौन चीज उसी हिसाब से, नहीं तो जिन भैया बताऊँ ना हाँ, अधिक मात्रा में रसायन का प्रयोग कर देला तो फसल के नुकसान हो जाए और रसायन महंगा होला तो पैसा भी लगी।
0: एकदम सही बात है। आ ओकरे लिए देखा जरूरी है कि जो ना अपन बतौला है ना कि जैविक खाद, तो जैविक खाद का भी अगर प्रयोग लोग करें
1: ये तो सबसे बढ़िया भैया मोहन भैया, देखा जब भी
0: ता
1: जैविक खाद की बात चली मन गदगद हो जाला हो, कहे से कि अपन माटी का स्वास्थ्य सुधर जाला इसे, है कि नहीं।
0: एकदम सही बात है।
1: आज जब मूंग बोलो हुई मूंग तोड़ाई भी करी और उसके जुतवा दी तो क्या हुई
0: खाद भी
1: खाद
0: हो
1: भी हो
0: जाए।
1: जाई, वही हाल को जो ढैचा चली। हम तो कभी बहुत लोग जानो क्या करें ना फुनगी जोन होला केकर ढैचा का चाहे मुलायम फुनगी
0: हाँ सनई का
1: जैसा छांट करके पशुओं के चारा भी हो जाला और एक बार धीरे से पलट दिया तो खाद भी हो
0: खाद भी
1: जाए,
0: बन जाए जो ना।
1: तो ई है जा लीजिएगा। तो ये जुगाड़ से अगर हमन कर ली तो हमारे माटी भी मजबूत हुई है और रसायन के प्रयोग से भी बचल जाए। ये तो बातचीत हो गल, अब हम तो कहते कुछ मन मनसायन हो चाहिए।
0: हाँ तो देखा ही काजोल वाल्मीकि हैं बहन का दोनों की हुआ गवनई तो हूँ सुना किसान भाई लोग भी सुना।
1: सुना।

0: देखा सुमार भैया,
1: भैया
0: दिखाई पायल के बोलिया सहब कैसे,
1: बिना पिया जइया परदेसवा तो रहब कैसे।
0: रहब कैसे। देखा काजोल वाल्मीकि बहन रनी है, इतना बढ़िया दिखाई
1: झूमर
0: झूमर सुनौनी है। अब दिखाई कहब न कि इनकर झूमर तो हो गल जो न,
1: कल
0: लेकिन
1: बिहने बता दी का
0: आ
1: हुई
0: कल लगे हाथे जो न, कल अपने पंचायती में का सुनवाओल जाए, एकर भी जानकारी किसान भाई लोग के दे देवल जाए।
1: सुना ध्यान से।
0: हाँ
1: कल बिहने 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में
0: हाँ
1: दिनेश कुमार सिंह भैया जानकारी दिए कृषि रसायन के प्रयोग में सावधानियां कैसे बरतल जाए, और कल संझा के बताता पंचायती में का हुई।
0: कल संध्या के 6:30 पर अपने कृषिगत कार्यक्रम में पशुओं के दाना मिश्रण तैयार करते समय सावधानियां विषय पर बातचीत सुनवाओल जाई। डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह भैया बतियुले हुआ।
1: और गौनी भी साथे में हुई।
0: गीत गौनी तो भैया देखा वो तो बहुत एकदम जरूरी
1: हाँ
0: है।
1: भाई देखा बिना गीत गौनी ढोलक मजीरा सुन ले कुछ पंच लोग को मन नहीं हरियर हो।
0: हाँ
1: आए ती तो कल के बाद भी हो गल, आज के बाद तो बताई दे लीजा। अब ये बतावा कि
0: हाँ
1: मौसम का मिजाज देखत हुआ कि
0: भैया जो ना
1: आए।
0: कि मौसम के बात कहला तेगरी देखा, इतना जो ना कि घाम उगत है इतना तेज कि बिना गमछा का बिना कोनो कपारे पर रखले निकला लायक ना है। अगर निकल गईला तो समझ ला कि एकदम बेहाल हो जीबा।
1: तो बेहाल हो जोड़ते ना भाई देखा हमन किसान मन ही जाए।
0: हाँ
1: हाँ हमन की योजना बना लो चाहिए कि जो भी खेती किसानी की बात है सुबह 10 बजे के पहले कह लोल जाए
0: हाँ
1: या संध्या के 4 बजे के बाद करल जाए।
0: हाँ
1: बहुत जरूरी हो तब दोपहरिया में निकला
0: हाँ आ निकले तो देखा ठंडा पानी पी के निकले। हाँ
1: पेट भर।
0: भर पेट पी के निकले, ओकरे बाद जो ना जरूरत होगा तो कुछ साथ में भी पानी ठंडा ले ले रहे हैं।
1: ले रहे हैं और अपने करधन में क्या प्याज बन रहा है, जेवा खलीता में रख ले रहे हैं।
0: हाँ वो भी
1: पुराना याद
0: अपने
1: करा
0: हाँ
1: हम के दादी क्या करें कि जाल जाते खलीता में प्याज रहते कि लुआर न मारी।
0: आ देखा एक चीज और देखा कहब ना, देखा हम देखा थी बहुत जगह देखली है कि लोग देखा अपने तो खूब सांझे बियाने खूब नहात हुआ, लेकिन जो पशु चौहा हुआ ना उनके भी देखा गर्मी लगेला, उनके भी सांझे बिहाने धो देवे के चाहिए पानी से।
1: बहुत नगद बात बोल रहा मोहन भैया। अनबोलता जानवर हुआ है उनके दोनों टाइम स्नान करावा ताजा पानी पिया हुआ है।
0: हाँ
1: ये तो बहुत बढ़िया बात
0: आ
1: बतूला
0: देखा
1: है।
0: आज दोनों बिहाने जब हम उठली है ना तो देखी तब बाऊ जो ना कि पाइप लगा करके आ खूब जो ना कि गाय के या भैंस के धोत रहना, हम लग
1: अच्छा
0: गई हम धो ली, हम
1: ना
0: कली कि
1: बहुत
0: देखा
1: बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया काम होता
1: देखा चले के बेला हो तो पंच लोग जाके मांगल जाए कि
0: जरूर।
1: पंचो राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए कथा घटक शिरोमणि। कथाकार हैं गायत्री प्रसाद पांडेय।

घटक शिरोमणि, अभी आपने ये कथा सुना। कथाकार थे गायत्री प्रसाद पांडे। इसी के साथ संस्कृत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी।

थाना सारनाथ जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार कृष्ण कुमार पांडे पुत्र धीरज पांडे निवासी अनुपम नगर कॉलोनी सारनाथ वाराणसी, जिनकी उम्र है 55 वर्ष, रंग सांवला है और बाल सामान्य है, आंखें सामान्य है। ये 1 अप्रैल 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने नीले रंग की पैंट और गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी थी। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अशरत अली पुत्र शेखावत अली निवासी बलुआ वीर विशेश्वरगंज वाराणसी 11 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 20 साल, रंग सांवला।

लंबाई 5 फीट 5 इंच है, आंख के पास चोट का निशान है। घटना के समय इन्होंने सफेद रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक रंग का गमछा लिए हुए थे। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना कोतवाली वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

थाना आदमपुर जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रेणु कुमारी गुप्ता पुत्री जवाहिर गुप्ता निवासिनी मुकीमगंज थाना आदमपुर जनपद वाराणसी 28 मार्च 2026 से मुकीमगंज से लापता है। इनकी उम्र है 28 वर्ष, ऊंचाई लगभग 5 फीट है, शारीरिक बनावट सामान्य है, रंग गोरा, चेहरा लंबा, मानसिक स्थिति इनकी ठीक है। घटना के समय इन्होंने ग्रे रंग का सूट पहन रखा था। इनके विषय में जिस किसी को भी जानकारी मिले वो नजदीकी थाना या थाना आदमपुर जनपद वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। सूचना संपन्न हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:18 होने को हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. मुख्य समाचार. जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन. प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा. कल से शुरू होगी मकानों की गणना. इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति

0: राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। चार अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है।
3: मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदय ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
4: ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान

0: रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते चार दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीटवेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकल लगवाए हैं।
1: हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थाई हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है।
0: प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रीतुल कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर, दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश।

0: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

ये गीत आपने चमत्कार फिल्म से सुना, आवाज़ अलका याग्निक और कुमार शानू की थी। शब्द रचना आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। और अगला गीत सुनिए बॉम्बे फिल्म से चित्रा की आवाज़ में, गीतकार महबूब, संगीतकार ए आर रहमान।

चित्रा की आवाज़ में ये गीत आपने बॉम्बे फिल्म से सुना। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बिच्छू फिल्म से, आवाज़ें राम शंकर, शंकर महादेवन, राज भट्ट और साथियों की है, और गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद राज आनंद।

बिच्छू फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी राम शंकर शंकर महादेवन राज भट्ट और साथियों की। और अगला गीत सुनिए ब्रेक के बाद फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी है अलिसा पिंडोनका ने और विशाल ददलानी ने, और शब्द रचना प्रसून जोशी की है, संगीत निर्देशन विशाल शेखर का है।

बेशर्म फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज थी अभिजीत और श्रेया घोषाल की। गीतकार थे राजीव बरनवाल और संगीतकार ललित पंडित। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। इसमें आज कलाकार हैं ए हरिहरन। आज आप सुनेंगे इनकी गाई चुनिंदा गजलें। तो आइए इनकी आवाज़ में सुनते हैं ये पहली गज़ल।

0: आकाशवाणी वाराणसी के DRM यानी डिजिटल रेडियो मोंडियाल प्रसारण में आपका स्वागत है। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र द्वारा साइमलकास्ट DRM और प्योर DRM डिजिटल रेडियो टेरेस्टेरियल ट्रांसमिशन 1233 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी वाराणसी के इन उच्च गुणवत्ता और उन्नत तकनीक वाले DRM यानी डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन को DRM मोड वाले कार रेडियो में ट्यून किया जा सकता है, जहां बिना इंटरनेट के भी एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पर चार सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक ही समय में AIR समाचार, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम, लोक संगीत और फिल्म संगीत सुन सकते हैं। यहाँ जनरलाइन डेटा सेवा संक्षिप्त समाचार सेवा के रूप में उपलब्ध है और भविष्य में आपातकालीन चेतावनी प्रणाली यानी EWF, यातायात अद्यतन, मौसम संबंधित सूचनाएं और मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आकाशवाणी के DRM डिजिटल रेडियो प्रसारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.prasarbharati.gov.in पर जाएं और DRM डिजिटल रेडियो की नवीन तकनीकी विकास के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.drm.org पर जाएं। नई DRM कार रेडियो पर आकाशवाणी वाराणसी के DRM डिजिटल रेडियो को सुनने के लिए 1233 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें, जरूर सुने। आकाशवाणी वाराणसी के DRM यानी डिजिटल रेडियो मोंडियाल प्रसारण में आपका स्वागत है। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र द्वारा साइमलकास्ट DRM और प्योर DRM डिजिटल रेडियो टेरेस्टेरियल ट्रांसमिशन 1233 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी वाराणसी के इन उच्च गुणवत्ता और उन्नत तकनीक वाले DRM यानी डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन को DRM मोड वाले कार रेडियो में ट्यून किया जा सकता है, जहां बिना इंटरनेट के भी एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पर चार सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। आप एक ही
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दोस्तों, हमें खेद है कि किसी कारणवश परेशानी की वजह से हम आपको सुगम संगीत कार्यक्रम पूरी तरीके से नहीं सुनवा सके। इसका हमें खेद है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है रसमाधुरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए। बॉर्डर फिल्म से आवाज़ अलका याग्निक और सोनू निगम की है।

बॉर्डर फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज़ अलका याग्निक और सोनू निगम की थी। और अब सुनिए बुलंदी फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत बद्ध किया है विजू शाह ने।

चमेली फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज थी सुनिधि चौहान की। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाजें हैं गोपी सुंदरम और चिन्मयी श्रीप्रदा की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं चुपके से फिल्म से आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है। शब्द रचना गुलजार की, संगीत निर्देशन विशाल भारद्वाज का।

चुपके से इस फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर

0: हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने

0: पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताह तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीराजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान

0: 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज़ बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासिर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही है। LPG की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हजार टन LPG तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए LPG की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासिरा मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रابطे में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अलाक्वामी जाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशवीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नजर भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से

0: वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तकम करने और लाखों की किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक़द होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक़द करने पर गौर वख़ोज़ किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफ़ेन की मुकम्मल शराकत दारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के अवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरतेहाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB George ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तश्वीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज़ के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा हरीश प्रवर्तने ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम जरीफी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारे। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर

ये गज़ल आपने सुनी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में, और अगली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई हुई। रो रो के थक चुके हैं तन्हा बाजार में, बड़ी बेआबरू सी जिंदगी जी रहे हैं हम।

ये गज़ल आपने नीना मेहता की आवाज़ में सुना, और आइए अगली गज़ल हम आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की गाई हुई। ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, पाया नहीं है जिसको उसे खोना भी नहीं चाहते।

मोहब्बत सब्र के अलावा कुछ नहीं, मैंने हर इश्क को इंतज़ार करते देखा है। आइए अगली गज़ल सुनते हैं बेगम अख्तर की आवाज़ में।

लोगों की बातों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरी उम्र गुजर जाएगी मेरी हकीकत तलाशने में। अंजुमन कार्यक्रम की आखिरी गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें हम लेकर आए हैं आपकी ही पसंद की कुछ फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। आवाज़ कुमार शानू की है।

1942 अ लव स्टोरी फिल्म से ये गीत आपने सुना कुमार शानू की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और इसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। और इसे सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। नई सड़क वाराणसी से शाहिद, सद्दू, मलका, मुमताज, इंशा इली तारिक, कुदई चौकी, दहलू गली से बेबी आलम नफीस, अनवर भाई जरीवाला, कपड़ा मार्केट से गुड्डू, शमा, रुमा, इशरा, शालू, आमिर, सारिक,

यहीपुर बंजर से रफीक रिजवाना रेहान मुकित। इसके साथ ही साथ ये पत्र है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ विठल राव खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी। आप सभी ने दो पत्रों में अलग-अलग दो पत्रों में एक ही नाम है। और दोस्तों, हम आपसे ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर आप इस कार्यक्रम में अपना नाम सुनना चाहते हैं तो हमें ढेर सारी संख्या में पहले की तरह से पत्र भेजें। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी। हमारा पिन कोड है 221010। हम पता आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी और हमारा पिन कोड है 221010 22 10 10 उत्तर प्रदेश। तो हम ये जानते हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है और समय के साथ हर कुछ बदलता रहता है। तो उसी तरीके से अब व्हाट्सएप संदेश आप भेजने लगे हैं, आप ईमेल्स पर अपने नाम सुनते हैं भेजकर और कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए फरमाइशें भेजते हैं। लेकिन जो पुरानी चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि वो उनका समय कभी ख़त्म नहीं होता है। तो बिल्कुल आप इस कार्यक्रम का भी आनंद उठाते हैं, उठाइए और इस कार्यक्रम में भी अपने नामों को सुनने के लिए हमें पत्र भेजें। और पता तो हमने अभी अभी आपको बता ही दिया। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म से। उदित नारायण की आवाज़ है और इब्राहिम अश्क ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता लेवई से गुलाब गुलाबदास मानिकपुरी, दंतरेगी से भागवत प्रसाद वर्मा, भाटापारा से हेमकेश्वर साहू, देवरी से KR साहू और कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और अलीशा। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर अगला गीत।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

आप मुझे अच्छे लगने लगे इस फिल्म से। ये गीत आपने उदित नारायण की आवाज़ में सुना। ये अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं आरजू फिल्म से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। आनंद बख्शी के शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने महादेव अमलेश्वर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर ने।

0: दोस्तों, ये गीत आपने सुना आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म से। आवाज़ थी उदित नारायण और अलका याग्निक की।
1: तुझे चाहते थे।
0: क्षमा कीजिएगा, आपने ये गीत सुना आरजू फिल्म से। आवाज़ें थी कुमार शानू और अलका याग्निक।

और अब कार्यक्रम आपकी पसंद में हम आपको आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं। आ अब लौट चलें इस फिल्म से, और आवाज उदित नारायण, अलका याग्निक की, और इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चौरहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, मिराज आलम, मोहम्मद समद, रोजी अलीसा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, तकिया मड़ियाहू जौनपुर से, जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमस शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद साजिद शाह, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा।

आ अब लौट चलें इस फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, और गीतकार समीर थे, संगीतकार नदीम श्रवण। इसी गीत के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम अब संपन्न करने की इजाज़त आपसे चाहती हूँ। आज का ये सफ़र आपने तय किया अपनी रेडियो सखी सुषमा गुप्ता के साथ, तो चलते चलते स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए गायन। कलाकार हैं पंडित बाला साहब पूंछ वाले, राग है देव गांधार। आपके साथ तबले पर संगत की है जेरी मैसी ने और सारंगी पर बच्चा लाल मिश्र ने।

0: अभी आपने पंडित बाला साहब पूंछ वाले का गाया राग देवगांधार सुना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे जेरी मैसी और सारंगी पर बच्चा लाल मिश्र। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत

करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।